0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक एम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं। तो ये मार्का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफ़ीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार्का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावत आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब की पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को, लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड एम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोश व खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामान को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे सफीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया है, ये दावत आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे अम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे। तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है, ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये अफवाज पाकिस्तान से हजार यकजहती का प्रोग्राम, ये मार्का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो अम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا
1: الف لام

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। समय नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक अम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं। तो ये मर का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफ़ीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावत आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अब की पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को, लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है, और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे, और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड अम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल शुएब सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोश और खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामाइन को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे सफ़ीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया है, ये दावत आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे अम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे। तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है, ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये अफवाज पाकिस्तान से हज़ार यकजहती का प्रोग्राम, ये मार का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो अम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव लेकर आता रहा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। यहाँ डेनमार्क में दिन के 11:20 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 2:20 हो चुके हैं। सामिन नाज़रीन, आपको पता है तारीख से काम है, पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी बुनियाद शहजादा उस्मान साहब ने रखी, इसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में, पूरे यूरोप में, तो उन्होंने पिछले दिनों मुतवातर जो रैलियाँ निकाल रहे हैं और सबसे आखिर में जब वो कराची गए तो बहुत बड़ी रैली थी उनकी कराची में। आज भी हमें सुनने में मिल रहा है कि आज भी वो कराची में रैली निकालेंगे, तो हमने कहा क्यों ना शहजादा उस्मान से ही पूछा जाए। शहजादा उस्मान साहब, आपको अदारा आपकी आवाज पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: शहजादा साहब, जरा तफसील बताएं, आज 10 तारीख है और आज आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे डेनमार्क के लोगों को?
2: आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये 10 मई मरका हक जो है, ये 1965 की जंग के बाद सबसे बड़ा मरका है और हम सब समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानी कौम या मुसलमान जो उम्मत मुसलमान है वो दो ईदे मनाती थी, अब वो तीन मनाया करेगी। इस 10 मई को भी एक तीसरी ईद का जो है ना जश्न पूरी दुनिया में जैसे मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा आगे क्यामत तक, क्योंकि इस दिन को पाकिस्तान ने एक जो एशिया का गुंडा बन चुका हुआ था मोदी, उसका गरूर तोड़ के जमीन के अंदर घुसेड़ा। इस दिन मई के महीने में 2025 में जो उसने पहलगाम का एक ड्रामा निचाया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया, और जिस पर मैं सलाम पेश करता हूं, पाक फौज ने सब्र का तहमल का मुजाहरा करते हुए पहले दुनिया को बताया कि ये इसका मकरू चेहरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है। और उसके बाद फिर जब इंडिया बाज नहीं आया तो फिर DGISPR ने जिस तरह कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 5 राफेल तैयारों को गिराया और फतह मिसाइलों ने इंडिया की दरो दीवार जो है वो खिला के रख दिए। और आज हम इस दिन के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम कायद, उस उम्मत मुसलमान के लीडर को, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब को, जिनकी क्यादत में ये सब कुछ हुआ है। और हम समझते हैं कि आज का दिन जितना भी जोश व जज्बे से मनाया जाए वो कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम एक तहरीक का जो है वो वजूद अपना चुकी है पूरे यूरोप में, बरतानिया में, और अब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने अपने चैप्टर बनाने शुरू कर दिए हैं फोरम ने। कराची में हमने हालिया अभी बहुत बड़ी 26 अप्रैल को रैली निकाली, सैकड़ों गाड़ियां और एक कन्वेंशन किया गया जिसमें बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से हमने उधर बुनियाद रखी है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह गुजर खान के अंदर, खारियां के अंदर, और ये सिलसिला जो है वो सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर जो है वो इस तंजीम को, गैर सियासी फोरम को, इस तहरीक को लेके जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरबुलंदी और फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होना, क्योंकि अब हमें वक्त आ गया राजे साहब कि हम लोग जो है वो सियासी जमातों से बालातर होकर जो है वो पाकिस्तान का साथ दे। और ये इस काम पाकिस्तान का भी यही पैगाम है, यही उसकी जमात है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरबुलंदी और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए और मोदी का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद जो है वो दियार गैर में भी जारी और सारी है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों को शऊर देने के लिए, नौजवानों को सबज हलाली परचम के नीचे इकट्ठा करने के लिए इंशाल्लाह ताला अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर,
1: मेरा आखिरी सवाल है शहजादा उस्मान साहब आपसे, कि आपने पहले यूरोप को बेस बनाया, स्पेन से बुनियाद रखी, फिर आगे चले स्कैंडिनेविया की तरफ आए, आगे बढ़ते रहे, अब आपने बेस अपना पाकिस्तान को बनाया और आज प्रोग्राम आपका करने होने जा रहा है कराची में, तो लोग पाक अफवाज के मुतल्लिक और आसिफ मुनीर साहब के मुतल्लिक क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल जो है हमारे?
2: सर, इस वक्त 99% लोग जो है वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हाफिज सैयद आसिफ मुनीर के शाना बिशाना खड़े हैं, 1% वो लोग हैं जो इंडियन रा के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के पाकिस्तान का लबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से जो है मोदी की जुबान बोलते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो जो 1% लोग हैं उनको भी जमीन दोज हम कर देंगे, उनका प्रोपोगंडा मीडिया के ऊपर भी हम तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला यूरोप के अंदर भी तोड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी जो वो हमारी सफों के अंदर वो अपनी काली भेड़े खड़ी कर देते हैं उनको भी बेनकाब करेंगे और कौम के सामने लेके आएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ इस्तेमाल में पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की टीम को, स्पेन के अंदर बहुत बड़ी रैली और सेमिनार हो रहा है, इसी तरह यूनान में इस्तेमाल में पाकिस्तान ओवरसीज फोरम का जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर आज फिर जो है वो कराची चैप्टर जो है वो रैली निकालने जा रहा है। तो ये सिलसिला ये मई का महीना जारी और सारी रहेगा, बेल्जियम में भी प्रोग्राम होगा, फ्रांस में भी होगा और इटली में भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे हम।
1: शहजादा उस्मान साहब आज डेनमार्क में भी रैली निकल रही है, तो रैली का इख्तिताम जो है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने होगा, अंदर होगा, सफीर मोहतरम उनको वेलकम करेंगे, आप क्या मैसेज देंगे?
2: सर बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो डेनमार्क में रैली निकल रही है जो भी निकाल रहे हैं तमाम लोगों को, देखे जी हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का परचम थाम के बाहर निकले, वो चाहे किसी जमात से ताल्लुक है चाहे किसी और फोरम से ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए काम करे और आपस में मोहब्बतें बांटे, आपस लोगों को इकट्ठा करके एक मतलब एक जान होकर जो है वो सबज हलाली परचम के नीचे सब इकट्ठे हो, और कोई भी पाकिस्तान का नाम लेता है हम उसे सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक है किसी भी फोरम से ताल्लुक है, लेकिन खालिस्तान वो अगर पाकिस्तान के अगर वो लबादा ओढ़कर वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम तो वो उसकी मुखालफत हम करते हैं। सर
1: शहजादा उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने कानून कायदे का भी ख्याल रखिएगा,
2: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे शहजादा उस्मान साहब जो कि कराची से बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे, आज वो रैली निकालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली वो पहले भी निकाल चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। सामान्य नाज़रीन हमारा किसी से मुत्तफ़िक़ करना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपना मैसेज देना चाहता है तो उसके लिए आधार आपकी आवाज़ का

0: ये मेरे ख्याल से इमेजिन नहीं था किया हुआ कि जब वजीर आजम केयर टेकर भी वजीर आजम जाएगी मल्क उसके पास किंग के पास, तो वो ये कह देगी कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप हार भी सकती हूँ जिस तरह पोजिशन है। मुझे लगता है लास्ट लुके को यही था कि मैं इसको हर कीमत पे बस प्राइम मिनिस्टरशिप से चाहिए और ये हर चीज मान जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पागल है कि वो इसके पीछे अपनी पार्टी अब तबाह कर दे, क्योंकि वे अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई पड़ जाएगी। लास्ट लुके जो है ना वो बड़ी खतरनाक उसने क्या कहते हैं गेम खेली है, और एनालिस्टली मुझे लगता है इस बार उसने ना ज्यादा ही अपने कार्ड जो है ना उल्ट प्ले कर दिए।
1: उल्ट प्ले कर दिए हैं। तो अदनान, आप ये एनालाइज करते हैं चीज़ों को और देखते भी रहते हैं, लिखते भी हैं, और पार्टियों पर भी आपकी गहरी नज़र होती है, अपनी पार्टी पर आपकी नज़र होती है। लेकिन ये जो आप पेंशन की हम बातें सुन रहे हैं कि पेंशन की उम्र को 70 साल कर दिया जाए, और उसका जो सबसे लास्ट टुके की जो ज़िद्द है या उनकी ज़िद्द है या उनकी ख्वाहिश है या वो डिमांड करना चाहते हैं कि पेंशन की उम्र 70 साल होनी चाहिए, क्या इस पर बात तो नहीं रुकी हुई?
0: भाई इस पे राजा साहब इस पे भी बात रुकी हुई है, क्योंकि इसमें एक नतीजे एक बात इसमें बताता हूँ क्यों, के क्योंकि लास्ट वीक का ना एक जगह कॉमर्स आ गई थी कि इसने कहा था कोई बात नहीं बंदा 79 की उम्र तक पेंशन पे काम नहीं कर सकता, तो वो पे जब ये बात बाहर निकली थी ना तो उस वक्त पे ही क्या कहते हैं बहस शुरू हो गई थी, क्योंकि इसमें एक पहलू है कि 2006 के अंदर ना इन एक बिल फेस्टिवली बनाई थी, उसमें ये था कि पेंशन की उम्र जितनी ज्यादा उम्र बढ़ेगी ना लोगों की तो पेंशन की उम्र भी उसको ही बढ़ेगी, मगर उसके अंदर इनने ये नहीं था किया दादा साहब के बैलेंस नहीं था किया, क्योंकि कुछ बंदे जो 18, 19, 20 साल की उम्र में काम शुरू कर लेते हैं वो तो 65-70 साल की उम्र तक उनका क्या कहते हैं इतना नहीं रह जाता कि वो ना करे, और वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो बड़ा बात है, मगर बंदा रोक नहीं सकता, मगर इसकी जिद यही है कि उस पली को बदला ना जाए तो पेंशन बढ़ती जाए। दूसरी पार्टियां चाहती हैं कि पेंशन का एक नया रिफॉर्म आए, और उस पे ना उसमें ही तो एक आपको मैं और सबसे तो बड़ी बात बता दूं उसके अंदर ये भी है कि टेंस पॉल के पक्षी जो है हो सकता है कि वो फॉरनों के खिलाफ हो जो मर्जी की पॉलिसी हो, उन्होंने उस डील से अपने आप को बाहर निकाल दिया हो, क्योंकि वो भी कहते हैं कि ये पेंशन का रिफॉर्म एक नया आना चाहिए, तो इसीलिए आप देख लें कि लास्ट लोगे की जो जिद्दें हैं ना वो बहुत गलत हैं। लास्ट लोग के चाहता है कि 100% जो इकोनॉमिकली पॉलिसी है ना वो बेसिक उस पे बस बने, आप बड़ी ये रिफॉर्म पार्टियों पे बने, मगर राजा साहब आपको ये भी देखना चाहिए कि टेक्निकली 2022 का 2026 का इलेक्शन का रिजल्ट एक किस्म का ये भी है कि लोग वो चीज नहीं चाहते, तो इसलिए लास्ट लोग को ये हरकत नहीं थी करनी चाहिए जुम्मे को, क्योंकि जिस तरह सूरत हाल अभी है मुल्क की, जिस तरह मुल्क के कंडीशन हैं, गवर्नमेंट को बनना चाहिए, इसको अपनी जिद से थोड़ा बहुत हटना चाहिए, और ये ना हो कि कमिंग डेज में अभी तो किसी को नहीं ना मालूम कि टेबल पे क्या पड़ा हुआ था और कि किस बात से नसा है, क्योंकि इसने एक और जिद लगाई हुई थी कि मैंने किसी पार्टी के साथ बैठ के बातचीत नहीं करनी, मैंने खाली मेरे पास करनी, ये भी तरीका का था इसका अच्छा नहीं है, ये मैं बात आपको कह दूं टेक्निकली बात ये है, क्योंकि बात ये होती है राजा साहब कि ये ना जब से अमेरिका से वो मीटिंग करके आया ना ये अपने आप को बहुत क्या कहते हैं समझा लग पड़ा है कि मैं ही कर सकता हूँ, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ व्यूअर को कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं और हमें भी अंदाजा होता है और हमें भी अब समझ आ रही है कि ये जो मीटिंग अमेरिका में करके आया था ये इसकी कामयाबी नहीं थी, उसके पीछे कुछ और वजह भी, और वो वजह थी कि कुछ और निगोशिएशन चल रही थी, ये बस फ्रंट लाइन में आ जाता है और अपनी क्या कहते हैं क्रेडिट ले जाता है, मगर ये काम उस
1: अदनान,
0: तरह के
1: आपको
0: नहीं कर
1: पता है कि
0: सकते।
1: डेनमार्क में जो है ना फा की बातें अब मौजूदा बच्चे मानते भी हैं, लेकिन सियासी बच्चे भी नहीं मानते और अपने बच्चे भी अब फा की बातें नहीं मानते, वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं।
0: यही बात है दादा साहब, देखिए अब आप गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कल ये फिर बैठेंगे, मेरे ख्याल से तो ब्लू ब्लॉक की तो मुझे समझ भी नहीं आ रही कि बैठेगा कैसे, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको पहले कहा है कि मोर्टमेर स्मिथ ने जाते जब खोंग कोंटे में गया उसने साफ ही उधर कह दिया और लिख के भी वो आ गया, उसने कहा जो लिख के दिया एग्जाम्पल एक पार्टी का जो उसने लिख के दिया उसके ऊपर उसने साफ लिखा हुआ है कि सोशल डेमोक्रेट भी नहीं बैठ सकते, मुड़गाड़ा भी नहीं बैठ सकते, सबको मालूम है कि मुड़गाड़ा जो है लास्ट लोगों को की एक ही ख्वाहिश होती है वजीर आजम और गाड़ी, जब तुम लोगों ने

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव लेकर अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। यहाँ डेनमार्क में दिन के 11:20 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 2:20 हो चुके हैं। सामने नाज़रीन, आपको पता है तारीख सकाम है पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी बुनियाद शहजादा उस्मान साहब ने रखी, इसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में, पूरे यूरोप में। तो उन्होंने पिछले दिनों मुतवातर जो रैलियां निकाल रहे हैं और सब आखिर में जब वो कराची गए तो बहुत बड़ी रैली थी उनकी कराची में। आज भी हमें सुनने में मिल रहा है कि आज भी वो कराची में रैली निकालेंगे। तो हमने कहा क्यों ना शहजादा उस्मान साहब पूछा जाए। शहजादा उस्मान साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: शहजादा साहब, जरा तफसील बताएं, आज 10 तारीख है और आज आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे डेनमार्क के लोगों को?
2: साहब, आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये 10 मई मरका हक जो है, ये 1965 की जंग के बाद सबसे बड़ा मरका है और हम सब समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानी कौम या मुसलमान जो उम्मत मुसलमान है वो दो ईदें मनाती थी, अब वो तीन मनाया करेगी। इस 10 मई को भी एक तीसरी ईद का जो है ना जश्न पूरी दुनिया में जैसे मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा आगे क्यामत तक, क्योंकि इस दिन को पाकिस्तान ने एक जो एशिया का गुंडा बन चुका हुआ था मोदी, उसका गरूर तोड़ के जमीन के अंदर घुसेड़ा। इस दिन 10 मई के महीने में 2025 में जो उसने पहलगाम का एक ड्रामा निचाया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया, और जिस पर मैं सलाम पेश करता हूं, पाक फौज ने सब्र का तहमल का मुजाहरा करते हुए पहले दुनिया को बताया कि ये इसका मकरू चेहरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है। और उसके बाद फिर जब इंडिया बाज नहीं आया तो फिर DGISPR ने जिस तरह कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 5 राफेल तैयारों को गिराया और फतह मिसाइलों ने इंडिया की दरो दीवार जो है वो खुला के रख दिए। और आज हम इस दिन के मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम कायद, उस उम्मत मुसलमान के लीडर को, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसम मुनीर साहब को, जिनकी क्यादत में ये सब कुछ हुआ है। और हम समझते हैं कि आज का दिन जितना भी जोश व जज्बे से मनाया जाए वो कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम एक तहरीक का जो है वो वजूद अपना चुकी है पूरे यूरोप में, बरतानिया में, और अब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने अपने चैप्टर बनाने शुरू कर दिए हैं फोरम ने। कराची में हमने हालिया अभी बहुत बड़ी 26 अप्रैल को रैली निकाली, सैकड़ों गाड़ियां और एक कन्वेंशन किया गया जिसमें बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से हमने उधर बुनियाद रखी है, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह गुजर खान के अंदर, खारियां के अंदर, और ये सिलसिला जो है वो सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर जो है वो इस तंजीम को, गैर सियासी फोरम को, इस तहरीक को लेके जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरबुलंदी और फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होना, क्योंकि अब हमें वक्त आ गया राजे साहब कि हम लोग जो है वो सियासी जमातों से बालातर होकर जो है वो पाकिस्तान का साथ दे। और ये इस्तेकाम पाकिस्तान का भी यही पैगाम है, यही उसकी जमात है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरबुलंदी और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए और मोदी का मकरूह चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद जो है वो दियारे गैर में भी जारी और सारी है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों को शऊर देने के लिए, नौजवानों को सबज हलाली परचम के नीचे इकट्ठा करने के लिए इंशाल्लाह ताला अपना किरदार अदा करते रहेंगे सर।
1: मेरा आखिरी सवाल है शहजादा उस्मान साहब आपसे, आपने पहले यूरोप को बेस बनाया, स्पेन से बुनियाद रखी, फिर आगे चले स्कैंडिनेविया की तरफ आए, आगे बढ़ते रहे, अब आपने बेस अपना पाकिस्तान को बनाया और आज प्रोग्राम आपका करने होने जा रहा है कराची में, तो लोग पाक अफवाज के मुतल्लिक और आसिफ मुनीर साहब के मुतल्लिक क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल जो है हमारे?
2: सर इस वक्त 99% लोग जो है वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हाफिज सैयद आसिफ मुनीर के शाना बिशाना खड़े हैं। 1% वो लोग हैं जो इंडियन रा के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के पाकिस्तान का लबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से जो है मोदी की जुबान बोलते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो जो 1% लोग हैं उनको भी जमीन दोज हम कर देंगे, उनका प्रोपोगंडा मीडिया के ऊपर भी हम तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला यूरोप के अंदर भी तोड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी जो वो हमारी सफों के अंदर वो अपनी काली भेड़े खड़ी कर देते हैं उनको भी बेनकाब करेंगे और कौम के सामने लेके आएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की टीम को, स्पेन के अंदर बहुत बड़ी रैली और सेमिनार हो रहा है, इसी तरह यूनान में इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम का जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर आज फिर जो है वो कराची चैप्टर जो है वो रैली निकालने जा रहा है। तो ये सिलसिला ये मई का महीना जारी और सारी रहेगा, बेल्जियम में भी प्रोग्राम होगा, फ्रांस में भी होगा और इटली में भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे हम।
1: शहजादा उस्मान साहब आज डेनमार्क में भी रैली निकल रही है, तो रैली का इख्तिताम जो है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने होगा, अंदर होगा, सफीरे मोहतरम उनको वेलकम करेंगे, आप क्या मैसेज देंगे?
2: सर बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो डेनमार्क में रैली निकल रही है जो भी निकाल रहे हैं तमाम लोगों को, देखिये जी हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का परचम थाम के बाहर निकले, वो चाहे किसी जमात से ताल्लुक है चाहे किसी और फोरम से ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए काम करे और आपस में मोहब्बतें बांटे, आपस लोगों को इकट्ठा करके एक मतलब एक जान होकर जो है वो सबज हलाली परचम के नीचे सब इकट्ठे हो, और कोई भी पाकिस्तान का नाम लेता है हम उसे सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक है किसी भी फोरम से ताल्लुक है, लेकिन खालिस्तान वो अगर पाकिस्तान के अगर वो लबादा ओढ़कर वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम तो वो उसकी मुखालफत हम करते हैं। सर
1: शहजादा उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने कानून कायदे का भी ख्याल रखिएगा,
2: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे शहजादा उस्मान साहब जो कि कराची से बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे, आज वो रैली निकालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली वो पहले भी निकाल चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। सामान्य नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपना मैसेज देना चाहता है तो उसके लिए आधार आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामिन नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक एम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं, तो ये मार्का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफ़ीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार्का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावते आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अब की पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को और लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे, और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड एम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोशो खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामाइन को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे सफ़ीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया है, ये दावते आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे एम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे, तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये फौज पाकिस्तान से हज़ार यकजहती का प्रोग्राम, ये मार्का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो एम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ऐसी बात कर दूंगा तो असल बात यह है कि मैं अपने मुंह पे ही थपेड़े मार चपड़ मारूंगा। उसका जिक्र जाने दीजिए, कुछ
1: चलें
0: अगला जिक्र
1: आगे
0: कीजिए।
1: आगे बढ़ते हैं, अपना जिक्र करते हैं कि शाकर साहब ये देखें कि जब भी सियासी जमातों, बड़ी बड़ी सियासी जमातों की मैं बात करूंगा, उनके कायदीन जब बड़ी बड़ी सीटों पे चले जाते हैं, आपको नज़र आता है या दूसरों को नज़र आता है कि सारे वर्कर जो होते हैं को अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, कुर्सियां उठाते हैं, रखते हैं, एक माहौल बनाते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि वो लीडर अपने वर्कर को नहीं देता तो नवाजते नवाजते वक्त किसी और को नवाज देते हैं, तो फिर दावा होता है जमहूरियत का। ये कैसी जमहूरियत है, कैसी लीडरशिप है?
0: ये बहुत जुल्म वाला सिलसिला है और बड़ा ही तकलीफ देह है। देखिए, जो एक सियासत है ये बाकायदा तौर पे एक साइंस है पूरी। बाकायदा तौर पे आप तो लोगों ने इनको कारोबार और इंडस्ट्री कहना शुरू कर दिया है, लेकिन सियासत जो असल में देखा जाए तो वो मुल्कों कौम की खिदमत करने के लिए सियासत की जाती है। जो उसकी कोई भी आप शक्ल आप ले लीजिए, कोई भी उसकी फॉर्म आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी है या कोई और तरीका है सियासत करने का, लेकिन सियासत को अगर देखा जाए तो मुल्क और कौम यानी अवाम, मुल्क को कौम की खिदमत करने करने को सियासत कहते हैं और ऐसा काम करने वाले को सियासतदान कहते हैं। सियासतदान का सबसे पहला जो एक मरबा होता है, जो सबसे पहला उसका जो टूल हथियार होता है वो ये है कि वो कैसे लोगों की हमदर्दी अपने लिए हासिल करता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसका जो मंशूर है, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसका उसके जो वादे वईद हैं, वो कैसे लोगों के अंदर हमदर्दी अपनी पैदा करता है। उसके मंशूर को देख के, उसकी तकरीर को सुन के, उसके वादों को सुन के कि आने वाले वक्त में मैं ये काम करूंगा, लोग उसकी तरफ मतवजा हो जाते हैं, लोग उसके सपोर्टर पहले बन जाते हैं, बाद में उसके कारकुन बन जाते हैं, बाद में उसके उसके साथी बन जाते हैं, बाद में उनके कैबिनेट कैबिनेट मेंबर बन जाते हैं या कबीना के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस सियासत के यहाँ तक तो जो काम है वो बेहतरीन है कि मुल्कों कौम की अवाम की खिदमत करनी है और लोगों को अपने मंशूर की तरफ मतवजा करना है, अच्छी अच्छी बातें करके, यहाँ तक तो सब बात ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे जब हम लोग आम जो वोट देने वाले हैं, जो सबसे पहले उस सियासतदान के या सियासी जमात के बनते हैं खैरख्वाह, उसके प्रमोटर, उसके साथ तावन करने वाले, उसको वोट देने वाले की नियत कर लेते हैं इस दफा हम इसको वोट देंगे, उससे अगले स्टेप पे कुछ लोग उसके कारकुन बन जाते हैं, उसके जलसों में जाके कुर्सी ऐसी देखनी शुरू करते हैं, आवे आवे जावे जावे उसके पीछे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं। वो कारकुन जो है वो फिर सियासी रहनुमा बन जाते हैं, सियासी रहनुमा से उनको टिकट मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, कबीना कैसा बन जाते हैं। देखिए, जो मेहनत करेगा मुल्को कौम के लिए उसको तो फायदा मिले तो बेहतरीन है, लेकिन हालातों वाकया ये हो चुके हैं कि रस्सागीर जो है इसमें ज्यादा शामिल होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तादाद 20% और 80% की होती तो काबिले बर्दाश्त थी, 30% 70% की होती काबिले बर्दाश्त थी, अनफॉर्चुनेटली ये तो 50% से ज्यादा रस्सागीर हो चुके हैं। बाकी बेचारे थोड़े से लोग हैं जो मुल्को कौम की अवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, जो अपने फवायद के लिए नहीं, अपने घर को कोठियों में और रेस्ट हाउसों में और बड़े बड़े फार्म हाउसों में कन्वर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज बनने के लिए नहीं, वो सिर्फ लोगों की हमायत के लिए, लोगों के हालातों वाकत को दुरुस्त करने के लिए और मुल्को कौम का परचम को सर बुलंद करने के लिए आते हैं। और ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती जा रही है और वक्त वो उस वक्त से हमें डरना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, आपके सुनने वालों को उसके ऊपर गौर करना चाहिए जो वोट कास्ट करते हैं, कि वोट कास्ट करने से पहले वो किसी बाजार से कोई सब्जी लेने चले जाएं तो उसको उठा उठा के देखते हैं, बार बार चुनते हैं, कोई घर में पेट पालने के लिए लेके चले जाएं तो उस पेट के बारे में बड़ी तहकीक करते हैं, इसका खानदान क्या था, नस्ल क्या था, इसके दांत कैसे हैं, इसके फलां क्या है, ठीक है। लेकिन जब सियासत में आप आते हो, मेरे जैसे लोग भी अंधाधुंध जो तकलीद करते हैं, तो इस बारे में जब तक अवाम की सोच बेहतर नहीं होगी, जब तक अवाम ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक ये हालातों वाकया ठीक नहीं होने। हाल बता, जिस तरफ का इशारा आपने किया कि सियासतदान फिर जब गैर मुतल्लिका लोगों को, जिन्होंने कभी कोई मेहनत भी नहीं की होती, उन पैराशूटर को जब जब अपना मुकाम दे देते हैं, तो वहां भी कल्ट्स काम आती हैं। अपना मेरे मोहतरम राजा साहब, वहां भी कल्ट्स, और कल्ट्स के पीछे से जो बैठे हुए जो बड़े बड़े जो कड़ियां लड़ियों को हलाने वाले, इनकी इनकी तन पीछे से इनको बना के शोभदाबाज जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। किसी का सिफारशी लेटर आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, किसी की अचानक सिफारिश आ जाती है, कोई कोई बहुत बड़ा बैंक उसकी सिफारिश कर देता है, कोई बहुत बड़ी तंजीम उसकी सिफारिश कर देती है, कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई जो रिलेशनशिप है वो उसकी सिफारिश कर देती है, वो पैराशूट की तरह नाजल हो जाते हैं। तो यहाँ भी आके अगेन वही बात राजा साहब जो मुझे और आपको तकलीफ देती है कि कल्ट फिर दोबारा कार फरमा होती है। यहाँ आके उस सियासी जमात के जो बड़े हैं, सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनको ख्याल करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो मुल्क और कौम के खैर ख्वाह हैं उनको छोड़ के इन दगड़ दगड़ के दलालों को क्यों वो मौका दे देते हैं, क्यों अपनी जगह अपने स्पेस बनाने का मौका दे देते हैं। और ये कल्ट जो है इन्हीं बहानों से, इन्हीं हीले बहानों से, इन्हीं पैराशूट के जरिए से आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर, आपकी अदलिया के अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, आपकी सियासत के अंदर, आपके अफवाज के अंदर, आपकी सहाफत के अंदर, ये कल्ट के अपने एजेंट जो है वो इंडक्ट कर देते हैं। और एक दफा इंडक्ट होने के बाद, क्योंकि मैनू माल दिखा, तेरा मेरा मूड बने, पैसा जो है फिर पहियो लगते हैं नीचे केस के ऊपर पहियो लगते हैं, ये कल्ट के कारिंदे जो पीछे अपना धंधा लेके आते हैं, पीछे अपना धन लेके आते हैं, पीछे फिर सफारी लेके आते हैं, ये फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं और एक वक्त आता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये माफिया बन जाते हैं।
1: आपने बड़ा अच्छा इसका तजिया किया, बल्कि पोस्टमार्टम किया। शाकर साहब, ये पिछले जो चंद माह चल रहे हैं अपना अमेरिका और ईरान के तालुकात पर डेफिनेट आपकी गहरी नजर है। पाकिस्तान को मेजबानी का मौका मिला, इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, सुलह कराने की पूरी पूरी कोशिश की और अभी तक कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में बड़ा नाम है पाकिस्तान का, फौज का, आसिम मुनीर साहब का। यूरोप कभी इस तरह किसी की तारीफ नहीं करता, पहले कहते थे कि यूरोप जब किसी की तारीफ करे तो उस मुल्क का होता नहीं है, लेकिन अब जो हकीकत हमें सामने नजर आई है, जो कुछ हमें देखने को प्रैक्टिकली मिल रहा है, तो शाकर साहब इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं?
0: राय साहब, बहुत ही शानदार एक वक्त गुजरा है और हमने यहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान ओवरसीज फॉर्म और कारवाने फिक्र के प्लेटफॉर्म को लेके इसकी बुनियाद पे इसके जरिए तमाम आज भी अभी आपसे बातचीत करूंगा तो 4:30 बजे बरतानिया टाइम, 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्विटर के ऊपर फिर दोबारा हमारी स्पेस है, इन्हीं चीजों को लेकर हम डिस्कस करते रहते हैं। पिछले साल हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमारे उम्मत के इब्राहिम की तलाश जो है वो बहुत जरूरी हो चुकी है, खलीज का मुतहिद हो जाना वो जो बहुत जरूरी हो चुका है, खलीज के दरमियान जो खलीज पैदा हो चुकी है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ये तमाम 57 इस्लामी ममालिक जो है इनका इकट्ठ हो जाना, मुतहिद होना बहुत बहुत जरूरी है, ये सारे के सारे मुस्लिम ममालिक जो है छोटे हैं, बड़े हैं, कमजोर हैं, ताकतवर हैं, ये आखिर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, सब ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद क्यों बना रखी है, हमने ये आवाज बुलंद की, पूरा पूरा महीना हमने उसके ऊपर स्पेसिस की, बहुत दूर तक वो गई, हजारों की तादाद में लोगों ने हमारी स्पेसिस को अटेंड किया, आज भी कर रहे हैं, कल भी की थी, कल बलोचिस्तान के हमारे आए हुए थे हमारे एक स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, आज भी इंशाल्लाह मेहमान तशरीफ लाएंगे। हमने ये अलम बुलंद करके रखा हुआ है कि जो कुछ इस वक्त मुस्लिम दुनिया में हो रहा है हमारे मुस्लिम ममालिक की अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हो रहा है, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है, अब हमें मजीद और कोई गलती नहीं करनी, और इसका नतीजा आज ये निकला है कि हमारे मुस्लिम ममालिक के दरमियान अब ये बात जोर पकड़ चुकी है कि एनफ इज एनफ, अब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, अब हमें अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए, अब हमें किसी को आप अपना लीडर मान के उसके पीछे लगना चाहिए। तो आज आपने जो ईरान और अमेरिका की जंग की बात की, हरगिज इसमें जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है, हरगिज कामयाब नहीं हुआ, अमेरिका को बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, अमेरिका को हर दफा शिकस्त हुई है, इस दफा भी शिकस्त हुई है और शिकस्त बड़ी बड़ी ही तकलीफ दे शिकस्त उसको हुई है। कहाँ वो मुल्क को मस्मार करने आया था, कहाँ वो इस पूरी सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद करने आया था, नो डाउट उसने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाया कि ईरान के हाथ और पांव बांध कर रखे हुए थे 50 सालों से, ईरान के हाथ और पांव बांधने के बावजूद उस बंधे हुए हाथों के साथ, उन बंधे हुए पैरों के साथ उसने आपको मुकाबला करके दिखाया, ना ही वो सिविलाइजेशन को तबाह कर सका, ना ही वो मुल्क को तबाह कर सका। 20 लाख ईरानियों ने अपने नाम जो पेश कर दिए हैं, रजिस्टर अपने को करा दिया है कि अमेरिका की जंग के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, हमें शहादत कबूल है, हम अपने मुल्क को जो है सरनगू नहीं होने देंगे। ईरान का हर शख्स जो है, जो जो इस वक्त ईरान को, ईरान की हिफाजत कर रहा है, उनकी आंखों के अंदर आप जोश देख लीजिए, उनके चेहरे के ऊपर आप एक जज्बा देख लीजिए, उनके बयानात के अंदर एक हौसला देख लीजिए। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वहां 35, 34, 35, 40% जो कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जो ईरान के अंदर इस्लाम नहीं चाहते हैं, जो ईरान के बजाय, जो ईरान की हुक्मरानों की बजाय अमेरिका नवाज है, जो जो इसराइल नवाज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं यहूदी नवाजों की या हिंदुत्व नवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो बाकी बचे हैं, उन्होंने ऐन उस वक्त जब उनके सरों के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, उन्होंने खुले मैदानों में खड़े होकर साबित कर दिया कि हमें किसी अपने मौत की कोई डरो खौफ नहीं है। आज वो इतनी बड़ी ताकत जो कि दुनिया भर को अपने दुनिया भर को ब्लैकमेल करती है, जंग के अंदर झोंक देती है, इजराइल और अमेरिका दोनों इस वक्त शिकस्त खोरदा है, दोनों के मुल्क के अंदर बहुत पहली दफा ऐसे हुआ है कि उसने हमला किया है, हमले का जवाब दिया है, उन मुल्कों के अंदर भी मिसमार किए गए हैं, इमारतों को, औरों को बर्बाद किया गया है, उनके नेटवर्क को बर्बाद किया गया है, उनके अमेरिकन उनके फौजी सिस्टम को बर्बाद किया गया है, उनके आर एन डोम को बर्बाद किया गया है, उनके सेफ्टी को बर्बाद किया गया है, उनके बंकर को बर्बाद किया गया है, उनके बड़े बड़े जो नेतन्याहू जैसे बड़े बड़े जो उनके खानदान के हमले किए गए हैं। आज अमेरिका पहुंचा है तो कहाँ पहुंचा है, बेशक पाकिस्तान की जो मीडिएशन की वजह से पहुंचा है कि आप नए हर्मज के ऊपर वो कहता है कब्जा मेरा होना चाहिए, मेरी मर्जी के बगैर वहां कोई जहाज ना आगे पीछे ना जाए। ये क्या जंग है, ये कहां से उसने चलाई और कहां पहुंची, और आज से चंद हफ्तों के बाद यहां से भी वो पीछे हटेगा, नो डाउट। इस वक्त एन एस एल जब मेरी और आपकी बात हो रही है, मेरे मुंह में खाक, खबर ये है, मालूम ये है, कड़ी से कड़ी के जोड़ू तो आइंदा चंद दिनों में फिर दोबारा बहुत बड़ा हमला, शदीद किस्म का हमला ईरान के ऊपर हो सकता है, और उसके लिए इसराइल ने पिछले ये चंद दिनों में जिन दिनों में ये बंद की गई, जंग बंद की, उसने अपने आप को फिर दोबारा उसने अपने आप को इकट्ठा किया है, उसने अपने वसाइल में, जंगी वसाइल में उसने इजाफा किया है। खबर ये है कि उसने सारे इसराइल के अंदर उसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसने असला इकट्ठा कर लिया है, मिसाइल इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ईरान के सामने वो नहीं खड़े हो पाएंगे। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ईरान की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के अलावा बेशुमार मुल्क उसकी मदद के लिए खड़े हो गए हैं, अमेरिका की मदद के लिए कोई नहीं आया, इसराइल की मदद के लिए सिवाय इंडिया के वो कोई नहीं आया, लेकिन इंडिया का मोदी भी सिर्फ मदद कर सका तो उसको जाके अपना बाप बना के इंडिया को उसने माँ बना दिया, मदर ऑफ बना दिया, उसको बाप, इसको मदर, और अल्लाह ताला माफ फरमाए, नफरत की हद तक उसके अपने लोगों ने इससे नफरत की है कि तुमने जाके इसराइल को अब हमें इंडिया को माँ क्यों बनाया, उसको बाप क्यों बनाया। तो ये नफरत का इंतहा जो है अमेरिका के हिस्से में आई है, इंडिया के हिस्से में आई है, उसके इसराइल के हिस्से में आई है, और ये वक्त साबित करेगा कि आज जितना असला अगर अमेरिका ने दोबारा इकट्ठा कर लिया है, इसराइल ने अपना सारा इसराइल जो है अपना डिपो बना दिया, असले का डिपो बना दिया है, तो याद रखिए ईरान के पास वो सोफिस्टिकेटेड जो ड्रोन्स हैं उस असले के डिपो को जाके बड़ा आसानी उसको तहस नहस कर देंगे। आने वाला वक्त इसको बताएगा, लेकिन आज तक इस वक्त तक जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ईरान जो है वो फातेह है। कैसे फातेह पाकिस्तान हुआ इंडिया के खिलाफ, आज ईरान ने साबित किया इतनी बहुत बड़ी माइट के खिलाफ खड़ा होके उसने शिकस्त नहीं होने दी अपने मुल्क की, अपने सिविलाइजेशन की, अपने लोगों की। अल्लाह ताला का ये फजल करम उनका जारी और सारी रहे। उम्मत मुसलमा के अंदर जो होने वाली गलतियां कोताहियां हैं, अल्लाह ताला
1: इन शाकर साहब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है,
0: पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से ईरान के साथ खड़ा है, और एट द सेम टाइम ईरान की जंग के साथ साथ अफगानिस्तान की जंग इस वक्त भी लड़ा है, कल रात को भी वहां हमले हुए, परसों रात को भी हमले हुए, मुसलसल ईरान पाकिस्तान को ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ जंग करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ उनके जो उनका जो सिंदूर था, उस सिंदूर के हमले को तबाह बर्बाद करके आज हम 1 मई से लेकर 10 मई तक हम मुसलसल जश्न मना रहे हैं, जश्न बनियान और मसरूर मना रहे हैं। इस पर सारा पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल जो है ना, पूरी कौम को लेके जश्न मना रहे हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। हमने यहाँ स्पेस की दुनिया में, इंटरनेट की स्पेस की दुनिया के ऊपर 1 मई से लेके मैंने अपने साथियों के साथ ऐलान कर रखा है कि हम जश्न बनियान और मसरूर मनाएंगे, और हमारा जो मार्का है जो है वो मुसलसल चल रहा है, कभी वो अफगानिस्तान की अगेंस्ट हमारा मार्का हक चल रहा है, कभी हम बलूचिस्तान में इंडिया के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इधर से हम ईरान की मीडिएशन करके वहां भी हमारा पूरा पैरा है अल्लाह ताला के फजल करम से। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की पिछले साल मई में, आज ये पूरा साल गुजर गया है, आज हम सालगिरह मना रहे हैं, आज हम जश्न मना रहे हैं, पूरा पाकिस्तान और आपके सुनने वाले जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है वो इस जश्न का हिस्सा बन जाएं। और जो लोग किसी वजह से, किसी कल्ट की वजह से वो जो नहीं बनना चाहते, तो वो भी कोई बात नहीं, अपना अपना करदार जारी रखे, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। कोई कोई हिंदुत्व के साथ मिलके, मोदी के साथ मिलके, यहूदियों के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके कोई पाकिस्तान के खिलाफ अर्जासराई करना चाहता तो करता रहे, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। वो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं वो अल्फाज यहाँ आपके रेडियो पे नहीं बोल सकता हूँ, मेरे ट्विटर के, मेरे अकाउंट पे जाकर देख लीजिए, मैं जो लफ्ज के लिए इस्तेमाल करता हूँ सादा लफ्जों में, दगड़ दगड़ के दलालों का इंशाल्लाह मुकाबला हम कर लेंगे। जो दगड़ दगड़ में चाके रखने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर हैं, उनका इंशाल्लाह बहुत बुरा अंजाम होगा अल्लाह ताला के फजल करम। जी राय साहब,
1: शाकर साहब, पाकिस्तान में बड़े काम हो रहे हैं जो हम देखते रहते हैं अखबारात में, मीडिया पे देखते हैं। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं, जो चीज़ें हम खुद जानते हैं, ज़ाती तौर पर जानते हैं, बड़े बड़े मंसूबे हैं, अरबों खरबों के मंसूबे हैं, और कोई इख्तलाफ नहीं हो रहा। शुरू में लोगों ने किया, मैं अगर पिंडी शहर की बात करूं, जो पुल बन रहे हैं, चीज़ें अंडर पासिस बन रहे हैं, सब जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस क्या होगा? मंसूबे सारे अच्छे हैं, मुकम्मल भी टाइम से हो रहे हैं, वक्त से पहले मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो जिसे कहते हैं आप, वो क्या रगड़ दल्ले जिन्हें आप कहते हैं, कल्ट्स कहते हैं, फिर उस निज़ाम को, वो चीज़ों को तबाह करने के पीछे पड़ जाते हैं, ये इसको कौन रोकेगा? देखे ना, बरतानिया में सड़क बनती है तो उसका चेक एंड बैलेंस है, फिर बनेगी, फिर ठीक होगी, हर वक्त वो ठीक करते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन इसका जो है बैकअप क्या होगा?
0: हमारे पाकिस्तान के अंदर इन तमाम अच्छे काम जो हो रहे हैं मुसलसल हो रहे हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको बताऊं कि आज इस वक्त पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई पैक्ट करने के बाद, हमारी पूरी ब्रिगेड जो है सऊदी अरेबिया के हरमैन शरमैन की हिफाजत के लिए पूरी अपनी ताकत, अपनी माइट के साथ, एयरफोर्स के साथ, तैयारों के साथ, टैंकों के साथ वहां पहुंच चुकी है। उसके बाद ये बिल्कुल हो चुका है, फैसला हो चुका है, इराक ने हमें दावत दी है, हम वहां भी सेम उस तरीके से दिफाई पैक्ट में जा रहे हैं, और उसमें उसके बाद इराक ने खुद पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान, इराक के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस बनाए पूरा, हमें हमसे उन्होंने जेएफ थंडर का फ्लीट मांगा हुआ है। राजा साहब, दुनिया के कौन से ममालिक हैं, इस्लामी दुनिया के अलावा भी, चीन और चीन के अलावा दीगर जो दूसरे नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, अलजायर ने, मराकश ने, सोमालिया ने, सूडान ने, बरतानिया ने, चाइना ने किया 4-5 दफा, बांग्लादेश ने, तुर्किया ने, जी ये ईरान ने, किस किस मुल्क का मैं आपको नाम लूं जिन्होंने तराने बना के नशर कर दिए हैं, अमेरिका से इंग्लिश के अंदर तराने बन के पाकिस्तान के नशर हो रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए, जिनके खिलाफ इन दगड़ दगड़ के दलालों ने बेनतहा हर्जासराई की, बेनतहा बेहरमती की। आज पाक अमेरिका का जो सुपर पावर अपने आप को समझता है, उसका जो सदर है वो बार बार पाकिस्तान की तारीफें करता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफें करता है, वही मुल्क जहां इन दगड़ दगड़ के दलालों ने फील्ड मार्शल आसम मनीर के खिलाफ वहां बेनतहा हर्जासराई की, बेनतहा दर्दनाक किस्म की, जो कि गजबनाक किस्म की, जिससे हमारी हमें बेचैनी बेशुमार होती थी, उनके हाथों के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर खून लगा के, वहां मोबाइल ट्रकों के ऊपर उनके वीडियो चलाए गए, बगैरती की इंतहा की गई, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान की हरदासराय की गई, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले करवाए गए, पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट है उनको बंद करने की कोशिश की गई। आज वही शहबाज शरीफ, आज वही फील्ड मार्शल आसम मनीर अफवाज पाकिस्तान, हमारा एयर चीफ जो है अल्लाह ताला के फजल करम से जहां दुनिया में जाते हैं, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो इराक है, चाहे वो लीबिया है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो मस्कत है, चाहे वो यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, चाहे वो सूडान है, चाहे वो जहां जहां का भी आप नाम लें, मुझे बताएं कहां कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में हमारी हमारी बाबका तरीके से हमारी हमारा वेलकम नहीं हो रहा। आज से चंद महीने पहले, 2-2.5 साल पहले, ए दगड़ दगड़ के दलाल जो थे पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ के आग लगा के फेंका करते थे और गालियां निकाला करते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, अफगानों के साथ मिलके और हिंदुत्व के मोदियों के साथ मिलके, बगैरतों के साथ मिलके, आज उसी पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके जो गैर पाकिस्तानी है, जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे मुल्कों के लोग है, वो अपने पासपोर्ट के साथ जोड़ के पाकिस्तान, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। राजा साहब, इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं कि इंडिया के अंदर, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनके पार्लियामेंटेरियन जो मोदी के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, बेशमात थपेड़े उसको पड़ रहे हैं, और उसको कहा कहा ये जा रहा है तुमने ये सिंदूर किया तो क्यों किया। वहां पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए लोग जो है, और उसका जो गोदी मीडिया है उसके अंदर जो आप बात बात बात देखिए क्या हो रही है, गोदी मीडिया के अंदर इतनी बड़ी करवट आई है कि मीडिया के अंदर लाइव टेलीकास्ट के अंदर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो दूसरे को रोक देता है, खबर दे बकवास बंद करो झूठ मत बोलो। वहां के व्लॉगर जो है इंडिया के, वहां के अंदर से उठ के ये कह रहे हैं कि हमें आज तक ये गलत सबक पढ़ाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ बिला वजह हमें दुश्मनी करवाई गई, ये पाकिस्तान तो इंतहाई अच्छा मुल्क है, और हमने आज तक जितने पुलवामा से लेके पहलगाम से लेके हमने वो ताज होटल तक जितने भी सारे कराए, सारे के सारे उन्होंने खुद कहा, इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये सारे के सारे फॉल्स फ्लैग थे। उनकी फिल्में जो थी उनके गले का तोक बन गई, उनकी उरी फिल्म जो थी उनका गले का तोक बन गई, उनकी ये दुरिंदर फिल्म भी थोड़े दिन पहले जो बनाई है उनके ऊपर उनको गालियां पड़ रही है, उनके बहुत बड़े बड़े सहाफी जो है वो बना रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था हमने बहुत गलती की और पाकिस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है। ये अल्फाज जो है पाकिस्तान के किसी शख्स के नहीं है, और मुझे अफसोस होता है राजा साहब, मेरे समेत आप समेत हम अपने पाकिस्तान की इस फतह को कोई सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम वहां से वो गोबर आर्या जैसा एक शख्स जो था, वो बख्शी जैसा एक, वो बड़ी मूछों वाला एक जनरल जो था, बैठ के वहां से बैठ के पाकिस्तान को गालियां निकाले करते थे, आज उनके चैनल के लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं कि तुम बदबख्त हो, तुम बेगैरत हो। अभी थोड़े दिन पहले एक खातून ने वहां बैठे लाइव शो में कहा कि इस गोबर आर्या को इंडिया के मिसाइल के साथ बांधो और इसको इसराइल की तरफ फेंक दो, ये जहां वहां जाके फटे जा गई है। इस कदर शदीद नफरत वहां इंडिया के अंदर से उठी है हमारे बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद, उनके जो सुरेंद्र संदूर था उसकी नाकामी के बाद, और आज वो जख्मी सुवर की तरह वो करवटें बदलते हुए फिर दोबारा पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वीडियोस बना के कहते हैं ये हमारा संदूर खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान पे हमला दोबारा करेंगे, करो आज हमला। मेरी आज की स्पेस का टॉपिक ये ललकार है, हम तुम्हारा तहस तहस करके रख देंगे, हम सीसा पलाई दीवार है।
1: शाकर साहब अपने टाइम इजाजत नहीं दे रहा, हमारे पास 2 मिनट हैं, थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शाकर साहब, जो हमारे साबका वजीर आजम ट्रंप से मिलकर आए थे तो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने दोबारा वर्ल्ड कप जीता है, उनका अब चूंकि वो जेल में इस वक्त, उनका मुस्तकबिल क्या है?
0: मैं लानत बेशुमार भेजता हूँ इसके ऊपर अपनी अपनी जुबान खोलने की बजाय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज इस वक्त चाइना की मदद से हम आप दोस्त हासिल कर चुके हैं, और अगली रोजे हमारे पाकिस्तान के अंदर वो बनाई जाएंगी। JF थंडर 17 के बाद हमें F-35 मिलने जा रहे हैं अमेरिका, वहां तुर्किया से कान का तैयारा जो है वो हमें मिलने जा रहा है, और कान के तैयारी की पूरी फैक्ट्री पाकिस्तान आ रही है, आप दोनों की फैक्ट्री पाकिस्तान लगने के लिए शुरू होने जा रही है। तुर्किया ने हमें 2 बहरी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट बना के दिए, तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है। चाइना ने हमें अभी थोड़े दिन पहले नेवी को हमारा बहुत बड़ा एक बहरी जहाज बना के दिया, दूसरा भी बना के देंगे, लेकिन दूसरा बहरी जहाज जो बनेगा पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री उसकी लगेगी। पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्किया के साथ मिलकर आप हमारे ड्रोन्स का बनाने की नई फैक्ट्री यहाँ लगाने का प्रोग्राम बनाया है। पाकिस्तान इस वक्त सैटेलाइट के जरिए से स्पेस में जा चुका है, 3 हमारे सैटेलाइट वहां का इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे 2 जो एस्ट्रोनॉट हैं वो चाइना की मदद से खला में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि हम अनकरीब अगले 5-7 सालों में चांद का मिशन भी हम अनाउंस करने वाले हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के लिए शानदार किस्म के जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ रेगिस्तान को वहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है ज़राअत के अंदर, वहाँ टनल के जो जो हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ वो कामयाब हो चुकी है। चाइना ने हर एकड़ जमीन SIFC के जरिए से लेके वहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान, चाइना और कोरिया के साथ हमारा जॉइंट वेंचर जो बना है वो आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरीन ज़राई टूल जो है वो दोबारा पाकिस्तान की काश्तकारी में लेके आ रहे हैं, छोटे टूल्स और साथ हमारे रोबोटिक जो ऑपरेशन होने शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने बीज अपनी खादे बनाना शुरू करने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई है, सेमी कंडक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने अपने नाम के साथ, मेड इन पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर अपने टीवी, अपने फ्रीजर अपने एयर कंडीशन बनने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर 40 जगहों के ऊपर तुर्किया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, कोई 40 जगहों पे ऊपर उनके बहरी जहाज आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर, वो गैस और तेल जो वो निकालने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो क्वांटिटी है वो गैस की और पेट्रोल की, जो कुएं हैं वहां जो नए खुद रहे हैं। गूगल पे सर्च करना शुरू कीजिए पाकिस्तान के अंदर किस कदर शानदार काम किए जा रहे हैं। राजा साहब, चंद महीने पहले, 2 साल पहले आपके स्पेसिस के अंदर यहाँ कहा जाता था कि पाकिस्तान टुकड़े होने जा रहा है, कहा जाता था पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होगा, नहीं हो चुका है, कहा जा रहा था पाकिस्तान का हाल जो है श्रीलंका से बुरा होगा। आज ये सारे के सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के फलोक्रम से आपके अजली दुश्मन, दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, वो सर झुका के पड़े पड़े बैठा हुआ है। इसराइल आपसे खौफजदा है। हमने अल्लाह ताला के फलोक्रम से सूडान को भी F-35 दे दिए, हमने अजरबैजान को भी दे दिए, हमने सोमालिया को भी दे दिए, हमने तुर्किया को भी दे दिए, हमने इंडोनेशिया को भी दे दिए, हम इस वक्त कतर के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे पीछे इस वक्त इराक आया हुआ है, हमारे पीछे इस वक्त अपना बांग्लादेश आया हुआ है।
1: शाकर साहब, आप टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक होता है ना, वो ईमानदारी की फैक्ट्री कब लगेगी?
0: ईमानदारी की फैक्ट्री हम अगले प्रोग्राम फिर लगा देंगे, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा।
1: बहुत शुक्रिया शाकर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जज़ाकअल्लाह खैर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद
1: जिंदाबाद। सामान्य नाज़रीन, ये थे शाकुर कुरैशी साहब जो के फ़ज़ाओं में हमारे पास साथ बात कर रहे थे। बड़ा खुल कर तजिया करते हैं, बोर्ड बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं, और अपनी राय को जो है वो कहने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। सब नाज़रीन, हमारा किसी से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, कोई जवाब देना चाहे, बात करना चाहे, तो उसके लिए दारा आपकी आवाज़ का टाइम जो है वो हाजिर है, वो आ सकता है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आपके साथ शेयर करनी होती है। जो भी नई खबर आती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने समाइन नाज़रीन तक इस खबर को पहुँचाया जाए और ख़बर ली जाए। जो खबर देते हैं, ज़ाहिर है उनके पास खबर होती है, बहुत सारा टाइम उनका भी लगता है, तो हर आदमी बंदा बड़ा मसरूफ़ होता है। तो हमारे तजिया नगार अदनान अमीन अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है अदनान। मौसम तो आज बहुत अच्छा है, लेकिन आज खबरों के लिहाज से क्या आप लेकर आए हैं आप?
2: राजे साहब, खबरें तो बहुत ज्यादा हैं और बहुत, तो जैसे पता है मौसम भी आज अच्छा मौसम है, उम्र की तरफ जा रहा है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक खबर है जिसका इतनी वो हाईलाइट नहीं है, मगर उसका क्या कहते हैं, एक आउटपैक बहुत काफी किस्म का आ सकता है। हम यहाँ एमिसलोन कमून में रहते हैं, वो 2019 का केस है। वो ये केस था कि दो पक्षिकें थी फीमेल्स जॉब के लिए स्कूल पे, और उनने क्या कहते हैं हाथ देने से कहा था कि हमने हाथ नहीं देना, हमारे कल्चरली मुसलमान थे डेफिनेटली, और उनको पक्षिकेंता थे और उनको उस वजह से जॉब से बाहर निकाल दिया गया था। वो फिर लीज टेलिंग ने उनके अंदर केस चला था और वहां पे उनको क्या कहते हैं मिल गई थी कि वो सही थी और स्कूल वाले गलत थे। फनी बात है, उसका कितना खुद स्कूल का प्रोसीजर का मेंबर था, मुझे पता है। और ये हुआ था कि फिर उनने जो एपिसोड का मून है, उनने उस केस की डिसीशन को नहीं था माना, तो वो फिर केस जो स्टालेंस हाथ में गया था, वहां 2-1 से स्टालेंस हाथ ने एपिसोड का मून को कहा था वो सही है। अब वो केस मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है और कमिंग डेज में उसका क्या कहते हैं एक रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट एक बड़ा ही क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड है कि कल्चरली वाइज देखा जाए तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हाथ देने से। अब देखते हैं कि जज सुप्रीम कोर्ट के उस केस में क्या फैसला देते हैं। फैसला आने वाला है और वो क्या कहते हैं काफी चीजों को बताएगा कि ये मुल्क की भी डायरेक्शन कैसे जा रही है और कल्चर और रिलीजन को क्या कहते हैं बंदा मिक्स नहीं करता कि मिक्स करता है। लेट्स सी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैसला होगा इस केस में।
1: जबरदस्त। तो यहाँ तो आपको पता है अदनान, सब चीज जो है कानून और सिस्टम के तहत चलती है, यहाँ तो कानून की हुक्मरानी होती है।
2: अरे साहब, मैं वही कहूंगा, मैं राजा साहब ये भी तो कहूंगा ना कि यहाँ लॉ के हिसाब से चलता है, मगर मैं ये भी कहूंगा कि इस चीज के अंदर एक और चीज देखी जाएगी कि इंडिपेंडेंट राइट्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज का फ्रीडम है। जब हर चीज का फ्रीडम है तो फिर आप किसी को मजबूर तो नहीं ना कर सकते कि वो शेकर हैंड करे। तो इसलिए इस केस के रिजल्ट और इस केस का फैसला जो आएगा ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है। क्योंकि जो जो मेरे लिए जो सरप्राइजिंग है वो ये है कि हाई कोर्ट ने ठीक है उनकी डिसीशन है, मगर मेरा जो एनालिसिस है, मैंने जो बहुत ज्यादा चीजें देखी है, वो मैंने ये हमेशा देखा है कि जो एक फैसला होता है ना, लेस वो पीओ आदमी का भी हो, वो ज्यादातर सलेंस हाथ पे जाता है, दूसरा आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट पे जाओ तो वही फैसला ज्यादातर मैंने 60% में यही देखा है, जो पहला फैसला होता है वो उस पर जाते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे इस फैसले का क्या होता है, क्योंकि मैं कल मेरी मुलाकात कुछ ये नए पॉलिटिकल से भी हुई थी कल, तो मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कहते थे कि आप लोग, मैंने कहा मुझे तो मालूम था, पर मसला मेरा ये था कि मैं उस वक्त इन्हीं पीड़ता कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, मगर ठीक है उस वक्त का जो प्रिंसिपल है और जो क्या कहते हैं जो लीडर थे स्कूल के, उनने इस फैसले में क्या कहते हैं उनका क्या कहते हैं साथ दिया था। और मैं भी आज ही कहूंगा कि ये किसी की आजादी में तो नहीं जाना चाहिए, मगर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला इस पर देती है और क्या आगे का क्या सिस्टम बनेगा,
1: अदनान यहाँ तो
2: क्योंकि
1: केस जब चल जाता है तो फिर उसका फैसला होकर रहता है, फिर ये सालों नहीं गुजरते जो है ना, जब केस अदालत में चला गया, केस शुरू हो गया, तो उसका फैसला जब तक नहीं होता खत्म नहीं करते।
2: भाई राजा साहब ये केस 2019 का चला हुआ है और देखिए 7 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आया है, और वो इसलिए आया क्योंकि ये केस बड़ा मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है फैसला देना, क्योंकि आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर स्प्लिट डिसीशन है, 2-1 की डिसीशन है, तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है अगले दिनों में।
1: चलें, ये तो
2: मेरे हाथ
1: फैसला आ
2: से
1: जाएगा चूंकि अब चल पड़ा है। तो अदनान, अभी क्या फैसला हुआ हुकूमत का, कोई नई खबर आई?
2: ये राजा साहब हुकूमत की उनकी कोई डिटेल्स बाहर तो नहीं अभी आ रही, बस ये है कि ये रिकॉर्ड टूट जाएगा जो 42 दिन का था 2022 का, वो बस टूट जाएगा, और अभी तक तो नहीं कोई कोई सिर पर बना डेनमार्क की गवर्नमेंट का, निगोशिएशन चल रही है और होपफुली कमिंग डेज में क्या कहते हैं
1: तो मतलब है कि
2: हुकूमत
1: हिस्सा
2: बन
1: मिलने जा रहा है सियासतदानों को, जितना जुस्सा इतना हिस्सा तो ले लेंगे ये।
2: जाएगी। रिपीट करें 1 मिनट क्या?
1: मैंने कहा सियासत में होता है जितना जुस्सा इतना हिस्सा, जितनी पार्टी की मेंबरशिप होगी जो इताअत करेंगी पार्टी, डेफिनेट कुछ ना कुछ तो गेन करेगी, कमेटियां लेंगी, वजारत लेंगी, कुछ ना कुछ तो लेंगी।
2: हाँ वो राजा साहब वो देखिए वो तो जब हुकूमत की पूरा देखेंगे कौन ले और सारी चीजें बनेंगी, तो वो क्या कहते हैं एक एक अपना बनाएंगे, क्योंकि आप एक और एक एक एक, एक ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही है 3-4 दिनों से जो जो हमारे प्रोग्राम के बाद ही शायद हो गई थी, वो ये है कि डेनमार्क के अंदर हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी अजीब चीज हो गई है। जैसे आपको मालूम होगा, काफी लोगों को पता भी होगा कि पार्लियामेंट में एक नई पार्टी आई थी जिसका नाम था पवन 25, उसका खाली चेयरमैन बाकी रह गया, बाकी उसके जितने साथ 3 साथी आए थे, एक तो उसने बाहर एक्सक्लूड कर दिया था ना, अब उसका आखिरी साथी भी छोड़ गया। मतलब है कि डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट बनी ही नहीं है तो एक पार्टी का खाली चेयरमैन रह गया,
1: मतलब
2: ये
1: पहले
2: कभी
1: शो
2: नहीं
1: में ही
2: हुआ।
1: फिल्म फेल होगी, पहले हफ्ते में ही।
2: पहले 40 दिनों में फिल्म फेल हो गई, क्योंकि जिस बात पे वो मिलना कहते हैं ना, जिस स्लोगन से वो अंदर आया था और वो जो लेके आया था, वो ही क्या कहते हैं उसका ही क्या कहते हैं एक किस्म का पटाखा बज गया। और मगर मगर उसका फायदा भी देखा जाए तो मैं भी उसको ये कहूंगा कि उसका फायदा जो है ना, फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो उसके मैंडेट है ना वो एक किस्म के मौत में स्मिथ को जा रहे हैं, तो देखा जाए तो वो उस तरफ ही जा रहे हैं, और मॉडर्न मेन स्मिथ जो है उसके बारे में भी क्या कहते हैं उसकी जो स्टाइल है ना और जो जो जो जो वो करता है वो ऐसा है कि वो मैनुपलेशन में बहुत तेज है, क्योंकि उसकी बंदा बात देखे ना और चीजें देखे तो बंदा हैरान होता है कि वो बंदा क्या कर रहा है, तो आप देखते हैं कि उसकी पोजिशन क्या बनती है, क्योंकि मैंने ये पहली दफा हुआ है कि डेनमार्क की हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जहां तक मुझे पता है कि डेनमार्क की जो पॉलिटिक्स फास्टिज्म होती है ना उसके अंदर नॉर्मल एक पार्टी का चेयरमैन नहीं बनता बैठता, ये इस बार खुद बैठ गया है, और ये क्या कहते हैं फॉरमैन है, क्योंकि पहला तो बेंच का बैठा हुआ है ना फॉरमैन फॉर पॉलिटिक्स, फिर हमारी पार्टी का आता है कि फर्स्ट फर्स्ट नेस फॉरमैन, और फिर SF का आता है, फिर ये आता है क्योंकि वो मैंडेट के हिसाब से आता है, और मैंडेट के हिसाब से तो बेंच तक का नीचे आना था, मगर जैसे जैसे वो इस वक्त चेयरमैन है पार्लियामेंट का, अक्टूबर तक वो रहेगा जब तक नई पार्लियामेंट का क्या कहते हैं सेशन नहीं लगेगा, तो उतनी देर तक वो बैठेगा, और उसके बाद उसने कह दिया कि मैंने नहीं बांटता। और व्यूअर्स के लिए मैं एक और चीज व्यूअर्स को बता दूं कि जो कमूने हैं और जो हुकूमत है उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स बन रही हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं बन रही, क्योंकि उनकी जो बजट की निगोशिएशन शुरू होनी होती है फाइनेंस मिनिस्टर में, वो रुकी हुई है, क्योंकि जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी उतनी देर तक उनकी बजट की पेशियों की नहीं होगी, और उनको नहीं मालूम होगा कि हमारे बजट किस तरह के बनने हैं नेक्स्ट ईयर। तो दैट्स मीन के काफी चीजें क्या कहते हैं रुकी हुई हैं, और जितना ही डिलेड गवर्नमेंट बनेगी उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं मसाइल जो हैं लोगों को होंगे। तो इसलिए कमून भी बड़ी स्पेंट है कि ये गवर्नमेंट काम बढ़ती है। मेरा गैस ये है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 14 डे के अंदर अंदर गवर्नमेंट तैयार हो जाए।
1: अदनान, पहले बड़े कद्दावर शख्सियत आत होती थी कि बाहर पार्टी में वर्कर की बड़े जो हैं वो नाम वाले होते थे, जो खासकर यूथ होती थी उसका भी बड़ा नाम होता था। तो अब इस तरह के कद्दावर जो सियासतदान हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं, जो रह गए हैं उनकी मेरे ख्याल चलती भी नहीं है।
2: ए भाई देखिए, हर चीज चेंज होती है टाइम के साथ, और यूथ है और काफी यूथ आगे आ भी सकता है और आना भी चाहता है। मतलब मसला ये है कि जब आप देखें कि सियासत में आना भी तो बड़ा पॉइंट चेंज हो गया हुआ है। अब देखिए, आप 80s 70s में आए थे, आपको सबको मालूम होगा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर खुले फिरते थे, खुले सड़कों पे होते थे, जाके खुला करते थे। अनफॉर्चुनेटली एक साल पहले की बात है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, उसको एक सीक्रेट एड्रेस पर रखा हुआ, किसी को नहीं मालूम कि उसका एड्रेस कहाँ पे है। कि आप देखिए कि दुनिया कैसे चेंज हो गई हुई है, और ऑब्वियसली दुनिया की क्या कहते हैं रेपुटेशन भी बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मैं खड़ा हुआ 2025 में, और लोग फ्वाह इतनी ज्यादा फैला देते हैं मेरे बारे में, जैसे फ्वाह फैली हुई है। अभी तक मैं जनवरी से लेके मई का मंथ 8 दफा मैं मतलब अपना घर शिफ्ट कर चुका हूँ। आपको लॉजिकल सोचना चाहिए कि कौन इंसान है जो 8 दफा घर शिफ्ट कर सकता है। जैसे मैं तो खुद हंसता हूँ कि लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो सो जब आप यूथ को एक्सप्लेन करते हैं ना कि आप हिस्सा लें, आप ये लें, आप वो लें, तो वो बहुत सोचते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारे जो फॉरेनर्स है ना, वो बड़ा कहते हैं कि हम जब अपना कुछ करना चाहते हैं ना, तो जो हमारे बुजुर्ग है ना वो कहते नहीं उस तरफ। तो मैं लोगों को ये ही कहता हूँ कि देखें, अब आपको ये सोचना चाहिए कि 5th जनरेशन के तक पहुंच गए हम लोग, और जब हम 5th जनरेशन तक पहुंच गए ना, तो जो 5th जनरेशन है ना उसको ने इस सोसाइटी के साथ चलना है, और जब उसने सोसाइटी के साथ चलना है ना, तो फिर उसने उस सोसाइटी के साथ ही वोट क्या कहना के देना है। और राजा सब यही चलता है। आज शाम को मुझे मेरा था फरवरी तक ज्यादा नहीं था कि मैं शायद स्कूल बोर्ड जो होते हैं ये चीजें होती है शायद उससे अब अपना क्या कहते हैं जिम्मेदारी से शायद थोड़ा पीछे हट जाऊं, क्योंकि मैंने समझा था कि मैंने शायद अपना क्या कहते हैं एक किस्म का रोल कर दिया जो है। मगर मुझे फिर कुछ लोगों ने कहा कहते हैं नहीं स्पेशल किड्स हैं ये हैं उसका थोड़ा बहुत अभी है कि अब काम, तो तुम थोड़ा टाइम और दे दो। तो फिर मैंने फैसला खुद किया, मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, वंस अगेन खड़ा होता हूँ, कामयाब हो गया जितना काम मेरे से होगा मैं कर लूंगा, और जब मैं देखूंगा कि मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं माजत कर लूंगा। क्योंकि मैंने कहा कि पिछली बार ये था कि मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ले ली हुई थी जिस तरह से मेरा फिर दूसरा कंपेयर पैसा पड़ा था, और प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं करूंगा। मैंने कहा थोड़ी अर्से पहले मैं मदद कर लूंगा और फिर मैं जो है फोकस अपना पूरा सियासत की तरफ करूंगा। और इसी तरह से आपने मोटिवेट करना है यंगस्टर को, उनको क्या कहते हैं मोटिवेट करके आगे लेके आना है।
1: तो ये तो आप तो सियासतदानों से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लोकल चूंकि आप काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखें कि शहर में पार्किंग के मसाइल, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, रोज नई इलेक्ट्रिक गाड़ी निकल आती है, पहले 5-5 साल बाद मॉडल तब्दील होते थे, कई गाड़ियों के 10 साल बाद तब्दील होते थे, अब लगता है कि हर रोज ये मॉडल तब्दील हो रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही हैं और खरीदने वाले भी अच्छी खासी तादाद में आ गए, लेकिन पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। جو کہتے ہیں کہ ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ گاڑیوں کے آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں، پارکنگ ملتی نہیں شہر میں، ملتی نہیں، انشورنس مہنگی ہو گیا، ورکشاپ مہنگے ہو گیا، دانتوں کا علاج مہنگا ہو گیا، آپ ایک دانت جو نکلواتے ہیں تو اس کا 2400 لگ جاتا ہے، اگر کمون کسی کی مدد کرتی ہے وہ بھی تو اسٹیٹ پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو پارکنگ والا سسٹم، اسی طرح یہ دانتوں والا سسٹم، آنکھوں والے ڈاکٹر کا سسٹم، اینکوں کا سسٹم، یہ ایک ساری جو ایک یہ جو سرمایہ دارانہ گیم ہے اس کے پیچھے کون ہے؟
2: حضرت صاحب اس پہ دو چیزیں ہیں، یہ ایک یہی تو بگیسٹ ڈیلیما ہے نا کہ گورنمنٹ نہیں مان رہی، کیونکہ دیکھیں آپ ٹیکنیکلی سارے ایکسپینشن اور ساری کمونلی جو ہوتی ہے نا اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ کو خود معلوم ہے کہ نیکسٹ کپل آف ایئرس میں جنریشنز گیپ چینج آ رہے ہیں، اور جب جنریشن گیپ آ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ایکسپینشن کو دیکھ کے اور کیا کہتے ہیں پیسے کتنے دے آئیں گے، تو اب سر یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور ماڈلس دیکھے جا رہے ہیں کہ ایک چیز فری ہے، دوسری چیز اتنی مہنگی ہے، تیسری چیز ایسے ہے، تو یہ تو ساری آبویسلی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ گاڑیوں کا دیکھا جائے تو گاڑیوں کا یہ تھا کہ یہ گاڑیوں کا یہ تھا کہ جب یہ کیا کہتے ہیں لیت پہنے ہوگی، پوسا ہوگی، ٹرینیں ہوں گی، اس سے کمی ہوگی، مگر ابھی تک تو لگ نہیں رہا کہ کمی ہوگی، مگر ابھی تو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، ہو سکتا کہ ایک دو سال بعد جب یہ اپنا اینالائز کریں، کیونکہ ابھی تو انہیں اب تو سارا اینالائز پارکنگ کا اور یہ سارا بنایا تھا کہ لیٹ پہنے چلے گی تو تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں کم لوگ گاڑیاں لے کے جائیں گے، زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ چیزیں ہوں گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہیں ان چیزوں میں، کیونکہ جہاں پہ گاڑیاں کھلارنی ہوتی ہیں، جہاں پہ پارکنگ ایشوز بانے ہیں، وہاں پہ ٹیکنیکلی پارکنگ کے ایشو اس لیے بانے ہیں کیونکہ لوگ لیٹ پہنے استعمال کرنے لگ پڑے ہیں، مگر ایون پھر لیٹ پہنے استعمال کرنے لگ پڑے ہیں مگر پھر وہاں پہ تو گاڑی کے کوئی سولوشن لے کے آئے نا، ہمارے اب سب ایک دو چیزیں ہیں گروستو میں، میں نے ایک دو چیزیں دیکھی ہیں جہاں پہ یہ لیت پہنے کے چلنے کا سسٹم بنا، اور یہ آبویسلی ایک چیز ہے جس پہ ہم ڈیفینیٹلی سیاسی پارٹی اور جو سیاسی کیا کہتے ہیں لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے اور کیا کہتے ہیں غور کریں گے اور ان چیزوں پہ کیا کہتے ہیں کام بھی کریں گے اور سلوشن لے کے آئیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ گاڑیاں کم کر دو، کیونکہ گاڑیاں کم کرنے سے پھر دوسرے سلوشن لے کے آنے پڑتے ہیں، تاکہ اس میں اور ایک راجہ سب اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی لے کے گاڑی کو آپ تبدیل کرنا چاہیں گے نا تو پھر آپ نے یہی بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ آف لیز ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی آپ کو تھوڑا سستا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ٹیکنیکلی دیکھیں نا تو گاڑی آپ کو سستی پڑتی ہے آف لیز ٹرانسپورٹ سے، تو آپ نے گاڑیاں کم کرنی ہے تو پھر آپ نے آف لیز ٹرانسپورٹ کیوں بند کر سوری مہنگی کر رہے ہو، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ تھوڑی بہت کراسنگ بندہ کہہ سکتا ہو گیا ہوا ہے، ان کمپلیٹلی چیزوں کو آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بڑے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے، میں جب جاتا ہوں مجھے بڑے لوگوں نے سوال کیا، کہتے ہیں آپ بار بار سسٹم کیوں بدلتے ہیں، کہ جس سے جو آف لیز سسٹم ہوتے ہیں اس میں آپ بار بار چیزیں چینج کر دیتے ہیں جو بزرگوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بات سمپلی بات بتاؤں، یہ جو بزرگ ہیں ان کے لیے ان نے ٹرین پہ جانا اور بس پہ جانا ہونا، یہ جو نیا سسٹم لا رہے تھے نا ان کے لیے اتنا مشکل تھا نا کہ اس کے لیے ان نے پھر سوچ کے تھوڑا آئے سے کاٹ یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی آگے کی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی تھا چل رہا کہ بزرگوں کو بور سمجھ نہیں آنی، تو کبھی کبھی یہ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کیا کہتے ہیں فوتیل کتنے ہیں یا اولمپا کتنے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ خالی فوتیل دیکھتے ہیں اور اولمپا نہیں دیکھتے، تو پھر تھوڑا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔
1: بھر آپ کی بات بالکل درست ہے، ہر کام بچت بچت بچت بچت، اس سے جو ہے معاملات خراب بھی ہوتے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زیادہ تر اب غیر ملکی جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، جس طرح ایک جیسے لائن لگ جاتی ہے نا تو ڈینٹسٹ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، کہ شاید اس میں کوئی اس طرح کا سسٹم کچھ زیادہ ہے، سہولیات زیادہ ہیں، پیسے زیادہ ہیں، یا کمیون سے جو ہے وہ جو پینشنسٹ ہیں یا جن کو ریبیٹس وغیرہ ملتی ہیں ان کو تو ڈاکٹر کو تو پوری تنخواہ ملتی ہے, پیشنٹ کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ادران جب تک کمیونوں میں لوگ جائیں گے نہیں, سٹی کونسلر بنیں گے نہیں, تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پارٹیوں کے ممبر بنیں, الیکشن لڑیں, کمیون میں جائیں, تو پھر حالات ٹھیک ہوں گے. جو آپ کیا کہیں گے؟
2: یہ بات تو کریکٹ ہے دادا صاحب. جتنے لوگ ہمارے کا کہتے ہیں نا کامیاب ہوں گے اور ہم لوگ بھی اندر آئیں گے, خالی ہم نہیں, یہ میں تو کہتا ہوں یہ ڈینش ہو رجرا مرضی ہو, جب تک یہ لوگ اندر بڑھ کے کام نہیں نہ کریں گے اتنی دیر تک ایک قسم کی تبدیلی نہیں آتی. مجھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بڑے لوگوں نے, یہ میں نے جیسے ابھی آپ کی جس چیز کی ایگزامپل دی ہے, مجھے پرسوں چور پتا چلا تو میں نے مجھے فون کر کے کہتا, میں نے کہا دیکھ ہر چیز کا جب آپ ممبر ہوں گے آپ کو ایکسپیرینس کا پتہ چلے گا, آپ کو چیزوں کا پتہ چلے گا, آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر آپ لوگ سیکھیں گے. کیونکہ میں نے کہا جب آپ لوگ سیکھیں گے, جب آپ اپنی آواز اٹھائیں گے تو کیا کہتے ہیں فائدہ ہوگا اور چیزوں کا کیا کہتے ہیں ایک نتیجہ نکلے گا. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پہلی دفعہ خوش ہوا ہوں کہ میں جب 2022 میں یہ میرے بیٹے کے اسکول میں میں نے الیکشن لڑا تھا نا, میں واحد غیر ملکی تھا جو لڑا تھا. انفارچونیٹلی میں دوسرے اسکول میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پراپرلی 100% ادھر ایک اپنے بیٹے کے اسکول میں نہ دیکھ سکا, کیونکہ بیٹی کے اسکول میں گھس گیا تھا. تو میں نے پھر ٹائمنگ کی وجہ سے ان کو کہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ بھی سپلینٹ کی طرح رہتا ہوں. آج میرے ساتھ دو غیر ملکی اور کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ ایک غیر ملکی نے مجھے کہا کہتے ہم نے جب دیکھا کہ تم ہو تو پھر ہمیں بھی تھوڑا کیا کہتے ہیں ملا حوصلہ کہ ہم بھی آئیں اس طرف. تو میں نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ آگے لائن میں جائیں, اور میں نے اسے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے تم آگے ہو, میں بڑا خوش ہوں کہ تم آؤ گے, تم کام کرو گے, کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا کہ میں کیا کہتے ہیں جو میرا مشن تھا 2022 میں 2018 میں تھا کہ اور لوگ بھی آئیں. میں نے کہا میرا کام ہی وہ ہے, میرا کام ہے کہ لوگ اور آئیں اور ذمہ داری اٹھائیں. میں اکیلے جو ہے جو کر سکتا ہوں وہ میں اکیلے نہیں کر سکتا, جب آپ سارے میرے ساتھ آؤ گے کام کرو گے کیا کہتے ہیں مدد کرو گے, ایسے ہماری چیزیں کیا کہتے ہیں اٹھائی جائیں گی. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے میرے بیٹے نے آ کے مجھے کہا کہ ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں, مجھے اس کی میں نے اس کی اسکول کی ٹیچر کا کیا, اس کے بعد مجھے فون آیا کہ تم اور کلاسیں جانا ہے. میں نے پھر ان کو کہا یہ کلاس ہے, وہ کہتے ہیں جتنی مرضی کلاس ہے بھیجو تو بس لکھتے جاؤ ہم لیتے جائیں گے یہ ترکی مسجد والے. میں کہ وہ مجھے میں ملا دونوں کو جا کے کہتے ہیں بھائی تم کام کر رہے ہو, ہم جتنا ان کو دکھائیں گے بچوں کو دکھائیں گے تمہارے کو اتنے ہی ہم انٹرسٹ ہوں گے, یہ بھی انٹرسٹ ہوں گے, ہمارا کلچر باہر آئے گا. تو یہ جس طرح ڈبیٹ مسلمانوں کے بارے میں آتی ہے ہم ایسے ہی چینج کریں گے اس کو کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہمارا سب کچھ کھلا ہوا ہے, ہمارا سب کچھ اوپن ہے. آپ لوگ یہ جو شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے یہ کر دیا, جتنی دیر تک ہم,
1: لیکن عدنان ایک سب سے بڑی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے غیر ملکی لوگ جو ہے نا وہ اب رہتے رہتے 50 سال ہو گئے, آگے ان کی نسلیں تیسری نسل جا رہی ہے, تو جب آپ کسی نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر بہت سارا نالج چاہیے.
2: بھائی ہماری جنریشن کے پاس بہت نالج ہے,

0: और एक दिन मेरा बेटा बैठा हुआ था, मेरे साथ बैठा हुआ था, ये मेरी जनरेशन है, वो बैठा हुआ था, तो मैं बात कर रहा था तो उसको समझ आ गई। वो देखने लग पड़ा तो उसने जाकर मेरी वाइफ को कहा कि मेरी वाइफ कहती है तुम परेशान ना हो, कहता वो क्यों, कहते बाबा को कोई असर नहीं होना, तो देखना वो नीचे आएंगे वो भूल गए होंगे। मैं बैठ के खाना खा रहा, सब कुछ कर रहा, वो कहता कहता दूसरे दिन मुझे उसके स्कूल का टीचर का आया, कहती है तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह जाना चाहता है। तो मैंने कहा यही तो फर्क है, क्योंकि वो इसलिए जाना चाहता है कि वो अपने बाप को देख रहे कि बाप पे तो कोई असर नहीं हो रहा, वो तो बैठा हुआ वो चुप है। मैंने मुझे उन पूछा, कहते तुम्हें तो खौफ नहीं लगता, मैंने कहा देख मुझे वो कुछ कहेगा रहा कुछ कहेगा तो मैंने एक ही काम करना है, मैंने 154 नंबर फोन करना है। मैंने उन्हें कहना ये बंदे ने ये किए, बाकी वो जाने और 114 नंबर जाने कि वो क्या है। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने एक 114 फोन किया, उन्हें उसी वक्त एक्शन ले रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैंने कहा उस बेवकूफ का जा रहा है कि जिसको ये नहीं पता कि मुझे किएगा तो ये कानून उस पर लग जाने हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों परेशान हूँ, मैंने कहा यही तो फ्रीडम है इस मुल्क का कि हमें पता नहीं है कि हमारा फ्रीडम कहाँ तक है। मैंने कहा हमारा फ्रीडम बहुत तक है और यही हमें लेके चलना चाहिए। हमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर हम जब हिम्मत रखेंगे अपने बच्चों की, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन के बच्चे हैं, जाने वाले हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई होता ही नहीं है। मैंने कहा मैंने असर इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं ले लूंगा तो जो अगली जनरेशन है वो पे डर जाएगी, हम एग्जाम्पल बनेंगे तो आगे लोगों में हौसला आएगा ना।
1: बिल्कुल अदनान, आपने बजा फरमाया। अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: मेहरबानी आपकी, तरफ से मुझे अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि अपना नुक्ता नज़र, अपना तजिया पेश कर रहे थे, ख़बरों को एनालाइज कर रहे थे, सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे। सामान नाज़रीन, हमारा किसी के साथ मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपके लिए दर आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है।
2: आवाज़ दिल की, म्यूज़िक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज़, आपकी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामान, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था कि हम लोकल बात करेंगे, क्योंकि हम लोकल प्रोग्राम्स करते हैं, इंटरनेशनल बात भी करते हैं, चूँकि उसमें हमारे मुल्क के मफादात होते हैं, चलना पड़ता है, लेना पड़ता है, इन चीज़ों को भी साथ साथ लेना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्हें आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ उस्ताद हैं, वो वाकई उस्ताद हैं, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और घर में पता चलता रहता है कि बच्चे क्या करते हैं, तो ज़ाहिर है टीचरों की बातें तो चलती रहती हैं। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। सलाम अलैकुम आपको और सब सुनने वालों को भी। उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज चलें, धूप इतनी नहीं निकली,
1: आज धूप इतनी ज्यादा नहीं है, बस धूप ठंडी है, टेम्परेचर तो ठीक है लेकिन धूप नहीं है, मौसम ठीक है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है। लेकिन आप लोग काफी मसरूफ रहे, बच्चों के इम्तहान, ज़ाहिर है उस्तादों को, टीचरों को तैयारी करानी पड़ती है, तो ये आपका महीना कैसे गुजरा?
2: ये महीना जी, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला महीना बिल्कुल पॉलिटिक्स, अप्रैल का महीना, मतलब मार्च का महीना जितना पॉलिटिक्स के साथ गुजरा है, अप्रैल का उतना ही उसके बगैर गुजरा है। क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल माहौल भी जरा ठंडा ठंडा चल रहा है जैसा कि आपको पता है, मगर मेरा जो जिस तरह आपने बताया, ये वाला महीना बिल्कुल एग्जाम्स की तैयारी कराने में बच्चों को लगा हुआ था। कल से माशाल्लाह नौवीं क्लास, जितने नौवीं क्लास है सबके, नौवीं दसवीं क्लास वाले, उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो, और मुल्क भर में होंगे तो वो, मेरी भी दो क्लासेस हैं, उनको भी हैं, बाकी भी मैं साथ बच्चे पढ़ा रहा होता हूँ, साथ साथ ट्यूशन का थोड़ा सिस्टम आपको पता है साथ चलता है। तो मैं तो बस पूरा अप्रैल का महीना पढ़ाने में मसरूफ रहा हूँ, तैयारी कराने में मसरूफ रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता है कि नौवीं क्लास के एग्जाम्स मतलब मेरे लिए तो बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा होता है, मतलब पूरी स्कूलिंग सिस्टम में या आठवीं नौवीं क्लासों में, जहाँ हमारे बच्चे इधर एग्जाम्स देते हैं, मतलब यहाँ से उनके एग्जाम्स का मैं कहता हूँ एक सफर शुरू होता है, कि ये उनके पहले पहले एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद फिर आगे एग्जाम्स चलते ही जाते हैं जब तक वो कोई एजुकेशन खत्म ना कर लें। तो बहुत बड़ा, बहुत शानदार पीरियड होता है ये, बड़ी तैयारी कराई जाती है बच्चों को। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब बच्चे अच्छा करेंगे, आगे भी कामयाब करे अल्लाह सबको।
1: चलें, ये तो लगा रहता है, चूंकि आप खुद हैं, आपको पढ़ाने का शौक भी है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक सियासतदान भी हैं और आपकी हुकूमत भी बनने जा रही है। आपकी पार्टी इन दिनों में या इस पूरे दो डेढ़ दो महीने में जब से इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत अभी बनी नहीं, लेकिन आपकी जो लीडर हैं वो बिल्कुल खबरों की वो सुर्खियों में रहे, कभी वो गुम भी हो जाते हैं, जिस तरह गैर हाजिर भी रहे, पता चलता था किसी ने उनको अगवा कर लिया, सियासी अगवा कर लिया। जरा कहानी तो सुनाए हमारे सामने नाजरीन को।
2: हाँ जी, कहानी यही है, हमारी भी मीटिंग हुई थी, मतलब मेन बोर्ड की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते होनी थी एक, वो फिर इस पिछले एक हफ्ता डिले हो गई, क्योंकि वो ये कि प्रोसेस जो मेरे फॉलिक्स ने और मुरगार ने, सुशेद मुखार ने, मुरगार ने का जो उनसे चाह रहा है, वो मतलब मेरे ख्याल से हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह हम सारे बात करते हैं ना कि मेड़े और लोके के बगैर कोई गवर्नमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही, तो इन दोनों को पता है कि बनानी इन्होंने ही है, अब जोड़ना कैसे है ये लगा हुआ काम करना ना। तो जिस जोर सा ये थोड़ा सा मुरगार ने, थोड़ा ठंडे थे उस वक्त, ये भी नहीं था ठंडे नहीं थे, पीछे कोशिश कर रहे थे बेंस्टॉकन सेवाची को करने की कि मान जाएं, आ जाएं फाइनलिंग स्पोर में, और जिस तरह वो मेरे फॉलिक्स ने, वो देख रही है कि इससे फारी खेल है, मतलब वो कहाँ तक मतलब एग्री करते हैं ना जाने के लिए। तो ये लगा रहा है इनका आपस में, तो ये पिछले हफ्ते जो आप बोल सकते हैं कि अब फाइनलिंग सही, सुशैल मुखद मुरगार ने या मेरे फॉलिक्स ने और लास लोकन ने पिछले एक दो हफ्ते से सही फाइनलिंग करना शुरू किया आपस में भी, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा बहुत पता चल गया है कि बेंस्टा कंसर्वेटिव, कंजर्वेटिव ने अभी भी उस तरह बयान नहीं दिया, मगर बेंस्टा वाले वैसे बिल्कुल ही जिस तरह नहीं कहते, नहीं मान रहे, तो थोड़ा सा ये पता चल गया है कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो इधर से भी आप देख रहे हैं कि वो रेड पार्टी जो सियाँ थोड़ी थोड़ी करके सारी थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर रही हैं, कौन कौन से वो अपने इश्यूज थे पहले वाले जो थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो ये है कि अब फाइनलिंग शुरू हो सकती है, जो सबसे मुश्किल लग रहा है वो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का ज्यादा, मतलब आप बाकी सब चीजें छोड़ दें, जो इकोनॉमिक की पॉलिटिक्स है ना उसमें जरा एग्री करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, वो चल रहा है अभी इस वक्त।
1: तो अखराजात कम करें, बचत करें, सहूलियात दें, तो दूसरा जो पांच सात घंटे मीटिंग की है وہ جو ہے میتے نے اور لاس نے, تو سب میٹنگ میں اکیلے کیا کرتے رہے ہیں؟
2: اکیلے بس یہ وہی بتا رہے تھے کہ اکانومی کا جو انسا ہے نا اس پارٹ پہ ذرا اصل میں نا اگری نہیں ہو پا رہے ابھی, کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں جو تھوڑی سی بلو پارٹیز ہوتی ہیں انہوں نے اس لیول کو جو مطلب بزنسز ہوتے ہیں ان کا بھی سوچنا ہوتا ہے, ان کو تھوڑی چھوٹ دینی ہوتی ہے, اور وہ اس سے فینس لسٹ جیسی پارٹیز ان کو تو مطلب نا بزنسز کو چھوٹ دینا کیا تو سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا تو دل کرتا نا کہ ہر چیز بس بڑھاتے جائیں اور ہر چیز میں پیسے ڈالتے جائیں, مگر آنے کہاں سے ہیں یہ نہیں سوچتا نا کسی نے.
1: لیکن دیکھا جائے تو ایشان, دیکھا جائے تو یہاں سارے کام جو لگے آتے ہیں سرمایہ داروں والے, یہ آپ دیکھ لیں کہ شہر میں ہر چیز, گاڑیوں کو دیکھ لیں, دوسری چیزوں کو دیکھ لیں, تو یہ تو لگتا ہے کہ سارا نظام ہی سرمایہ دارانہ ہے.
2: سرمایہ گانا ذرا راجا صاحب سمجھائیں ذرا. مطلب اکنومی سٹیک فالک.
1: آپ دیکھیں نا, ایک تو عمر کام کرنے والوں کی عمر کی یاد کی طرف بھی جو آپ باتیں نکلی شروع ہوئی ہیں کہ کام کرتے ہیں پینشن والوں کی عمر کو کم کیے یا پہلے بڑھاتے رہے ہیں, اسی طرح گاڑیوں کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی عام آدمی تو نہیں خریدتے, یہ تو کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو خریدتے ہیں. گاڑی کی سپیڈ ہے 300 کلومیٹر فی گئے تک جا سکتا ہے, میٹر ان کا 200 تک جا سکتا ہے, تو آپ کی شہر کی سپیڈ ہے 20-25 سپیڈ ہے ٹوٹل میکسیمم.
2: مزدوروں کا نظام آپ بالکل صحیح سمجھے, آج کل ویسے دو مزدوروں والی پارٹیاں بھی دیکھ لینا.
1: میں نے اس لیے کہا نا کہ میتے تو مزدوروں کو جو ہے نا, یہ لوگوں مزدوروں کا خیال ہے, یہ ہماری امداد ہے.
2: ہاں جی بالکل, اور مطلب ہے اور وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے 1 مئی ابھی ہو کے گیا, آپ انٹرنیشنل کھامتے ہو کے گیا, وہی بات کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ جو چھل سلوتنگ ہے یہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے 1 مئی کو بھی آپ آئرنس کھامتے.
1: لیکن بڑے لوگ تھے اس دفعہ, کافی عرصے کے بعد اتنے لوگ دیکھے ہیں.
2: ہاں جی وہ تو اصل موسم اچھا ہوتا نکل آتے ہیں, مگر یہ کہ ان کو سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ جتنے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل, ان میں سے کوئی خود ورکر تو کبھی رہا نہیں جو آج کل بیٹھے ہیں. اس ایف میں بھی دیکھ لیں آپ یا سوشل مقصد میں بھی دیکھ لینا, یہ سارے بس پولیٹکس پڑھ کے آگے پولیٹیشین بن گئے ہیں. تو اب وہ جو ورکر بندہ ہے وہ ان کے ساتھ مطلب ریلیٹ بھی نہیں کر پاتا جب یہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہی تو ووٹرز کو یہی ہو گیا کہ اب آپ آئڑا اس طرح, یہ آپ آئڑا پچھیا رہی نہیں. تو
1: اگر ہم نے جب لوگوں سے پوچھا آگے پیچھے بات کی تو دو ہی نام آ رہے تھے, میتے اور لاس لوکے جو ہے نا, اور تیسرا بندہ ہی پالیٹکس میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا.
2: نہیں اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. اصل میں وہی بڑے بات, پچھلے دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ میٹے نہیں دوبارہ بننا, میں نے کہا اصل میں آپ 10-20 سال پیچھے جائیں دیکھیں کتنے کتنی بڑی بڑی پروفائل ہوتی تھی مطلب پولیٹیشنز کی, مطلب اتنا اتنا ایکسپیرینس پولیٹیشن ہوتا تھا, اب اصل میں آتے ہیں اور کام کوئی کیا نہیں ہوتا, اور بس ایکسپیرینس کافی لوگوں کا اب جو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں باہر صحیح دنیا کا. پہلے اصل میں صحیح دنیا سے لوگ آئے ہوتے تھے, پتا بھی چلتا تھا کہ جب بولتا ہے کوئی پولیٹیشین تو اچھا بولتا ہے. تو ابھی بھی پارٹی لیڈر بھی آپ دیکھ لیں کوئی کسی میں اس طرح دم ہی نہیں, اور جب منہ کھولنا ہے غلط بات کرنے کے لیے منہ کھولنا ہے تب بھی میڈیا نے بھی سننا ہے. اب میں اس کی دیکھ رہا تھا, اب آپ ویسے ہی فرض کر لینا, یہ پہلے ویمون جب اپنی پالی کی فارمن تھی ہمارے مطلب غیر ملکیوں خلاف کتنا برا برا بولتی رہی ہے, اب میڈیا میں رہی ہے, اب لیپال علی ہنگ سے میں گئی ہے, اس کو لرننگ آف بنایا, اب یہ بھی جا کہتی ہے نہیں اس وقت میں جو کہتی تھی کافی چیزیں تھیں غلط ہیں, اس نے وہ ایک دفعہ پھیاگا کا ورڈ یوز کیا تھا تب بڑا کہتی تھی جی میرا جی رائٹ ہے میں کر سکتی ہوں, کہتی نہیں اب میں سنتی ہوں تو میں نے غلط کیا ہے یہ وہ. تو میڈیا میں رہنے کے لیے ان کو بس یہی ایک چیز ملی ہوئی ہے کہ اولینگ کے خلاف بولتے ہیں تو انہیں میڈیا ٹائم بھی مل جاتا ہے, ٹائم مل جاتا ہے, اس کے علاوہ ان کو بات کوئی کرنے ہی نہیں آتی, اور ان کو بھی پتا ہے کہ غلط ہی بات کرنی ہے اور ہمیں میڈیا ٹائم چاہیے, بٹ صحیح پالیٹکس کی بات کرتا ہی کوئی نہیں آج کل سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں.
1: تو کیا ذیشان کوئی امیگریشن کی باتیں کر رہے ہیں, کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں امیگریشن کی؟
2: امیگریشن تو جی وہ تو میرے خیال سے کوئی بھی اس طرح سے کہتے ہیں نا فائلنگز پوپ ہے, جو یہ پارٹیاں بڑی بولنے والی تھی یہ بھی امیگریشن تک تو پہنچے نہیں, کیونکہ اکانومی کلیم ہے ان لوگوں کا ایک نہیں ہوتا صحیح طرح. امیگریشن پہ اتنا ہے کہ امید کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ذرا ہلکا کریں, یہ جو سٹیٹس پوسکیپ کے لحاظ سے اسپیشلی ریڈ پارٹیز یہ بول رہی تھی ہم بھی بول رہے ہیں, इसके बारे में देखना चाहिए, मतलब इसके वो तो हम करेंगे इधर से, मेरी बाकी वो भाई जो
1: लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी पे जहाँ जहाँ सख्ती है तो सारी जमातें जो है मुत्तफिक है अंदर से,
2: बिल्कुल अंदर से मुत्तफिक है, इसलिए जाके अब थोड़ा सा ये बनता है ना तो हमें पीछे से अब धक्का मारना पड़ेगा के, क्योंकि सबने ये थोड़ी थोड़ी बातें की हैं कि ईज करना चाहते हैं, बातों का फिर बातें की हैं फिर पूरी भी तो होनी चाहिए।
1: तो आप देख रहे हैं रेडिकल भी काफी वोट्स लेकर गए हैं उनके कैंडिडेट से, क्या वो अपने लीडरान को पुश करते हैं? आप तो चले एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं,
2: वो भी पुश करते होंगे, बिल्कुल पुश करते होंगे, मतलब मेरी भी बात होती है, अभी हमारे जितने गरीखेल में भी भाई बैठे हुए हैं और बैठी हुई है, मतलब पुश तो सारे करते हैं। यह है कि फाइनलिंग मेरे ख्याल से इस फाइनलिंग तक अभी नहीं पहुंचेंगी, मगर आगे जाके इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन चीजों को हम उठाएंगे, अगर तो ये रेड और रेड के साथ और मुर्गारने की बन जाए तो इन चीजों को उठाएंगे बिल्कुल।
1: तो ये यूक्रेन के में जो हमारे अखराजात होते हैं जिसे कहते हैं जी हमने सोलिडरिटी के साथ ये सारा करना है, तो ये अखराजात कम होंगे या बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में?
2: ये भी इसकी ऐसे तो अब अगर आप देखें डेनिश जो सोसाइटी है वो भी मतलब इसके काफी खिलाफ होती जा रही है ना कि मिलियार्ड हमने किधर किधर दे दिए, जिस तरह आप कह रहे थे अखराजात कम करने और करने, मतलब हमारी इकोनॉमी डेनमार्क की वैसे तो काफी अच्छी है, वो डिपेंड करता है पैसे यूज किधर करने हैं हमने, तो उधर बहुत ज्यादा लगाया यूक्रेन में, इसमें कोई शक नहीं है, फिर वो वाली बातें भी निकली कि उधर जो पैसे भेजे हैं उधर भी करप्शन थोड़ी नहीं है उस मुल्क में, मतलब वो भी ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठना शुरू हो गए थे एक टाइम पे, तो बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए कि चले मदद करनी चाहिए जहां मदद करनी है, मगर पहले अपनी मदद आप तो करें ना सही, इधर हमारे जो उनसे सिस्टम वगैरह मुश्किल होता जा रहा है, आप मतलब मैं स्कूलों में नहीं कहता, स्कूल तो फिर भी बेहतर है, मतलब फेडकोआ का इस वक्त या सोसो का अमोद हो गया, स्वीप्लाइस का अमोद हो गया, मतलब बहुत इस वक्त जरूरत है इन चीजों में इन्वेस्ट करने की हमें आने वाले वक्त के लिए, वो जो इनको नजर नहीं आ रहा, कोशिश करते हैं बातें करते हैं मगर उन ये वेलफेयर सूत्र कभी कुछ सही तरह कर नहीं रहे, जिसमें मैं बोलूंगा कि हम टीचर्स तो माशाल्लाह फिर भी काफी अच्छे हैं, मगर फिड़को वो कम से कम होते जा रहे हैं हमारे इधर सोसाइटी में जो है, और उसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को, तो वो भी उम्मीद है कि उधर भी अब थोड़ा सा
1: जो शोर डालती है, ऐसे भी शोर डालती है ना, मतलब नीचे जो अपने एक उनके भी सारे तबका है जो वोट उनको देता है अक्सरियत में देता है, इसी तरह सरमायेदारों को देता है, इसी तरह दूसरे लोगों को देता है, तो ये वोट देने वाले भी तंग पड़ रहे हैं। एज ए उस्ताद आप क्या कहेंगे कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि बच्चे नीचे से जाएं पढ़े लिखे, जरा यहाँ तालीम तो पक्की है, आपने 8-9 क्लासें कर 10वीं तक पढ़ना है या किसी उम्र की हद तक आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये बच्चों को इस तरफ गाइड दें। अब लोग कहते हैं नहीं यार ये कमून ज्यादा आसान है, ये तो थोड़ा सा पढ़ के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी सी कोशिश करके वोट लेकर आप जा सकते हैं, तो हमारे बच्चों को करना क्या चाहिए? हमारा मुस्तकबिल तो ये है
2: जी जी, और उनको असल में जी जो सबसे बड़ा मसला हो गया ना हाथी का दांत दिखाने के और खाने के, और हम कहते तो हैं स्कूलों में आता है जी एनसी मॉपनिंग कंपेनियां चलेंगे जी कि मॉपनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छे से बोलना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, मगर मैं वही कह रहा हूँ ना ये वही बच्चे हैं जब इनके हाथ में मोबाइल आता है ये हमारे पॉलिटिशियन कैसे बात कर रहे होते हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको फनेल वैमन की एग्जाम्पल दी है कि उसने जब वो नेपोली की फॉर्म में थी उसने ऐसी ऐसी बातें की जो अब खुद वही कहती है यार मैंने गलत किया, मगर बस फेम लेने के लिए ऐसी बातें कर देती हैं, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं मीडिया टाइम पाने के लिए, बच्चे बैठ के देख रहे हैं और बच्चे इफेक्ट होते हैं इन चीजों से, और ये मैंने पहले भी आपके भी प्रोग्राम बोला सबको मैं यही बोलता हूँ कि हमारे बच्चे बैठ के ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो इनको देखते रहते हैं सुनते रहते हैं, क्योंकि अब ये सारी पॉलिटिक्स टिकटॉक पे भी आ गई है, हमारे लोगों को भी चाहिए हमारी तंजीमों को भी चाहिए कि हम लोग भी किसी तरह अपने मैसेजेस अपने बच्चों तक पहुंचाएं कि फाइनेंस द साइन नहीं जिस तरह कहते हैं बहुत जरूरी होता जा रहा है, वरना तो बच्चे आप देखें आजकल पॉलिटिक्स वो टीवी ऑन करेंगे बोलेंगे यार ये देखो बड़े कैसे करते हैं और आप लोग हमें कहते हो कि हम लोग ऐसे ना करें, ठीक है ना जी, तो जिम्मेदारी बड़ों पे बहुत ज्यादा है, वो जिस तरह मतलब वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग ही होता है, वो देख देख के आपको सीखते हैं, आपके बताने से आप जो बताएंगे वो नहीं सीखेंगे, आप जो करेंगे वो सीखेंगे।
1: निशान प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखें कानून जहाँ बनते हैं जहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं कम्यून्स हैं और पार्लियामेंट है, तो تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، کمیونز کی طرف جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، شور پڑتا ہے، الیکشن نزدیک آتے ہیں، دو تین مہینے جب رہتے ہیں الیکشن ہونے میں شور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری یاد میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹس نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا، جس میں آپ بھی اس میں شامل ہیں، کہ ہم ان اگلا الیکشن جو ہے ان شاء اللہ لڑیں گے۔ اب لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ آپ کو چار سال واج کرتے رہیں، الیکشن تو کل پرسوں مہینے دو بعد بھی ہو سکتے ہیں، دو سال بعد بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو کمیون کے تو فکس ہوتے ہیں۔ تو اب باقی جو پڑھے لکھے بچے ہیں، ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈینٹسٹ بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔
2: ہاں جی، وہ تو پھر ایسے ہی ہے، وہ تو ہمیں بھی یاد ہے، مجھے اپنا بھی یاد ہے، وہ تو بچے جب ہمیں بھی ہم جب بجاتے اسکول کتاب آتی تھی بلکہ نہیں اپلی، وہ ابھی بھی ہوتا ہے اور ابھی بھی میں بچوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا میں اسکول والد ابھی ہوں، تو وہ سب سے پہلے یہ سرچ کرتے ہیں بماد شینا، کچھ بھی کہتے ہیں بماد شینا، تو وہ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے، یہ چیز تو آگے بڑھتے بڑھتے آتی ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی ایسے کی تھی، میں نے بھی پہلے یہی سوچا تھا جی کہ مطلب ماسٹرز کریں گے بزنس لینگویج کلچر میں، باہر کے ملک نکل جائیں گے، تو پھر جب دیکھا جی کہ دنیا باہر کیسی ہے اور ادھر بھی مطلب اچھا سکون ہے، تو بینک میں بھی ایک سال کام کرنے کے بعد مجھے بھی تب پتا چلا نا کہ نہیں یار کام کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو یہ سیکھ آتے آتے آتی ہے، بس یہ میں بچوں کو بھی کہتا ہوں، شوق ہے اگر کوئی تو شوق کو اپنے کوشش کرو کام بنا لو، تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ مگر ظاہر ہے کچھ لوگوں کا شوق ہی ہے پیسے کمانا، تو اسی ذریعے بھی وہ بن جاتے ہیں کہ مطلب یار پیسے تو اچھے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، شوق ہم اپنا بنا لیں گے، تو ایسے بھی بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بس شوق رکھے ہی رکھے، مگر کافی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بندوں کو میں بھی جانتا ہوں پڑھ لکھ گئے ہیں، اچھے جاب وغیرہ، مگر مزہ نہیں آتا۔ مگر یہ سوچنا چاہیے کہ ساری زندگی وہ کام کرنا ہے، کام وہ کرو جس میں مزہ ہے۔ اس طرح ماشاء اللہ دیکھے نا، آپ بھی جرنلزم کتنے عرصے سے یہ صحافت کر رہے ہیں، اب کل میرے خیال سے کل 3 مئی آ گیا نا جرنلسٹ ڈے،
1: آج 3 مئی
2: آپ لوگوں کا بھی جس طرح آج، اچھا آج 3 مہینے ہیں، مبارک ہو جی پھر آپ کو، آج تو پھر جرنلسٹن اس طے ہو گیا۔ اس طرح ڈے آتے ہیں ہم سب کے جو کام کر رہے ہیں بڑے شوق سے، ہمیں تو ان دنوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے، 5 اکتوبر ہم ٹیچروں کا ہوتا ہے، تو کام اصل میں ایسے ہی کریں جس طرح آپ دیکھیں ماشاء اللہ اتنا شوق سے کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے کہ کام کا کام ہو جائے ساتھ خدمت خلق بھی ہو جائے، الحمد للہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔
1: تھینک یو زیان، میں آخری سوال کرتا ہوں، چونکہ آپ ذمہ دار جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موقع ملتا ہے آپ کو بات کرنے کا، بات بڑھانے کا، تو ہم گاڑیاں تو خریدتے ہیں بڑی بڑی چھوٹی گاڑی، غیر ملکی تو کوئی اب چھوٹی گاڑی خریدتا نہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آپ دیکھ لیں، ٹیکسی میں گاڑیاں دیکھ لیں، بڑی بڑی گاڑیاں پڑ گئی ہیں، مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں، الیکٹرک ساری تقریباً الیکٹرک ہیں، پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی، شہر میں آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، الیکٹرک گاڑیوں کی ابھی تو جگہ ہے لیکن عام پارکنگ کی جگہ ختم ہو رہی ہے، تو جن کے ویلے ہیں تو وہ اپنے ویلوں میں یا جن کے اپنے گھروں میں پارکنگ وہ پارکنگ کر لیتے ہیں، تو یا تو اب ایسا قانون بنے کہ جو بلڈنگیں بن چکی ہیں ان کا تو قصور نہیں ہے، لیکن جو نئی بلڈنگیں بنتی ہیں ان کے نیچے پارکنگ بنتی ہے لیکن وہ پارکنگ بھی پرائیویٹ ہو جاتی ہے۔
2: بالکل، اصل میں اور وہ بس کلائمیٹ کے نام پہ ایسے ہی کر دیتے ہیں نا۔ اب ہمارے آپ دیکھیں، اب شہر کی بات تو کوپن ہیگن تو اللہ محافظ ہے، میں اس ہفتے ایک دفعہ گیا تھا پھر کانوں کا ہاتھ لگا کے نکلا، مگر ہمارے بیلر اپ دیکھ لیں آپ، اتنی نئی مطلب کنسٹرکشن کافی ہوئی ہے اور پارکنگ کا ہمیں بھی ایشو بن گیا، مطلب ایون تو وہ شہر سے باہر ہے کیونکہ بناتے ہی آج کل ایسے ہیں، اور پھر آرگیومنٹ آگے سے یہ ہے نا وی پیکس تشون نیات کہ جی ہم نے اسٹیشن کے پاس بنایا، تو انہوں نے گنتی ایسے کی ہوتی ہے کہ ایک گھر کی پوری ایک گاڑی بھی نہیں لگائی ہوتی، 0.8% گاڑیاں ہوں گی، ایک ایک گاڑی بھی اگر لگائیں مطلب، اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ بے شک اسٹیشن کے پاس رہتے ہیں 1.5-2 گاڑی تو ہر گھر کے پاس ہے، مگر وہ جس طرح نا بس کلائمیٹ کے نام پہ وہ ہم نے ادھر ذرا نا پوری دنیا کا وہ اٹھایا ہوا ہے بوجھ، وہ کہتے ہیں ہماری اس میں کچھ پارٹیز ہیں، اچھی بات ہے اچھی فکر ہے، مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہو کر آئے کہ تو پھر وہ واقعی میں کہتے ہیں کہ جی ڈنمارک میں ہم نے پھپ سوکھ ایسے پی پی کے نا کلائمیٹ بچا لینا، نیت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر بہت مشکل کرتے جا رہے ہیں اپنوں کے لیے ہی ہمیشہ، تو ہمیں بھی وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایتھیلسٹ ایک چیز ہوتی ہے، آئیڈیلسٹ ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ریئلسٹ بھی ہونا چاہیے کہ کام ہو کون سے سکتے ہیں، اور وہی میری میں اب کافی ینگسٹر سے جا کے ابھی بھی ملتا ہوں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگلے الیکشن کی تیاری ابھی سے ہو رہی ہے، اور اس دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اور باقیوں سے بولا کہ مجھے فیل ہوا کہ ہمارے کافی ینگسٹر ہیں جنہوں نے ان ہیلتھ لسٹ وغیرہ کو جا کے ووٹ دیا اور اس سائڈ پہ، تو ان سے اب جا کے یہی گفتگو ہوتی ہے زیادہ تر کہ ٹھیک ہے اچھا ہے کہ وہ سوچ اچھی ہے کہ हम भी चाहते हैं खारिज छल्ले हो जाए, सब फ्री हो जाए, और ये मतलब वो ट्रांसपोर्ट खालिक चीज ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दो, मगर पैसा कहाँ से आएगा? तो इन चीजों को देखना समझना बड़ा जरूरी है, अपने यंगस्टर्स को समझाना बड़ा जरूरी है, अपने साथ लगाना बड़ा जरूरी है। तो वो मेरी बड़ी कोशिश है कि अभी सही बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। मैं तो अब इसीलिए शुक्र किया कि गर्मियों के जुम्मे आए हैं, अब वो भी पढ़ सकता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट मसाजिद में जाकर दोबारा पढ़ना शुरू किए हैं, लोग मिलते हैं, बात करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, और इसको मैं इंशाल्लाह कंटिन्यूस करूंगा। अभी एग्जाम्स बच्चों के खत्म होते हैं तो एक दफा खुद भी एक्टिव होऊंगा, सोशल मीडिया पे भी दोबारा देख रहे हैं कि किस तरह अपने यूथ को इन्फॉर्म कर सके, तो मेरी पूरी
1: आप
2: कोशिश
1: इस
2: रहेगी
1: अगली दवा को यूथ वोट जिसको भी देगी वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे।
2: इंशाल्लाह जी। बस उम्मीद देखिए जी, वही हमारा मुस्तकबिल है, वो जो चाहते हैं हमें उस तरह काम करना चाहिए, और पूरी कोशिश है जो उनकी फिक्र है, जो यंगस्टर्स की, हमारी भी वही फिक्र रही है पूरी जिंदगी, और अभी भी वही फिक्र है, तो इसलिए उनके शाना बिशाना होकर लड़ेंगे। मैं वही बच्चों को भी कहता हूँ कि मैं अब यंग नहीं हूँ, मेरी 40 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, मगर आपकी ये जो मुश्किलात प्रॉब्लम है आप जो बता रहे हैं, हम भी इन्हीं में बड़े हुए हैं, और हमें अब इन काफी चीजों की समझ भी है कि इनको डील कैसे करना है। माशाल्लाह से कॉन्टेक्ट भी है, और हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कामयाब होना चाहिए। जाहिर पैसे कमाएं, अपने लिए भी कमाएं, मगर हम जो अपने बंदों के लिए भी साथ कर सकते हैं उससे ज्यादा मजा और किसी चीज का नहीं है। मस्जिद में आप जाते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, उसका सवाब आपको है, मगर जो काम आप अपनों के लिए करते हैं उसका और बहुत अजर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्जिद का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं है, हमें सोसाइटी में रहना किस तरह है और हम कैसे डील कर सकते हैं जो इश्यूज आ रहे हैं, इनको सिखाना बड़ा जरूरी है हमारी तंजीमों के लिए। तो इंशाल्लाह जिस तरह आपको भी बताया, आपके सुनने वालों को भी बताया कि मेरे लाइक कोई खिदमत, कोई अगर आप चाहते हैं यंगस्टर्स को इकट्ठा कर लें, और ये मत सोचें कि मैं पॉलिटिशियन एज उस्ताद बुलाएं, तो इंशाल्लाह आके उनके साथ मैं कनेक्ट करूंगा और उनकी जो जो भी होंगी सुनेंगे, आपस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चलना है, क्योंकि आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पे वो जितना हेट देखते हैं वो इतना तो हम भी अपने टाइम पे नहीं देखते थे, तो हमारे बच्चों को हमारी बहुत जरूरत है।
1: तो क्या कोई कानून तो हम जमहूरियत का नाम लेकर बोलने लिखने की आज़ादी लेकर बहुत कुछ कर जाते हैं, तो जिस तरह कोई सियासी जमातें तो तब्दीली लाती हैं और जो सियासी जमातें नफरत फैलाती हैं, तो ये कैसा कानून है?
2: जी जी और उनके खिलाफ मतलब खड़ा होना पड़ेगा, और यही तो बार बार बताना पड़ेगा कि नफरत फैलाने वाले जो उनसे हैं इनसे ही बचना चाहिए, क्योंकि ये बस अपनी पावर के लिए फैला रहे हैं, और इनमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उठा उठा आगे देखें। अब ये फनी लवैम उनका दोबारा उठा लेंगे, मतलब कहते हैं बाद में कुछ और कहते हैं, इन्हें भी पता है नफरत फैलाना बड़ा गलत काम है, मगर बस उसी पे ही हाइप मिलता है। नफरत पे बात हो रही, मेरी बेटी आई गाल कहती है बाबा अभी इसके अलावा प्रोजेक्ट एन बयान स्क्री, मैं कहा पुत्र आप ना अपना एम रख के, अपने जो इमने ना रख के देखना कि हिटलर पावर में कैसे आया था। वो उसके साथ आजकल मेरी बड़ी मजे की डिस्कशन होती है, कहती है बाबा वो तो मतलब दीवाने थे लोग उसके, और उसकी स्पीचेस और वो जो बातें, मैं कहा उसके स्टेट्स मतलब उसके जो कोट्स है ना वो लेके आप देखना कि ऐसे हेट करते करते, और मतलब कि जी मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर करूंगा, मैंने कहा ये एक मतलब हेट स्पीच और जोन सी होती है, ये इस तरह के लीडरान बहुत आ गए हैं दुनिया में और इनसे हमें बचना चाहिए, और इनका मतलब बढ़ चढ़ के हमें जोन सा नहीं मुकाबला करना है। तो
1: क्योंकि
2: इसलिए
1: बच्चों को इस उम्र में हीरो अच्छे लगते हैं, विलन अच्छे
2: जी
1: लगते
2: जी
1: हैं।
2: बिल्कुल, वो उनकी समझ आसानी में आती है ना, आप देखे ना हमारी वो हम भी ये कि आप अपनी बॉलीवुड लॉलीवुड फिल्में देख के बड़े हुए हैं, वही बंदा कहता विलन पूरी फिल्म में यार अच्छी भली जिंदगी गुजार गया, हीरो मतलब पूरा एंड में बस वो सारी जिंदगी मुश्किलों में काट काट के, हीरो जो उनसा होता है ना एंड में जीतना होता है, 2 घंटे की फिल्म में विलन ने तो मौज ही की है तो दिखाना पड़ता है कि जाहिर है कि जिंदगी अच्छे अखलाक, जी हमारा दीन भी अखलाक सिखाता है, अच्छे अखलाक के साथ अपना दीन और दुनिया दोनों इसी से सबर नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो अच्छे ठीक है 2 घंटे आप अच्छे रह लेंगे, एंड अच्छा नहीं होगा ना फिर, तो अखलाक में इंशाल्लाह। तो पॉलिटिक्स
1: जीशान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया, और मुझे पता
2: शुक्रिया
1: आपने
2: आपका
1: जाना होता
2: राजा
1: है,
2: साहब
1: मीटिंग्स होती हैं, ये छुट्टी का दिन होता है, तो काम करने वाले के लिए तो एक एक मिनट जो है उसका कीमती होता है। तो
2: बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आजकल वही आपको बोला ना, अभी बस मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब ये आज संडे आधा निकल जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते कल जरा बस देखना है कि बच्चों की तैयारी कैसी है सुबह के लिए, जो मेरे अपने ट्यूशन वाले बच्चे हैं, तो आज इसमें निकल जाएगा। वही बोला पॉलिटिक्स, इंशाल्लाह ये एग्जाम्स हो गए तो इसके बाद मैं एक दफा फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा दोबारा, ऑनलाइन भी और सारा। तो आपको जी दोबारा जर्नलिस्ट डे मुबारक हो, राजा साहब आज का प्रोग्राम तो फिर आपके नाम।
1: थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
2: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी।
1: सामाई नाजरीन, ये थे जीशान जो के बात कर रहे थे। सामाई ना गपशप की शक्ल में हम बात करते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए, कहने वाला खुलकर बात आप कर लें। तो जब आप बहुत सारी पुचीदा किस्म की बातें सवाल करना शुरू करते हैं तो फिर जवाब सोच समझ के देना पड़ता है, तो इसलिए जब आप गपशप की शक्ल में बात करते हैं तो सारी बातें जो है वो आसानी से वो करते हैं, फिर समझाने में भी उनको जो है कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, सवाल करने में भी फिर दिक्कत महसूस नहीं होती। तो समय नाजरीन हमारे साथ साथ रहिए, अगर किसी ने कोई बात करनी है, अपना नुक्ता नजर पेश करना है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। सामने नाज़रीन, आपको पता है कि आप सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, वेबसाइट्स को देखते रहते हैं, आप पाक अम्बेसी की वेबसाइट को भी देखते रहते हैं। तो ये मर का हक का जो आपने लोगो देखा होगा, टाइटल देखा होगा, आज 10 तारीख के हवाले से तो बातें चल रही हैं प्रोग्राम के हवाले से, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने सफीर मोहतरम से पूछें वो अपनी कौम को, अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे। शुएब सरवर साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जी राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मोहतरम अम्बेसडर साहब, आज मार का हक जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, मनाया जा रहा है पाकिस्तान अम्बेसी में, दावते आम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
2: जी आज दोपहर को अम्बेसी में 2 बजे जी इवेंट है, और जो 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पे जो हमला किया था और जिस तरह हमने उसका जवाब दिया, आज हम उसका एक सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तान की मुसल्ला फौज को, पाकिस्तान के अवाम को और इदारों को और लीडरशिप को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि जिस तरह कौम ने यकजा होकर साल पहले दुश्मन के जो नापाक अजायम को नाकाम बनाया था, तो उसके सिलसिले में एक इवेंट है। और मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी डेनमार्क में रहने वाले हैं वो इसमें भरपूर शिरकत करेंगे, और उसके अलावा मुझे ये पता लगा है कि जो पाकिस्तानी एक कम्युनिटी की तरफ से कार रैली भी है एक, और वो भी इन द एंड वो कंक्लूड अम्बेसी में करेंगे, तो मैं उनको भी वहां वेलकम करूंगा।
1: बिल्कुल शुएब सरवर साहब, ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग जोश खरोश से इस पर आना चाहते हैं, तो ये किसी मखसूस के लिए दावत तो नहीं है ना, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम लोगों के लिए दावत है, जो तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं डेनमार्क में वो आए और शिरकत करें।
1: सफीर मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम से आपने हमारे सामाइन को मुखातिब किया।
2: थैंक यू जी, थैंक यू राजा साहब।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे सफीर पाकिस्तान शुएब सरवर साहब, जिन्होंने बिल्कुल ओपन पैगाम दिया, ये दावत आम है, रैली का भी उन्होंने जिक्र किया, रैली को वेलकम भी करेंगे और 2 बजे अम्बेसी में भी जो है वो आपको वेलकम करेंगे। तो ये सारा मिला जुला जो ये प्रोग्राम है, ये सब के लिए, ये सब का प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है, ये किसी मखसूस बंदे का प्रोग्राम नहीं, ये किसी मखसूस किसी तंजीम का प्रोग्राम नहीं, ये पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, ये अफवाज पाकिस्तान से हजार यकजहती का प्रोग्राम, ये मार का हक का प्रोग्राम है। सामान्य नाज़रीन, आपको जोगदार जोग जो है वो अम्बेसी में जाना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, हमारे साथ साथ रहिएगा।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, और आपको पता है कि 10 मई के हवाले से मार का हक का जो प्रोग्राम आज पाकिस्तान एम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वेलकम करेगी मेहमानों को, और ये दावत आम है। तो हमने कहा पूछें जो लीडरान लोग होते हैं उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथी चौधरी शौकत साहब जो कि मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क में, समाजी कारकुन भी हैं और सरपरस्त आला भी जो हैं आफ लीग के यहाँ डेनमार्क में, और पुराने मुस्लिम लीग के हैं और 26-28 साल सदर भी रहे। तो हमने कहा ये बेहतर इस बारे में बात कर सकते हैं मार्क हक के मुतल्लिक। तो चौधरी साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अस्सलामु अलैकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे सुनने वाले सामाइन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम।
1: चौधरी साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी, आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी तल्लक है और आपका समाजी कारकुन भी हैं आप और सरपरस्त आला भी हैं आप जो है मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, तो आप क्या मार्क हक के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
2: जी राज साहब, इंशाल्लाह जो है ना, हम ये जो है ना मार का हक है जो आज दिन जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कारनामा अरसे दराज के बाद जो है ना अदा जो है ना मार का हक जिसका नाम है वो किया और जो पूरे पाकिस्तान का सर जो है बुलंद कर दिया, अवाम का भी, फौज का भी, जितने भी सारे हम जो है ना पाकिस्तानी हैं इनके लिए एक बड़े एजाज का दिन है। आज हमें खुशी मनानी चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है ना डेनमार्क में एक रैली की शक्ल में पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे और ये दिन मना के, क्योंकि हम ये दिन जो है ना कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया, हमारी क्यादत ने जो है ना जो ना कारनामा अदा किया, ये सभी के नाम जाता है ये जो है ना। और दूसरा ये हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इस दिन को कामयाब करें और खुशी मनाएं इस तरीके से कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी एक कौम है और पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे को पाकिस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआगो होते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारी माएं बहनें घर बैठे पाकिस्तान की फौज के लिए दुआगो हैं और दुआएं मांगती हैं कि जो हमारे बच्चे, हमारे भाई जो महाज पे खड़े होके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं वो, लेकिन अब तो ये जो है ना, अब जो निकल गया ये पाकिस्तान वाला लफज, अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आदत करेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना अपनी जो है ना अपने मुल्क की जो है हफाजत की जो है ना जिम्मेदारी देने को तैयार है। काफी लोग, काफी मुल्क जो है ना एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है, हमारी फौज के लिए एजाज की बात है कि जो लोग हम पे इतमाद कर रहे हैं कि जो अगर कोई ताफत दे सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है हमें और पाकिस्तानी फौज दे सकती है। तो हम इंशाल्लाह आज रैली की शक्ल में ब्यासा सवाए पे गौन फैसल है फेम वाए उधर से कारों में ये इंशाल्लाह जोश जज्बे से हम आएंगे
1: रैली में आए, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वेलकम करें एम्बेसी में।
2: जी बिल्कुल, और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी लोगों को दावत आम दी है और पाकिस्तानी लोगों को, बाकी लोगों को भी बुलाया है कि आप आए एम्बेसी में आके हमारे साथ ये दिन मनाएं। तो इंशाल्लाह राजा साहब हम बिल्कुल भरपूर तरीके से ये दिन को मनाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी बहनें भी, हम सब भाई भी मिल के पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह हमेशा दुआ करते रहेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, हम यही एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि यहाँ डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं और सरपरस्त आला भी हैं, उनकी बात आपने सुनी। उन्होंने पाक फौज के हवाले से, मार का हक के हवाले से अपना मैसेज जो है वो दिया, लाइव मैसेज दिया। तो कोई भी मैसेज देना चाहे तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। समझ चौके आज स्पेशल प्रोग्राम है तो हर आदमी को अपनी हक है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना जरूरी नहीं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लाइव लेकर आता रहा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। 10/5/2026 का प्रोग्राम है। यहाँ डेनमार्क में दिन के 11:20 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 2:20 हो चुके हैं। सामिन नाज़रीन, आपको पता है तारीख से काम है, पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी बुनियाद शहजादा उस्मान साहब ने रखी, इसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में, पूरे यूरोप में, तो उन्होंने पिछले दिनों मुतवातर जो रैलियाँ निकाल रहे हैं और सबसे आखिर में जब वो कराची गए तो बहुत बड़ी रैली थी उनकी कराची में। आज भी हमें सुनने में मिल रहा है कि आज भी वो कराची में रैली निकालेंगे, तो हमने कहा क्यों ना शहजादा उस्मान साहब पूछा जाए। शहजादा उस्मान साहब, आपको अदारा आपकी आवाज पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: शहजादा साहब, जरा तफसील बताएं, आज 10 तारीख है और आज आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे डेनमार्क के लोगों को?
2: आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये 10 मई मरका हक जो है, ये 1965 की जंग के बाद सबसे बड़ा मरका है और हम सब समझ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तानी कौम या मुसलमान जो उम्मत मुसलमान है वो दो ईदें मनाती थी, अब वो तीन मनाया करेगी। इस 10 मई को भी एक तीसरी ईद का जो है ना जश्न पूरी दुनिया में जैसे मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा आगे क्यामत तक, क्योंकि इस दिन को पाकिस्तान ने एक जो एशिया का गुंडा बन चुका हुआ था मोदी, उसका गरूर तोड़ के जमीन के अंदर घुसेड़ा। इस दिन 10 मई के महीने में 2025 में जो उसने पहलगाम का एक ड्रामा निचाया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी करनी शुरू कर दी, पूरी दुनिया में प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया, और जिस पर मैं सलाम पेश करता हूं, पाक फौज ने सब्र का तहमल का मुजाहरा करते हुए पहले दुनिया को बताया कि ये इसका मकरू चेहरा है, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है, और उसके बाद फिर जब इंडिया बाज नहीं आया तो फिर DGISPR ने जिस तरह कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने उनके 5 राफेल तैयारों को गिराया और फतह मिसाइलों ने इंडिया की दरो दीवार जो है वो खिला के रख दिए। और आज हम इस दिन के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं उस अजीम कायद, उस उम्मत मुसलमान के लीडर को, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी क्यादत में ये सब कुछ हुआ है। और हम समझते हैं कि आज का दिन जितना भी जोश व जज्बे से मनाया जाए वो कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया कि इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम एक तहरीक का जो है वो वजूद अपना चुकी है पूरे यूरोप में, बरतानिया में, और अब पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्होंने अपने चैप्टर बनाने शुरू कर दिए हैं फोरम ने। कराची में हमने हालिया अभी बहुत बड़ी 26 अप्रैल को रैली निकाली, सैकड़ों गाड़ियां और एक कन्वेंशन किया गया जिसमें बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान ओवरसीज फोरम और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से हमने उधर बुनियाद रखी है, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह गुजर खान के अंदर, खारिया के अंदर, और ये सिलसिला जो है वो सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर जो है वो इस तंजीम को, गैर सियासी फोरम को, इस तहरीक को लेके जाएंगे, और इसका मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरबुलंदी और फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होना। क्योंकि अब हमें वक्त आ गया राजे साहब कि हम लोग जो है वो सियासी जमातों से बालातर होकर जो है वो पाकिस्तान का साथ दे, और ये इस्लाम पाकिस्तान का भी यही पैगाम है, यही उसकी जमात है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरबुलंदी और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए और मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए और मोदी का मकरू चेहरा दुनिया में बेनकाब करने के लिए इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद जो है वो दियारे गैर में भी जारी और सारी है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी नौजवानों को शऊर देने के लिए, नौजवानों को सबज खलाली परचम के नीचे इकट्ठा करने के लिए इंशाल्लाह ताला अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर,
1: मेरा आखिरी सवाल है शहजादा उस्मान साहब आपसे, कि आपने पहले यूरोप को बेस बनाया, स्पेन से बुनियाद रखी, फिर आगे चले स्कैंडिनेविया की तरफ आए, आगे बढ़ते रहे, अब आपने बेस अपना पाकिस्तान को बनाया और आज प्रोग्राम आपका करने होने जा रहा है कराची में, तो लोग पाक अफवाज के मुतल्लिक और आसिफ मुनीर साहब के मुतल्लिक क्या कहते हैं, फील्ड मार्शल जो है हमारे?
2: सर, इस वक्त 99% लोग जो है वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हाफिज सैयद आसिफ मुनीर के शाना बिशाना खड़े हैं, 1% वो लोग हैं जो इंडियन रा के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के पाकिस्तान का लबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से जो है मोदी की जुबान बोलते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो जो 1% लोग हैं उनको भी जमीन दोज हम कर देंगे, उनका प्रोपोगंडा मीडिया के ऊपर भी हम तोड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला यूरोप के अंदर भी तोड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी जो वो हमारी सफों के अंदर वो अपनी काली बेड़े खड़ी कर देते हैं उनको भी बेनकाब करेंगे और कौम के सामने लेके आएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की टीम को, स्पेन के अंदर बहुत बड़ी रैली और सेमिनार हो रहा है, इसी तरह यूनान में इस्तेकामे पाकिस्तान ओवरसीज फोरम का जो है वो प्रोग्राम हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर आज फिर जो है वो कराची चैप्टर जो है वो रैली निकालने जा रहा है। तो ये सिलसिला ये मई का महीना जारी और सारी रहेगा, बेल्जियम में भी प्रोग्राम होगा, फ्रांस में भी होगा और इटली में भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम करेंगे हम।
1: शहजादा उस्मान साहब आज डेनमार्क में भी रैली निकल रही है, तो रैली का इख्तिताम जो है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने होगा, अंदर होगा, सफीर मोहतरम उनको वेलकम करेंगे, आप क्या मैसेज देंगे?
2: सर बहुत बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये जो डेनमार्क में रैली निकल रही है जो भी निकाल रहे हैं तमाम लोगों को, देखे जी हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का परचम थाम के बाहर निकले, वो चाहे किसी जमात से ताल्लुक है चाहे किसी और फोरम से ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए काम करे और आपस में मोहब्बतें बांटे, आपस लोगों को इकट्ठा करके एक मतलब एक जान होकर जो है वो सबज हलाली परचम के नीचे सब इकट्ठे हो, और कोई भी पाकिस्तान का नाम लेता है हम उसे सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं, उसका किसी भी जमात से ताल्लुक है किसी भी फोरम से ताल्लुक है, लेकिन खालिस्तान वो अगर पाकिस्तान के अगर वो लबादा ओढ़कर वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का नाम तो वो उसकी मुखालफत हम करते हैं। सर
1: शहजादा उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने कानून कायदे का भी ख्याल रखिएगा,
2: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर।
1: सामाई नाज़रीन ये थे शहजादा उस्मान साहब जो कि कराची से बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे, आज वो रैली निकालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी रैली वो पहले भी निकाल चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में ये रैलियाँ निकाल रहे हैं। सामाई नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक करना जरूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपना मैसेज देना चाहता है तो उसके लिए अदर आपकी आवाज का टाइम हाजिर है,
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: messaging image and the military image boost national morale and counter propaganda. Basically, this is the wing which represents Pakistan Army media spokesperson. It is the basic of the head, you can say, ke kisi bande ya department ka main mudda jo hai media ke liye. It is basically inter-services public relations. ये बनाया ही डिपार्टमेंट इसलिए गया है क्योंकि इनका काम ही मीडिया से, नहीं कहीं डीजी को सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम ही मीडिया से रिलेटेड है।
1: अनिश, मेरे सवाल आर्मी के आगे गिरती घूमेंगे सारे मेरे सवाल क्वेश्चन जो होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत में फौज का क्या किरदार है।
0: हुकूमत में फौज का किरदार जो कि है, लेट मी टेल यू, वी हैव टू कैटेगरीज थ्रू पाकिस्तान आर्मी आई एम टॉकिंग अबाउट। नंबर वन, इंटरनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, and number two, national security and defense. Now let me explain you. Number one, the federal government often requests the army assist for law and order, crisis management and disaster relief. It is in the internal security and administrative. Now if we will talk about national security and defense, the army is tasked with defending Pakistan's border, particularly with India and Afghanistan, and combating domestic insurgency, particularly in Balochistan and former tribal areas. This is the difference between national security and defense and internal security and defense. जब आपको ये सुनने में आता है कोई natural flood आ गया, कोई disaster आ गया, earthquake आ गया, तो आप ये बात जानते हैं कि उसमें army हमेशा अपने शाने बशाना अपनी कौम के साथ खड़ी रही है। बॉर्डर छोड़ के वो आते हैं और अपनी ड्यूटीज को शफल करते हैं और लोगों को बचाते हैं। तो ये हमारा रोल आ जाता है गवर्नमेंट में इंटरनल, और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारे बॉर्डर्स का, विच आई हैव एक्सप्लेन यू इन माय आंसर।
1: तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या फौज ब्राय रास्त जो है सियासी फैसलों में हिस्सा लेती है?
0: राजा साहब, अगर फौज ब्राय रास्त क्यों हिस्सा लेगी और इसमें ब्राय रास्त की बात ही क्या है? अगर फौज को हिस्सा लेना है तो फौज खुलेआम हिस्सा ले।
1: राइट right.
0: अगर ये काम, अगर खुलेआम आ जाए फौज और खुलेआम आके वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के डॉक्यूमेंट्स में आके साइन कर दे, तो प्राइम मिनिस्टर कुछ करेगा? इस पे ब्राय रास वाली कोई बात नहीं है, ये तो तंजिया बात जाहिलों की तरफ से बनाई गई है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ही अपने डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफिस से प्रेसिडेंट ही साइन कर रहा है, और आर्मी अपना काम, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपने इदारे से चला रही है, तो फिर इसमें बराए रास क्या हो गया?
1: चले मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि ये जो फौज की तनख्वाहें और पेंशन का जिम्मेदार कौन होता है, ये सारा तरीका कार क्या है?
0: इट इज बेसिकली द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स। ये एक प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट है, PMAD। नाउ व्हाट इट डू, लेट मी टेल यू व्हाट इट डू। PMAD, which is meant by Pakistan Military Accounts Department, as well you can say Finance Department of Army. The primary department is responsible for the salaries and retirement pensions of Pakistan Army personnel operating under the Ministry of Defense, manages the accounting, auditing and disbursement of pay. Also benefit for commissioned officers, soldiers. Now we have the 4-5 categories in this. Number one, salary disbursement. Number two, pension management. Number three, controller military accounts, and number four, direct credit system. So these are the mainly departments which are working right now according to the constitution of Pakistan.
1: क्या फौज का बजट जो है वो आवाम के सामने मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जाता है?
0: राजा साहब, बजट जो फौज का जो बजट होता है ना, वो नेशनल असेंबली से बिल पास होता है, तो वो डेफिनेटली एक असेंबली है, उसके पास बिल गया है, उसकी वोटिंग हुई है, बजट पास हुआ है, फिर उस बजट के निस्बत ये हमारा जो कैटेगरी है ये काम करता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है ना। ये तो इस तरह नहीं है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा गया तो कोई बंदा तो नहीं है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूट है, एक इदारा है, तो नेशनल असेंबली से बिल पास होता है, उसके बाद ये इदारा सारा ऑपरेट उस बिल को करता है, उसका एक एक रुपये का हिसाब है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक रुपए से नीचे 50 पैसा भी कम हो गया तो लेने के देने पड़ जाने, इसके एक एक रुपए के हिसाब लिखे जाते हैं, तभी तो उसका बिल बनता है और बिल पास होता है, एक फाइल पूरी बनती है इसकी, ये पर्सनल तो कभी हो ही नहीं सकता।
1: ओके राइट, तो चलें, ये एक मेरा दूसरा जो टॉपिक है ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक है, इस लफ्ज को जो है वो बड़ा मीडिया पे भी लिया जाता है, तोशाखाना की मैं बात कर रहा हूँ। तोशाखाना है क्या?
0: लेट मी एक्सप्लेन यू तोशाखाना इन द बेसिक वर्ड्स व्हिच पीपल कैन अंडरस्टैंड। The Toshakhana is responsible.

0: Responsible for the collection, valuation, recording, and management finance of Pakistan, as well gifts presented to public offices holder, and including the, I'm also mentioning that including the, which that is include President, Prime Minister, and others, federal ministries, national, provincial assemblies. It functions as a treasure house. This is very clear by me that it functions as a treasure house of Pakistan, jise hum kehte hain hukumati khazana. It functions as the treasure house that manages the retention, disposal, or display of gifts to ensure transparency and accountability in state diplomacy. This is the constitution which I am telling you. I am not giving you my own words. I am telling you the constitution of Pakistan, and which I have explained right now. No, not at all. I have given you already answers.
1: मैं repeat कर देता हूँ.
0: Personally नहीं है.
1: मैं रिपीट कर देता हूँ कि तोशा खाना के ताइफ रखने के लिए या खरीदने के लिए कोई असूल होता है.
0: पर्सनली तो राजा साहब नो वन इज अलाउड. मिसाल के तौर पे कि आप डेनमार्क में
1: हैं, right.
0: मैं पाकिस्तान में हूँ. आपको डेनमार्क में बेशक हमारे दरमियान बहुत ज्यादा फासला है, लेकिन आप वहां पे ओहदे दरान है हकूमत की तरफ से और मेरे पास ओहदा है हुकूमत की तरफ से. हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड हो गए कि हम तनख्वाह किस लिए ले रहे हैं. हम बाउंड हो गए ना, चाहे आप दुनिया की जिस भी कोने में चले जाए, आप प्रोफेशनली तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के आप बाउंडेड पर्सन है. तो अब अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, मुझे कोई तोहफा मिलता है, वो तोहफा कोई हमारे घर पे आके हमारे मेहमानों में से नहीं दे रहा है. हम एक सरकारी हुकूमत की तरफ से एक सफर में जाते हैं. आप डेनमार्क चले गए, मैं पाकिस्तान में हूँ, मुझे कोई आके मिलता है, डिप्लोमेट मिलता है, वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, उसका पीछे रिकॉर्ड लिखा जा रहा है और वो मुझे कोई घड़ी देता है. वो मीटिंग्स और वो मेरी पहचान से मीटिंग हो रही है कि मेरे पास एक ओहदा है और वो मेरे उस ओहदे की वजह से मेरे से मिलने के लिए आ रहा है और उस बंदे को प्रोटोकॉल्स और सफर दिए जा रहे हैं पाकिस्तान सरकारी हुकूमत की वजह से. तो वो जो मुझे तोहफा देगा वो मेरा बनता ही नहीं, क्योंकि वो मुझे पर्सनली मिलने नहीं आ रहा, वो मुझे मेरे ओहदे की वाकफकारी से मिलने के लिए आ रहा है और मैं भी उसे अपने ओहदे की सरकारी खर्चे से मुलाकात कर रही हूँ. तो फिर उसके दिए हुए तोहफे मेरे कैसे हो गए?
1: Right.
0: बेशक आप यहाँ पे क्लियर हो गया ना, डेट इज क्लियर. नाउ डू यू गेट माई पॉइंट?
1: यस ऑफ कोर्स. चले, मेरा सवाल है, छोटा सा मेरा सवाल है कि ये मेरे दूसरे टॉपिक का आखिरी सवाल है आपसे मैं करूंगा. ये ज़ैनिश खान साहब, आप बताएं बजट की मंजूरी कौन देता है?
0: ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस बजट ऑफ पाकिस्तान?
1: यस.
0: ओके, नाउ आई विल गिव यू अ वेरी क्लियर डिटेल अबाउट इट. द बजट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्स इज अथॉरिटीराइज्ड बाय देयर फाइनेंस डिपार्टमेंट्स. एवरी डिपार्टमेंट, every ministry of Pakistan and anything of Pakistan which is related with the government and the army have the department finance department. They are not running their organizations, ministries and anything without finance department. Number one, this is clear. And let me tell you another thing which is in the budget process prepared by the ministry of finance. All the budgets, all everything of Pakistan, ये जो हमारा सालाना हम बजट सुनते हैं कि साल का बजट ये निकला है पाकिस्तान का, उसमें चीजें सस्ती महंगी हुई, that is all process prepared by the Ministry of Finance. Once passed by the National Assembly and reviewed by the state and the budget as part of finance bill is presented to the President of Pakistan. Some mandatory expenses like salary of judges or the president are charged on the federal consolidated fund and it do not require a vote by the National Assembly. I have very clear said it that which doesn't require a vote. वैसे तो जो बिल आता है उसके लिए वोटिंग की जरूरत होती है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं. लेकिन एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें नेशनल असेंबली की वोट रिक्वायरमेंट नहीं है और वो वेरी क्लियर आपको मैं बता दूं. What is that? That is the basic salary of judges. President charged on the federal consolidated. This is very clear that consolidated fund doesn't require a single vote in National Assembly. This is the constitutional answer which I have given you right now of your question.
1: तो चले, साथ में ज़िमनी सवाल भी कर लेता हूँ कि सेनेट भी बजट की मंजूरी में कोई रोल अदा करती है?
0: Yes, I have already given you answer ना कि reviewed होता है सेनेट से. इसी मैंने आपको भी जवाब दिया है कि जो बजट बिल होता है वो पास नेशनल असेंबली से होने के बाद सेनेट उसको देखती है, सेनेट के देखने के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, उससे पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं जा सकता। सेनेट के रिव्यू के अगर वो सेनेट बिल का बजट पास हुआ वो नहीं चेक करेगी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में वो नहीं जाए। बड़ा मेन रोल है सेनेट का।
1: चले मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टॉक मार्केट की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक एंड ट्रेड की बात कर रहा हूँ।
0: ओके ओके, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। दैट राइट नाउ टिल टुडे, आज के दिन तक की मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग मिक्स सिस्टम। इट शुड बी वेरी क्लियर दैट इट इज अ डेवलपिंग मिक्स सिस्टम फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स एंड सर्विसेज। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द डेवलपिंग सिस्टम। एंड सेकेंड दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस। सो लेट मी गिव यू एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन एनर्जी, आईटी, agriculture and manufacturing with over 800 multinationals operating in the country. Right now we have 800 multinationals. And if you talk about the stock market, the Pakistan stock market exchange has shown resilience with the KSE 100 index crossing 170,000 till now. आज के दिन तक का मैंने आपको स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड बता दी। अतः ये कोई बताता तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया को वही पता चले जो हकीकत है, और ये लाइव इंटरव्यू है, आप जानते हैं ये रिकॉर्डेड नहीं है, इसमें कोई कटिंग नहीं हो सकती है, लिहाजा मैंने आपको वही जवाब देना है जो लाइव डायरेक्ट लोगों तक जाए। सो दिस इज द बेसिक आंसर व्हिच आई हैव गिवन यू।
1: थैंक यू। मैं अब आता हूँ, चूंकि मैं खुद यूरोप में रहता हूँ, मैं यूरोपीय यूनियन की बात करूंगा। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है या क्या रोल है?
0: ओके, दिस इज वेरी अगेन गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी यूरोप
1: टॉपिक नंबर मेरा 4 है।
0: आप रहते जो हैं यूरोप में, इसीलिए यू हैव फोकस्ड दैट क्वेश्चन। ओके, द आंसर विच आई विल गिव यू राइट नाउ, इट इज अ रिकॉर्डेड आंसर जो आपके यूरोपियन यूनियन के रिकॉर्ड्स में, मैंने जितने भी आपको जवाब देने रिकॉर्डेड देने कि वो आपके रिकॉर्ड्स में। सो लेट मी टेल यू, पाकिस्तान होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूरोपियन यूनियन। This is very clear. Primarily functioning as the world largest beneficiary of the GSP plus trade scheme, which allows duty-free access to European Union markets for most of its exports. And secondly, let me tell you what we are monitoring. What Pakistan is monitoring. I'm talking about Pakistan, not Pakistan Army. It's about the whole Pakistan. The GSP plus status is contingent upon Pakistan implementing 27 international conventions on human rights, labor rights, and good governance. The European Parliament has previously raised concern regarding these issues and monitored compliance closely. And what is our development, Pakistan development in 2026? The European Investment Bank, EIB, what is meant by that? European Investment Bank, re-engaged in Pakistan after a decade with €160 million designated for housing and water projects in Sindh and Karachi, supporting climate resilience under the European Union's Global Gateway Strategy. This is the basic thing with which people doesn't know who is living in abroad in Europe. So I have given you this statement related in the record of European Union. This is the basic answer. If someone will listen that, and that guy or male or female is related to the government of Denmark, they will clear you this, that this statement is on the record of the this statement very clearly record in the European Union relations with Pakistan. It is in the record of the governance in the European Union. Even those people, Pakistanis, who are willing to have elections in Denmark, and they doesn't know, after hearing this interview, they can let you know legalizedly that I am speaking the truth because it is in the record. Understand?
1: Yes. चले मैं साथ छोटा सा ज़िमनन सवाल कर लेता हूँ। ये प्लस जीएसपी का स्टेटस जो है, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होता है?
0: देखिए, ये बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे कि आप ये चीज देखें, मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने घर का बजट महीने का चलाते हैं, 6 महीने का चलाते हैं कि साल का चलाते हैं? अपने घर का बजट कैसे चलाते हैं?
1: बजट के बगैर तो कोई चीज नहीं चलती जी।
0: इसी तरह ही जीएसपी, ये जीएसपी बेसिकली, इसकी एक्सप्लेनेशन में डीप में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर मैं इसकी डीप एक्सप्लेनेशंस में जाऊं तो फिर हमारा एक घंटा इस इंटरव्यू में लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दे रही हूं। जीएसपी प्लस स्टेटस का पाकिस्तान के लिए एक रेपुटेशन का होना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग्स में, हमारे मुल्क को बजटिंग में बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। और ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि यूरोपियन यूनियन के रिकॉर्ड का जो मैंने आपको जवाब दिया है, जो इस टाइम मौजूदा रिकॉर्ड है, या आपका कोई भी वहां पे पाकिस्तानी रहने वाला अगर डेनिश गवर्नमेंट में भी हो तो वो भी आपको इसकी तस्दीक कर सकता है। अमूमन तो वो इतना ध्यान देते नहीं है, लेकिन अगर इस जवाब के बाद तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत जरूरी होता है, आपका जितना महीने का बजट अच्छा होगा ना, उतना अच्छा आपका घर चलेगा।
1: ऑफ कोर्स, मेरा आखिरी टॉपिक है, पांच नंबर मेरा टॉपिक है जो मैंने सवाल किए हैं, ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से है। अकौम मुतहदा में पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन या मौजूदा हैसियत क्या है यूएनओ में?
0: नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट मौजूदा पोजीशन। तो मैं अब आपको इसका जवाब दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सारे जवाब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही देने।
1: ज़रा बाउंडेड है
0: पाकिस्तान, बाउंडेड डेफिनेटली मेरे महकमे में जाएगा, और इस इंटरव्यू का जो फर्स्ट व्यूड होगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हो सकता है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से हो सकता है, चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ से हो सकता है, हो सकता है। इस इंटरव्यू का फर्स्ट व्यू होना ही चीफ से, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द आंसर, नॉट ऑफ माय चॉइस और ऑन माय मूड आई एम गिविंग यू एन आंसर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। First, that Pakistan is currently a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2025 to 2026 term, having assumed the rotating presidency for July 2025 as a major troop contributing country. Pakistan holds a key position in global peacekeeping, advocating for multilateralism and the Kashmir dispute resolution and reform of the Security Council, focusing on expansion in the non-permanent category. And let me tell you what is non-permanent category, which I have mentioned that Pakistan has keeping a position about it. Non-permanent member till the December of 2026. This is Pakistan 8th term on the council, elected with 182 out of 193 votes in June 2024. How many votes Pakistan has taken? 182 out of 193. And secondly, what we have a role, Pakistan role in peacekeeping. Pakistan is a top contributor to United Nations peacekeeping operations, having deployed over 150,000 personnel in 41 missions across 23 countries since 1960. And what is our principal position if we are saying about Pakistan? So we must say that we are proud of Pakistan, because right now I'm telling you our principal position in 2026, Pakistan advocates for the self-determination of Jammu and Azad Kashmir and maintains a firm intent against adding new permanent members to the Security Council. This is our principal position. So people who thinks that Pakistan is some other country is using us in their dreams. No one can use our country, Pakistan, not even their dreams. We will straightly kill them over there. That no one can use us. We have the principal position in United Nations, which I have defined you. And let me tell you again that the self-determination of Jammu and Kashmir and maintains a firm stands against adding new permanent members to the Security Council. Those people who thought that we are mismanaged according to the peacekeeping rights, so they are bloody fools. They doesn't got knowledge about the Pakistan principal position, because most of the time I'm right now giving you an answer about it as a Pakistani. I'm not using my position, my army position. Let my professional on other side, and let me talk straight as a Pakistani. If Raja Sahib, someone will told you ki Pakistan bahut zulm karta hai, to ye baaton ki had tak baat karna guftugu kehlati nahi hai. Aapko har baat ki tasdeeq karni padti. तो आपने जो मुझसे सवाल किए हैं, मैंने उस हर बात की तस्दीक की और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दिए जो रिकॉर्ड्स में।
1: नो डाउट, अंडरस्टैंड چلے میں ساتھ آپ نے جواب تو کافی مدلل دے دیا, لیکن اس میں اگر تھوڑا سا آپ اضافہ کرنا چاہیں, چونکہ اگر اس میں اردو میں تھوڑا سا کر دیں, سلیس کر دیں کہ پاکستان اقوام متحدہ میں کن جو مشترکہ مشن ہوتے ہیں, ان جو مشن کرتے ہیں اقوام یو این او کرتی ہے, اس میں کس کن کن میں حصہ لیتے ہیں, یا کہ جو بھی ایک قاعدہ قانون طے ہوتا ہے اس کے ساتھ طے چلتے ہیں؟
0: دیکھیں, سب سے پہلے تو نا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہے کیا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یونائٹڈ نیشن ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو 1945 سے ہے, اور اس کے اس ٹائم 193 ممبر سٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کرتا کیا ہے؟ یہ کرتا ہے مینٹین انٹرنیشنل پیس, پروٹیکٹ ہیومن رائٹس, ڈیلیور ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ سپورٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں پاکستان کے جب آپ سٹرکچر کی بات کریں نا, تو پاکستان نان پرماننٹ ممبر ہے, وہ بھی کس کا؟ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کا 2025 سے 2026 تک, اور پریزیڈنسی پاکستان کے پاس تھی 2025 سے. اب ایک ایسی جگہ جہاں پہ پاکستان کی پریزیڈنسی اس لیول پہ رہی ہو, جہاں پر 193 ممبرز ہیں, اور وہاں پہ پاکستان نے پریزیڈنسی لی ہو, تو ہمارا ملک کیا ہے؟ یہ تو جن جاہلوں کو قدر نہیں ہے ہماری طرف سے, تو میں کہتی ہوں وہ ڈوب مریں کہ جن کو اس ملک کی قدر نہیں. اب جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا, میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کیا ہے, کیا کام کرتی ہے, اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے.
1: تھینک یو. اب اس سے بھی زیادہ ضرورت نہیں. میں تھوڑا سا, میرے ٹاپک تو سارے جو ہیں وہ پانچ ٹاپک میں نے بنائے تھے, اور میں چونکہ یہ میرے کوشچن جو ہے فوج کے آگے پیچھے ہی تھے, سارے گھومتے تھے, تو لیکن میرے ایک دو سوال ہیں, اگر اجازت دیں تو میں کر لوں آپ سے.
0: شور ڈیفینیٹلی آپ کریں.
1: دیکھیں, میں جس ملک میں رہتا ہوں, میں یہاں ہر چیز کا ٹیکس دیتا ہوں, جو عوام کا ٹیکس ہوتا ہے ہم سے باقاعدہ ٹیکس لیا جاتا ہے, تو اسی طرح ڈیفینیٹ پاکستان میں بھی ٹیکس لیا جاتا ہوگا, تو ذرا اس کا تھوڑا سا ہمیں فرق بتا دیں. ہمیں تو ٹیکس کے بڑے فائدے ملتے ہیں, اسپتال ہم فری جاتے ہیں, یونین کونسل کا سسٹم ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزوں کے ہمیں فوائد ملتے ہیں, تو وہاں کیا فائدہ ٹیکس دینے کا؟
0: سب سے پہلے تو میں یہ سوال, کیونکہ میرا محکمے سے اور میرے پروفیشن سے ہٹ کے ہے, تو میں اس کو آپ کو ایز اے پاکستانی جواب ہی دوں گی.
1: Right.
0: سب سے پہلے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ٹیکس کا کام کیا ہے. ٹیکس کیا ہے, اس کا میں آپ کو تھوڑا سا قانونی ایک جواب دے دوں. دی پاکستان ٹیکس سسٹم از اے کمپلیکس تھری ٹائر اسٹرکچر مینج بائی پرائمریلی بائی دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو, جسے ہم ایف بی آر کہتے ہیں, اور یہ کرتا کیا ہے؟ فار نیشنل ٹیکسز کام کرتا ہے, اور ان میں کیٹیگریز کیا آ جاتی ہے؟ انکم ٹیکس, سیل ٹیکس جو گڈس پر آتے ہیں, کسٹم ڈیوٹی, اینڈ بائی پروونشل اتھارٹیز فار سروسز اینڈ پراپرٹی. تو ٹیکس کا تو سسٹم یہ ہے کہ یونیورسل سسٹم ہے, پوری دنیا کا سسٹم ہے, ورک اینڈ ایٹ, کام کرو گے تو کھاؤ گے. ٹھیک ہے, اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, جس مرضی ملک میں, وہ جو جو کام کر رہے ہیں یا ان کے ارد گرد جو جو لوگ کام کر رہے ہیں, انہوں نے ٹیکس پے کرنا ہے. اگر پاکستان میں ٹیکس سسٹم ختم کر دیں, تو پھر لوگ جنگل میں جائیں, شکار کریں, بچوں کے بھی ساتھ جائیں, وہاں پہ کھائیں. نہ گورنمنٹ گھر بنا کے دے گی, نہ سڑکیں بنا کے دے گی, نہ یہ ملک چلے گا. اب اگر ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے, تو یہ کوئی پبلک ٹیکس نہیں لیا جاتا, یا سول سے نہیں لیا جاتا, آرمی کے بھی بندے سے لیا جاتا ہے, اور یہ ٹیکس لیا جاتا ہے آرمی کے علاوہ گورنمنٹ بندے سے بھی, ایجنسی والوں سے بھی. پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب سے ٹیکس لیا جاتا ہے. اب جب ہم ٹیکس دے رہے ہیں, تو ہمیں فیسیلیشن ملتی ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں, اس گھر کو بنانے کے لیے سیمٹ, اینٹ, بجری, وہ جہاں سے, جن عام کارخانوں سے جا کے خریدتے ہیں, وہ کارخانے والا جہاں سے جا کے یہ لے کر آتا ہے, اور گورنمنٹ اینڈ سب کا گورنمنٹ سیکشنز پہ ہی آتا ہے, تو وہ سرکاری ملازم بھی ٹیکس دے رہا ہے. تو گورنمنٹ فنڈامنٹل سسٹم سول بندے تک آ رہا ہے, اور سول بندہ اگر ٹیکس دے رہا ہے, تو اپنی فیسیلیشن کا ٹیکس دے رہا ہے. اب یورپ میں اور پاکستان میں ٹیکسیشن کا ڈفرنس کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈفرنس ہے کہ ہمارا ملک جو کہ ہے, ڈیولپمنٹ اور بجٹ کے لحاظ سے یورپ کی طرح امیر ترین ملک نہیں ہے. کیونکہ یورپ کی کنٹریز جب ڈیولپ ہوئی تھی, تو ان کی کرنسیز اور ان کے ٹیکسیشن کے سسٹمز ان کی آزادی سے کافی ہائی بجٹنگ میں جا رہے ہیں, اور جتنا وہ ہائی بجٹنگ میں جا رہے ہیں, اتنا انہوں نے اپنے سٹیزنز کو ڈنڈا دے کے رکھا ہوا ہے. मुझे आप ये बात बताएं, जिस जिस तरीके से सिस्टम से आप टैक्स डेनमार्क में दे रहे हैं, क्या आपका गार्डनर भी आपको आके चंगा आके टैक्स ले रहा है? गवर्नमेंट हर हर एक छोटी छोटी सी चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, क्या इस तरह का टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान में है?
1: वो तो आप ही उसकी वजाहत करें ना।
0: आप देखें, मैं तो आपसे आपकी लिविंग पूछ रही हूँ ना, कि जो आप पाकिस्तान में रह कर गए हैं, इस तरह के लेवल सिस्टम से तो टैक्स पे नहीं किया ना आपने?
1: नहीं
0: आपने
1: उस
0: टैक्स
1: लेवल
0: पे
1: से नहीं
0: किया है?
1: किया, लेकिन जो सहूलियात हमें मिलती हैं टैक्स देने से, तो ये जो
0: सहूलियात तभी मिलती है जब आपका लेवल इंक्रीज होता है, यही तो आपका जवाब है। अब बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान में टैक्स सिर्फ तब आपको पड़ता है, मैंने आपको भी बताया भी है, आपको टैक्स सिर्फ पड़ेगा ही तब जब आप काम करेंगे। आप अगर किसी प्राइवेट दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, कि आर्मी में काम करते हैं, आपकी सैलरी टैक्स कटेगा, उसके बाद आप अपने घर जा रहे हैं, उसके बाद जो घर जा रहे हैं सफर कर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, वो आराम से सब कुछ करें, वहां पे तो शुक्र करें सांस लेने का भी टैक्स नहीं है, वरना तो सिर्फ यूरोप में और पाकिस्तान से बाहर सांस लेने का टैक्स नहीं उन्होंने लिया। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि हमारी चार कैटेगरीज हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स ऑन गुड्स है, कस्टम ड्यूटी टैक्स है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज फॉर सर्विसेज एंड प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके अलावा तो हमारी कैटेगरी ही नहीं है टैक्स की। और यूरोप में तो सिर्फ यूरोप हो कि पाकिस्तान से बाहर कोई भी मुल्क हो, इवन इंडिया अफगानिस्तान में भी, ये इन चार कैटेगरियों के अलावा मैं कहती हूँ कि वहां पे शुक्र करें कि आपको सांसें लेने का टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जब एक ऐसी कंट्री है जिसपे कैटेगरी को फंक्शन फॉलो किया जाता है कि हर बंदे ने टैक्स देना है, सिविल हो कि सिविल ना हो, आर्मी पर्सन हो कि रिटायर हो, जनरल हो, जो मर्जी हो, वजीर आजम हो, सबने टैक्स देना है, और उसको सिर्फ इन चार कैटेगरीज में टैक्स देगा, इसके अलावा टैक्स नहीं देगा। तो फिर फैसिलिटेशन भी तो उसी मुताबिक ही मिलेगी ना जिस कैटेगरी के मुताबिक आप टैक्स दे रहे हैं। अब हमने तो हर चीज पे तो टैक्स ही, हमने चार कैटेगरीज को फॉलो करके टैक्स लेना है, तो फैसिलिटी भी हम आपको उन्हीं चार कैटेगरी की फॉलोएशन के साथ ही देंगे ना। ये तो नहीं आप चार कैटेगरीज में टैक्स दे रहे हैं और फैसिलिटेशन आप 10 कैटेगरीज की लेंगे हमसे, ये तो नहीं होता ना। तो
1: चले
0: इसीलिए मैंने
1: चले,
0: आपको इसका
1: आपका मैं ज़्यादा टाइम
0: कॉन्सिक्यूशन
1: ले रहा
0: बता दी।
1: हूँ, आप काफ़ी मसरूफ़ है, मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है साथ से आपसे कि ये जो सियासतदान होते हैं, ये जब अपोजिशन में होते हैं तो अपना जो रुख जो है वो अपनी बंदूकों का रुख फौज की तरफ कर लेते हैं, जब इकतदार में आते हैं वही अपोजिशन जब इकतदार में चली जाती है तो वही उनके गुण गाने शुरू कर जाते हैं, तो ये इतना बड़ा तजाद क्यों है?
0: राजा साहब, मैं इस पे आपको बड़ा जवाब देने से पहले ना, इस बात पे मैं आपको एक एक वेरी क्लियर एक स्टेटमेंट कर दूं, फिर मैं इस बात का जवाब आपको दूंगी। देखिए, एक बात वेरी क्लियर है कि ये जो आपका इंटरव्यू है मेरे साथ, ठीक है, इस बात को तो आप एक्सेप्ट करें कि इसमें एक वर्ड भी कटने वाला नहीं है, ऐसा ही है?
1: ये कट भी नहीं सकता जी, लाइव जा रहा है, क्या पता कौन
0: लाइव
1: कौन
0: चल रहा है
1: रिकॉर्ड
0: ना,
1: कर रहा है, कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता।
0: ये जो ओरिजिनल आप जो मेरे साथ लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं, इसमें लाइव इंटरव्यू का मतलब ये एक भी अल्फाज कटने वाला नहीं। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ वो मेरे महकमे में जाना है, तो समझ लें पाकिस्तान की बटर पोजीशन पे ये सारे अल्फाज जा रहे हैं। अब जो आपने क्वेश्चन किया है ना कि पॉलिटिकली तौर पे फौज को राइवल क्यों माना जाता है, ठीक है, जब आप आ जाते हैं ना दोनों चीजों के डिफरेंसेस पे, फिर उसका जवाब भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले तो पॉलिटिकली ना राजा साहब, वेरी क्लियर है कि पॉलिटिकली पाकिस्तान में पार्टीज कितनी है 2026 तक, इलेक्शन कमीशन में पार्टीज रजिस्ट्रेशन कितनी है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज के बाद इसमें राइवल्स कितने हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉर्ड इस टाइम जा रहे हैं ना राजा साहब 2026 का, वो जा रहा है कि पाकिस्तान में 270 पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
1: माशाल्लाह,
0: ठीक है, 270 इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उनमें से एक्टिव जो आपकी आ जाती हैं इलेक्शन के लिए पार्टीज, वो आ जाती हैं तकरीबन 15, जो अपनी पार्टीज पे जिनके पैसे लगाने वाले भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पार्टीज का नाम आगे लाते हैं। उन 15 में 4 पार्टीज हैं जिसको मीडिया में डिस्कस किया जाता है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और पीटीआई, ऐसा ही है, ये मैं
1: बिल्कुल
0: आपको इलेक्ट्रॉनिक
1: ऐसा
0: मीडिया
1: ही
0: का
1: है जी,
0: स्टेटस
1: ऐसा ही
0: बता
1: है,
0: रहा
1: साथ साथ मजहबी जमातों को भी कर लेते हैं, लेकिन मैं 4 पार्टियां यही
0: हूँ।
1: डिस्कस
0: वो इंक्लूड, मैंने कहा ना कि आप वो 15 पार्टीज में इंक्लूड कर लें, लेकिन हाईलाइट 4 पार्टीज है, ठीक है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि इसमें इन 4 पार्टीज में 3 पार्टीज जो के हैं वो एक दूसरे को लेके जा रही है, सिर्फ एक पार्टी जो के है पीटीआई, वो अपना पर्सनल मुद्दा उठा के बैठी हुई है, ठीक है। अब पीटीआई, व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, पीटीआई का तो काम ही पर्सनल मुद्दे का नहीं बनता राजा साहब, उस चीज की मैं वजाहत कर देती हूँ। मैंने कहा था अगर कोई ये बंदा डिफरेंस कहता है कि जी डिफरेंस है तो उसको क्लियर करे। सबसे पहले तो राजा साहब देखें, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं 18 अगस्त 2018 को, और उनकी लास्ट अटेंडेंस जो उसके बाद वो अगले दिन प्राइम मिनिस्ट्री उनकी उतर गई, लास्ट अटेंडेंस उनकी ये 10 अप्रैल 2022। 3.5 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, 3.5 साल एक भी पार्टी उनके ऑपोजिशन में नहीं थी। उनको तो प्लेट में रख के प्राइम मिनिस्ट्री मिल गई ना, क्योंकि ये वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना है जिसका पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहा। ये न्यू कमर आया, और न्यू कमर कैसे आया, बल्लेबाजी खेलने वाला, बोल बोल के, और बोल बोल के लोगों ने उसको तरजीह क्यों दी, क्योंकि उसने सारे इन्वेस्टर्स जो थे बेसिक बटर पीपल वो अपने साथ इंक्लूड किए हुए थे, इवन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ वो चलता फिरता रहता था। अब ये जो 3.5 साल इसने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री कायम की है जिसमें कोई ऑपोजिशन ही नहीं, और जहां दिल किया चंदा मांगा, नेशनली इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स पे भी दिल भर के दिल फट के चंदा मांगा और चंदा जमा किया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी 3.5 साल किसी भी पार्टी के लीडरशिप में किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिली, कि उसका कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, इवन कि बेनजीर को भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। फिर उसके बाद जब ये 10 अप्रैल 2022 में एज अ प्राइम मिनिस्टर पोजिशन से ये उतरे, तो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे एक्स रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही थे, जिनको ये कौम का बाप कहते थे। कब आपने ये कहीं देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही हो और DGISPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस कॉन्फ्रेंस में बैठा हो, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बैठे हुए गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में और उसमें आर्मी के अहदेदारान बैठे हैं, वो ये PTI की हुकूमत में हुआ है, PTI की हुकूमत की गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISPR बैठा हुआ है। ये आपको क्लिप्स न्यूज चैनल के कॉन्फ्रेंसेस के आप चाहे ऑनलाइन निकाल लें आपको मिल जाएंगे, जबकि अब गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना हुआ है ये 2026 का, कि फेडरल किसी भी कॉन्फ्रेंस में कोई सरकारी मुलाजिम बैठ ही नहीं सकता, कोई सरकारी मुलाजिम बैठेगा ही नहीं, और PTI को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली। अब राइवल जो ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को कहते हैं, वो तो 29 नवंबर 2022 में अपॉइंट हुए हैं, 7-8 महीने का तो गैप आ गया। तो मुझे बताएं कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2022 नवंबर 29 तारीख को अपॉइंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर 10 अप्रैल 2022 को उतरता है, तो उनके साथ हमारे जनरल आसिम मुनीर का कंपैरिजन कैसे बन गया, क्योंकि तब तो हमारे जनरल साहब उस टाइम थे ही नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चलिए फिर इसके बाद एक और बात पे आ जाते हैं। एक तो ये बात मुझे आप बताएं, क्योंकि ये बात मेरी समझ से बाहर, अगर फिर भी इनकी पार्टी कहती है कि नहीं भाई इमरान खान के बयान भी है कि मुझे कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार है, इसका मतलब कि आप एक उस जनरल के साथ पर्सनल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं जो जनरल तो पहले तो पोजीशन पे था ही नहीं जब इनको प्राइम मिनिस्ट्री से उतार के फेंका है, दूसरा के 7-8 महीने के गैप के बाद जब वो पोजीशन पे आए हैं तो इन्होंने एकदम से अटैक आसिम मुनीर, हमारे जनरल आसिम मुनीर पे किया, जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा पे क्यों नहीं किया, उनको कभी क्यों नहीं कहा कि मैं आप उस टाइम पोजीशन पे थे और हमने आपको कौम का बाप का और मैं आपकी गोद पे बैठा रहता था रोता रहता था और आपने मुझे क्यों निकाला। कभी आपने पीटीआई वाले किसी पीटीआई वाले के पोजीशन होल्डर से या कभी किसी भी बंदे से सवाल किया आपने? और अगर इन सब चीजों के बावजूद भी हमारे जनरल को जो इस टाइम मौजूदा हमारे जनरल हैं जो उस टाइम अपॉइंटेड भी नहीं थे, वो 7-8 महीने के गैप बाद अपॉइंटेड हुए, फिर भी इनको अगर टारगेट किया जाता है तो फिर इस बात का मतलब फिर साफ है ना कि आप देखें कि ये DGISI थे जनरल हमारे आसिम मुनीर और वो DGISI रहे 2000 तकरीबन, खैर मैं आपको उनका एग्जैक्ट बताती हूँ, वो रहे हैं 2018 जून से लेके 2019 तक, ठीक है, ये इमरान खान की हकूमत में ही रहे हैं। तो फिर इसका मतलब कि वो जो एक दिन में एक DGISI को उनकी पोजीशन से निकाला गया और उसी दिन फैज अमीर को अपॉइंट किया गया, वो फिर वाकई बात सच है कि वो इनकी बुशरा बीबी की करप्शन लेके इनके पास आए थे? क्योंकि ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, किसी भी फौजी के समझ में नहीं आती, इनके फौज इस चीज की तरफ सोचती भी नहीं है कि ये इतना साइको आदमी, इसको क्यों नफ्सियाती मरीज कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है ना। अब मुझे बताएं 16 जून 2019 को, ये डेट मैं आपको मेंशन कर रही हूं, 16 जून 2019 जनरल आसिम मुनीर वॉज रिप्लेस्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीन ऑन द सेम डे, क्या इस चीज की कभी इमरान खान ने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन दी है मीडिया को कि उन्होंने DGISI को 7-8 महीने के बाद एक दिन में रिमूव करके जनरल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज अमीर को क्यों रखा?
1: कानून क्या कहता
0: अगर
1: है?
0: वो इस चीज की कानून देखे, कानून तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, कानून ये एक्सेप्टेंस ही नहीं करता कि आप एक डीजी को एक ही दिन में निकाल दें और एक अगले घंटे के बाद आप दूसरे को अपॉइंट कर लें। ये कानून एक्सेप्ट नहीं करता तो जनरल फैज अमीर के ऊपर कोर्ट मार्शल आया ना। और मैं आज आपको जरा एक और फौज की एक बात वेरी क्लियर बता दूं, क्योंकि लोगों को नहीं पता होती, मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता दूं।
1: जी जी जरूर।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम ऑन द की अवार्ड्स ऑफ द जनरल आसिम मुनीर। निशाने इम्तियाज, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, हलाले इम्तियाज, तमगाए दफा, जनरल सर्विस मेडल होता है ये। लेट मी टेल यू व्हाट वाज एंड स्टिल हिज पोजीशंस। नंबर वन, ही वाज कमीशन्ड इन 1986 इनटू द 23rd बैटालियन ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट्स। नंबर टू, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज FCNA। नंबर थ्री, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस ईयर 2016 to 2018। नंबर फोर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI ईयर अक्टूबर 2018 जून टिल 2019 एंड आफ्टर दैट इन 2019 to 2021 ही वाज कोर्स कमांडर एंड क्वार्टर एंड आफ्टर कोर्स कमांडर इन 2021 ही वाज क्वार्टर मास्टर जनरल टिल 2022। इतनी पोजीशंस ऐसे नहीं आती, इसके लिए जंगें लड़नी पड़ती हैं, बैटल करनी पड़ती है। एंड आफ्टर द बैटल अगर बंदा जिंदा रह जाता है तो उसकी फिर फाइल बनती है, उसकी रिकॉर्ड फाइल होती है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जाती है। अब आप आ जाए इमरान खान के कैटेगरी में कि इमरान खान क्या थे। फर्स्टली ही वॉज क्रिकेटर। नंबर टू, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बट ही वेंट देयर एंड ही टेक द एडमिशन एज स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और उनके पास सिर्फ BA की डिग्री है, इसके अलावा तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
1: जरा रिपीट करें, BA की डिग्री है?
0: BA की डिग्री है।
1: और तो स्पोर्ट्स कोटा में हमारे फील्ड मार्शल आसम साहब है, उनकी क्या डिग्री है?
0: उनकी MPhil है। मैं आपको उनकी एजुकेशनल रिकॉर्ड बता देती हूँ, अचीवमेंट्स रिकॉर्ड्स तो मैंने आपको बता दी है, उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड पे भी
1: जरूर अगर आप बताना चाहें तो बता दे, जरूर बताएं।
0: श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं आपको बताएंगे, अभी बताते हैं। सबसे पहले तो ये बात आप क्लियर कर लें कि ये जो इमरान खान का कहा जाता है कि इमरान खान जो के हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए हैं, तो ये मैं क्लियर कर दूं कि वो स्पोर्ट्स कोटा में उनका एडमिशन हुआ था, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन हुआ था। और आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा रन भी गवर्नमेंट से किया जाता है, तो फिर उस टाइम का जो वजीरे आजम था उनको सराहना चाहिए कि इसको सराहना चाहिए, उनका सोचना चाहिए कि इनका सोचना चाहिए। नाउ लेट्स कम ऑन द कैटेगरी ऑफ आर जनरल के उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड पे आप आ जाएं, ठीक है। नंबर वन, एवरीवन नोज दैट ही इज हाफिज़े कुरान एंड ही इज हाफिज़े कुरान थ्रू मरकजी मदरसा दारुल तजवीद।
1: जी जी, इसका मतलब है उन्होंने कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ा है।
0: आपको मेरी आवाज कंटिन्यूअसली आई है? बिकॉज
1: बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही थी।
0: लेट मी रिपीट दैट अगेन, क्योंकि मेरे थोड़े से सिग्नल जो के हैं ड्रॉप हुए हैं।
1: जी जरूर।
0: वो हाफिज़े कुरान है मरकजी मदरसा दारुल तजवीद, वो मदरसे का नाम क्या है? दारुल तजवीद रावलपिंडी में। सेकेंड उनकी आ जाती है हायर एजुकेशन, ठीक है। ही इज MPhil पब्लिक पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। एंड व्हाट इज हिज मिलिट्री एजुकेशन? ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द 17th ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कोर्स इन मंगला एंड एडवांस स्टडीज ही कंप्लीटेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एट द फौजी स्कूल इन जापान, द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन क्वेटा एंड द मलेशिया आर्म फोर्सेज कॉलेज इन कोलालंपुर। This is his whole education pattern. Now, please tell me one thing, that if someone is a cricketer and he has done his studies through sports quota, but he has done BA degree, ये तो उनका mention है ना, जब उन्होंने prime minister की position ली थी तो उधर भी BA degree लिखा गया, ठीक है। अब एक बंदा जो educational wise और term wise और जिंदगी के experience wise किसी भी लिहाज से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैटर्न के साथ मैचेबल ही नहीं है। तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज में तो डिफरेंस आएगा ना। एक बंदे का प्रोफेशन क्या है, इमरान खान ने क्या बनाया पाकिस्तान के लिए बताएं आप?
1: शौकत खानम,
0: शौकत खानम इमरान खान का बना हुआ नहीं है राजा साहब। शौकत खानम की जमीन सरकारी है और वो लोगों के डोनेशन से बना है। चंदा जमा करने के अलावा इस बंदे ने क्रिकेट छोड़ी तो चंदे जमा करना शुरू किए। चंदा जमा करते करते करते करते करते प्रोफेशन तो इसका यही है, चंदे जमा करना। उसके बाद इसने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई तो कोई पीटीआई अचानक से आके उभर नहीं गई। इसने अगर पॉलिटिकल पार्टी को डेवलपमेंट देना था तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बूस्ट करने के लिए इसने सब पॉलिटिशियन से ताल्लुकात बनाए हुए थे। शौकत खानम की जमीन हर बंदे को पता है कि नवाज शरीफ ने सरकारी तौर पे तो शौकत खानम की डेवलपमेंट के लिए जमीन दी थी। तो इसके उस टाइम ताल्लुकात नवाज शरीफ से इतने ज्यादा थे और बाकी पॉलिटिकल पार्टी होल्डर से इतने ज्यादा ताल्लुकात थे कि ये उनसे अपनी फंडिंग के ग्राउंड्स बनाने के लिए बेनिफिट्स लेता रहा। अब जब इसे पता चला कि सिर्फ चंदा जमा करने से गुजारा नहीं होता तो इसने अपने ग्राउंड से ही इन्वेस्टर्स और जिन जिन लोगों के साथ बैठता था उनके मुखालफिनों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। जब हाथ मिलाना शुरू किया, मुखालफिन जमा किए, जो इसके साथ बैठते थे उन्हें की कमर में छुरी फोकी और अब इसने अपने दनों के पैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। आज तक तो ये बात इमरान खान ने कभी क्लियर ही नहीं की कि इनका बिजनेस क्या था, लिहाजा इनके दने बाकी चीजें जितने भी हुए थे वो इनके इन्वेस्टर्स थे, पॉलिटिकल इन्वेस्टर्स। अब जब ये आए हैं प्राइम मिनिस्ट्री में तो इनके साथ वाले ने गालियां दे के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इनकी प्राइम मिनिस्ट्री पोजिशन में ही भाग गए। अब जब भागे, इक्तदार उतरा, जिसको बाप कहते थे वो ही तो उस टाइम था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये क्यों नहीं कहते कि जनरल कमर बाजवा ने इसको गिराया है? ये आसिम मुनीर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जो उनके ऊपर जो कयामत फूटी, जो वो अंदर से मरे हुए हैं उसी बात से मरे हुए हैं कि हमने इसको जो पोजीशन से निकाला था कि ये हमारी करप्शन पकड़ के आया था। राजा साहब, नफरत उससे होती है ना जो खामियां बयान करता है। हर बंदा अपनी खामियां सुन नहीं सकता। अब इतने बड़े डिफरेंस मैंने आपको दोनों में बताया है, अब मुझे बताएं कि पॉलिटिकली कहां से क्लैश आ गया हमारे जनरल का इसके साथ?
1: चलें जी, ये तो बिल्कुल आपने वाजे कर दिया कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन ये भी पता चल गया। उसके अलावा आप जनरल साहब माशाल्लाह इतने कोर्सेज, इतनी तालीम है, उनके हायर एजुकेशन में वो जो है एमफिल किया उन्होंने। तो जैनब साहब, मैं आखिर में बहुत सारा टाइम आपका ले लिया, अब मैं आपके लिए आप पर जाती सवाल करने जा रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो।
0: अल्लाह खैर करे, जरूर जी जरूर, व्हाई नॉट करें आप राजा साहब।
1: जैनश, आपको जो आप ये मकाम मिला हुआ है, जिस मकाम पर आप हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि आप सरकार को भी देख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरा सवाल आप समझ जाएंगी। तो जब आपको अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ों में नवाजा है, बहुत सारा आपको मकाम मिल गया है, और इस मकाम पे, जिस मकाम पे इस वक्त आप हैं, तो हर किसी के नसीब में नहीं आता, लेकिन आप पुराने लोगों को भूल गई हैं, क्या वजह है?
0: राजा साहब, ये सवाल तो कभी ना कभी जिंदगी में मेरे सामने आना ही था, लेकिन चले आपके प्लेटफॉर्म से आया तो ये ज्यादा खुशी हुई है मुझे। राजा साहब, कभी कोई भी ताल्लुक जो होता है वो ना खत्म होता है ना भूला जाता है। कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मकाम पे जो लोग आपके साथ होते हैं वो साथ साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे टकराते हैं, या उनके मामलात आपके पास या आपके मामलात उनके पास आते जाते रहते हैं। मैं इसमें आपको ना एक बड़ी क्लियर सी बात करूंगी कि राजा साहब, मैं तकरीबन अगर इस टाइम ओवरसीज की बात करूं तो ओवरसीज में बहुत ऐसे लोग हैं 10-15 साल से, 8 साल से, 9 साल से मेरे साथ गुफ्तगू में, मेरे घर आके रहते हैं और बहुत अच्छी उनकी बीवी बच्चे सबको मैं जानती हूं। लेकिन जो लोग ये गिला करते हैं कि जी हमसे ताल्लुकात तोड़ा, मैंने कभी किसी से आज तक ताल्लुकात, दुनिया गए टूट गए, मेरा कभी किसी से कनेक्शन कभी नहीं टूटा। इसकी एक बहुत बड़ी आपके पास ये एक मिसाल है कि अभी चंद माह पहले मेरे पास एक रात को 4 बजे फोन आया, तो मेरी बड़ी नींद कच्ची है, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, मैंने वो अटेंड किया तो मुझे, मैं जनाब है, उन्होंने बताया कि ये बंदा है, ये 4-5 साल से आप इसे जानती हैं, ये बड़ा मुश्किल ट्रैप पे फंसा हुआ है, इसे निकालने यहाँ से। तो 4-5 साल बाद मुझे वो फोन आया उस बंदे के बारे में, थर्ड पर्सन से। तो मैंने फर्स्ट गो में आपको फोन किया और आपसे पूछा क्या ये बात कोई आप तक आई है, तो आपने मुझे बताया मुझे अभी तक इन्फॉर्म नहीं है। ये बात सच है ना? आप इस बात के गवाह हैं।
1: जी जी।
0: उसके बाद मैंने आपको सिर्फ टाइम दिया कि इतने बजे ये बंदा जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में होगा ये आपको उस प्रॉब्लम से आउट मिलेगा। तो राजा साहब, क्या मैंने अपनी जुबान पूरी नहीं की?
1: तो आपने ओवरसीज के लिए काम किया?
0: ओवरसीज के लिए वो जो बंदा जिसका जिक्र आया था मेरे पास, वो तो ओवरसीज ही था ना, लेकिन उसका मेरा 4-5 साल से डिस्कनेक्शन था, बातचीत ज्यादा नहीं थी। उसका जो प्रॉब्लम था ना, वो ओवरसीज का ही बना हुआ था। उसको बड़ा डिफेम किया जा रहा था, उसको प्रॉब्लम में ला के उसकी पिक्चर्स फोटोज बड़ी डिफेम की जा रही थी। और मुझे कॉल इसलिए आया था क्योंकि मुझे उस बंदे ने कहा कि इसको बचाने वाला कोई नहीं है, मैं जिसको फोन कर रहा हूँ इसका कोई फोन ही नहीं मेरा उठा रहा, आप वाइल हैं जो इस चीज पे खड़ी हो जाएंगी। अगर अजय साहब 4-5 साल पहले किसी की मेरे साथ बातचीत खत्म हुई है और 4-5 साल बाद किसी थर्ड पर्सन ने मुझे कहा इसकी हेल्प करें, मैं मर्द तो नहीं हूँ, मर्द की औलाद तो हूँ, तो मैंने उसे 4-5 साल बाद भी वो जिस भी प्रॉब्लम में था 1 घंटे के अंदर उसका डिसीजन मैंने करवाया। 1 घंटे मेरे पास तो इस चीज के एक एक प्रूफ है, लेकिन मैंने कभी इस पर बात ही नहीं की। राजे साहब कोई भी दुनिया में ताल्लुक ना मैंने कभी खत्म नहीं किया, सिर्फ गुंजाइश थोड़ी कम कर दी क्योंकि इनकी मेंटेलिटीज मेरे मयार के मुताबिक नहीं थी। आज जो मुझे अल्लाह ताला ने मकाम दिया, ऑफकोर्स मैंने वो पाथ सिलेक्ट किया। इंसान अपना कैरियर खुद सिलेक्ट करता है, आसमान से फटता नहीं है, जो उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन या जितनी समझ होती है उस मुताबिक उसका कैरियर ऑप्शन होता है। मैंने जो कैरियर सिलेक्ट किया अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी, मेरी माँ की दुआओं ने कामयाबी दी, मैं वन ऑफ द पीक लीड रोल पे हूँ, इस बात पे तो कोई शक नहीं है। अगर मेरी पावर नहीं है तो वजीर आजम पाकिस्तान की भी पावर नहीं है इस टाइम, तो ये पोजिशन इस टाइम क्या, ये तो अल्लाह ने चाहे सारी जिंदगी मैंने इसी तरह ही रहना है क्योंकि मेरे पैर मजबूत है, मेरा घर मजबूत है, मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे दुराने स्ट्रगल में या मुझे जिंदगी के किसी लम्हात में किसी जगह पे मिले हैं और उनका मेरे साथ कन्वर्सेशन या कनेक्शन रहा है और फिर उनकी मेंटेलिटीज मैच नहीं, उनके बिहेवियर्स डिफरेंट हो गए, उनका वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो गया और मैंने उनसे सिर्फ गुंजाइश बातचीत की हद तक खत्म की, ताल्लुक कभी खत्म नहीं किया। आज भी मुझे कॉल आया ना कि वो फलाना बंदा, उससे 9 साल पहले आपकी बातचीत खत्म हुई है, ताल्लुक खत्म हुआ है, उस पर ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से जवाब आएगा, मेरी तरफ से इंशाल्लाह जब जवाब आएगा तो सारे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। मैं हमेशा हमेशा राजा साहब उन सब लोगों के लिए खड़ी हूँ जिन्होंने मेरे साथ कभी जिंदगी के एक लम्हे में एक टेबल में खाना खाया है और जिन्होंने मेरे साथ एक टेबल में कभी खाना नहीं भी खाया, गुफ्तगू में भी वो मेरे साथ ताल्लुक में है, तो मैं उनके लिए भी खड़ी हूँ। और मेरा तो राजा साहब हमारा बड़ा छोटा सा सिस्टम है, एक कॉल करनी है सिर्फ, मेरे लिए तो एक कॉल की मार है, मैंने एक कॉल करनी कि ये काम इस काम को इतने मिनट्स में सॉल्व करो, आगे वो मामला सॉल्व हो जाता है। और इस बात की तो गवाह है आप, क्या ये बात झूठ बोल रही हूँ मैं?
1: आप ठीक कह रहे हैं, चलें जिसका गिला बनता है, जो बंदे कह रहे हैं कि आप भूल जाती हैं, पहचान नहीं करती,
0: जिसका गिला है राजा साहब फिर उसको खुद पहल करनी चाहिए।
1: ये जवाब मिल गया उनको, जवाब मिल गया अच्छी तरह, जिनका भी गिला होगा। जवाब आपने बड़ा जो है फसल दे दिया है। सैनिश मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात में अपना इतना लंबा टाइम हमारे स्टेशन को दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो हाजिर है आपके लिए।
0: राजा साहब मैं आखिर में तो फिर सच्ची दिल की बात करूंगी, सुनने वालों को बुरी लगे तो लगे। सबसे पहले तो मेरा इस इंटरव्यू में कोई पैगाम ओवरसीज के लिए नहीं है, ये बहुत समझदार हैं, हर बार ये हर चीज जानते हैं और हर चीज को जिसने पॉजिटिव लेना है वो पॉजिटिव ले, जो नेगेटिव लेता है वो 100% नेगेटिव ले। हम ये कहते हैं आप हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएं, हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप हमसे नफरत करते हैं तो हम आपसे 10 गुना नहीं 1000 गुना नफरत करते हैं, हम इतनी एक्सप्लेनेशन देने के कायल नहीं है। तो अब आखिर में मैं अपना ये दिल का पैगाम देना चाहूंगी, जाती तौर पे पैगाम दे रही हूँ, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है कि जिंदगी में जो भी काम करें ना, कैमरा लगा है कि नहीं लगा, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, वो रिकॉर्ड बनता जा रहा है, वो अल्लाह की अदालत में रिकॉर्ड बन रहा है। अगर घटिया काम करेंगे तो वो उसका हमने आपको क्या किसी को भी रिजल्ट नहीं देना या किसी ने हमें रिजल्ट नहीं देना, वो ऊपर से लाठी आनी है और बचना कुछ नहीं। तो राजा साहब मैं यही कहूंगी कि जो काम लोग अपने आप का ज्यादा बेहतर जानते हैं, दूसरे का क्या किसी ने तनकीद करनी, जो हम दुनिया में जो भी काम जिस भी प्रोफेशन में कर रहे हैं उस प्रोफेशन में ना सही, अपनी जात में अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सिंसियरिटी रखी, और अगर सिंसियरिटी नहीं रखते तो कम से कम आपके साथ चलने वाले को तकलीफ ना दे, क्योंकि वहां पे होता ओवरसीज को क्या पैगाम देना, दुनिया में होता ही यही है कि जब ये किसी का एतमाद जीतते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली मेंबरशिप की बात हो, लोगों को कायल करने की बात हो या गवर्नमेंट की बात हो, आप हमेशा किसी ना किसी को साथ लेके चलते हैं। अकेला तो बब्बर शेर भी जंगल में जिंदा नहीं रह सकता, तो आप जब जिस किसी को भी इंसान को अपने एतबार में लेते हैं और किसी भी मकसद के लिए लेते हैं, प्रोफेशनली लें जाती लें, तो उस बंदे का एतमाद मत तोड़े, और अगर तोड़ दी है तो जुर्रत रखें कि अपनी गलती की माफी मांगे। यूनिटी और स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है दुनिया के हर प्रोफेशन में। ओवरसीज है कि नहीं है, ये इंटरव्यू बहुत कहाँ कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने साथ वाले लोगों के साथ सिंसियरिटी रखें। लोग हमसे ज्यादा तेज है, दुनिया हमसे ज्यादा तेज है, वो भी समझ जाते हैं।
1: बहुत शुक्रिया, इख्तिताम हम करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
0: थैंक यू जी सो मच जी, टेक केयर जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। सुबह जब हमने आपको इंट्रो में बताया था आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है 10/5/2026 का, सामने नाज़रीन इस वक्त 5:20 हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मियां मुनीर अहमद साहब, जो किसी तारफ के मुताज नहीं, अक्सर आप इनको सुनते रहते हैं, और ये आजकल इस रैली को जो है वो लीड कर रहे थे, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी के कायम काम सदर भी हैं। उन्होंने रैली को लीड किया, इनकी क़यादत में रैली चली और रैली एम्बेसी में आई। आगे से हम साहब ने उनको रिसीव किया, एम्बेसडर साहब भी वहाँ थे, एम्बेसी में आए, और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मियां साहब की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे, मियां साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज का जो मार का हक का प्रोग्राम था उस पर आप क्या कहेंगे।
2: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राज साहब शुक्रिया, शुक्रिया आपने मौका दिया। देखें आज का दिन जो है हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा बड़ा फख्र का दिन है, और ये वो दिन है जब हिंदुस्तान की तरफ से एक ऐसी हरकत हुई जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक फौज ने, हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो अस्करी और सियासी क्यादत थी, उन्होंने ऐसे एक सही टाइम पर सही फैसला कर दुश्मन को इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब उसकी कई नस्लें जो हैं ये दिन जो है ना इसे इसके बारे में सोचती रहेंगी। बाकी ये दिन यहाँ मनाने का मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ने 25-26 करोड़ पाकिस्तानी ने वहाँ ये दिन मनाया। दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए हर लम्हे अपने उनके साथ हैं। तो यहाँ ये हमने पाकिस्तान सोसाइटी ने एक्चुअली कोई 1.5 माह से ये प्रोग्राम जो है हमारा प्लान था मनाने का, और इस तरह एक रैली की शक्ल में कार रैली हम, यानी कि पिछले साल भी किया था, आप भी साथ थे, तो आज भी माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हम अपने कार रैली लेकर गए। वहाँ एक बड़ी अच्छी गैदरिंग थी, सफीर मोहतरम ने और उनकी टीम ने, अली स्टार सब ने, आप भी थे, सभी थे उधर, एक अच्छा मतलब एक वेलकम हुआ। और वहाँ जो भी अपने मुल्क और कौम के लिए अपने अपने जज्बात का इजहार किया गया, अपने अपने तरफ से दुआ की गई, अपनी अपनी जगह हम एक मैसेज लेकर आए एज ए पाकिस्तानी, तो वो इंशाल्लाह ये वो चीजें हैं जो हमें जिंदा कौमों में होनी चाहिए और अपना अपना इसमें फरीजा अदा करना चाहिए। और आप राजा साहब बिल्कुल आपकी अपनी जगह एक हमेशा पाकिस्तान पाक फौज हम सब के लिए एक आप भी हमेशा एफर्ट करते हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक बहुत यादगार दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए रहेगा, क्योंकि हमसे सात दुगना बड़ा जो मुल्क है हिंदुस्तान, उसने एक ऐसी हरकत की थी जो दुश्मन है हमारा शुरू से, लेकिन इस दफा उसने कुछ चीजें एक ऐसे प्लान से की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे पसपा हुई कि वो अब कई साल तक सोचने पर मजबूर है कि अंदा उसे किस तरह मतलब चीजों को लेकर चलना है, कुछ करना है तो फिर कितनी बड़ी मार पड़ेगी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो है, हमारी पाक फौज ने, हमारे जैसे मैंने कहा हमारी हुकूमत ने, और इसी तरह हर जगह हमारे पाकिस्तानियों ने दियार गैर में जिधर भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने जज्बात का इजहार किया, और जो उन्होंने प्रैक्टिकली चीजें करनी थी उन्होंने करके दिखाया। जी राज
1: मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मसरूफ है, आप जो है टेक्सा ब्रांच के सदर भी रहे और आज भी लगता है कोई मीटिंग आपकी टेक्सा ब्रांच की। तो मियां साहब ये इलेक्शन का तो एक साल पहले अभी हो गया, एक साल
2: नहीं ये असल में टेक्सा फिया कॉन्फर्मेशन साहब जो ना जी, ये एक आपको पता है ये एक सम शूटिंग है, फाइनिंग है, इसके हर साल मस्ट इलेक्शन होने होते हैं और मई में होने होते हैं। ये आपको पता कि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं डेनमार्क की, उनका एक ऐसे ही दस्तूर होता है, तो वो हर हालत, और हमारा जो है ये यानी कि पिछले ये मैं 6वीं दफा मैं इसमें शिरकत कर रहा हूँ, और हर साल मई में होनी होती हैं। अगर कोरोना था और चीजें थी, अगर खुदा नखास्ता कोई डेट में तब्दीली करनी पड़े, तो वैसे जो हमारे मंशूर के मुताबिक हमारे निजाम के मुताबिक मई का माह होता, और इस दफा मई 31 को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हर एक जो मेंबर है कंपनी में बॉन्डमैन है उसे पूरा पूरा हक है वोट देने का, और जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें पूरा यानी कि उनका हक है कैंडिडेट

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, और आपको पता है कि 10 मई के हवाले से मार का हक का जो प्रोग्राम आज पाकिस्तान एम्बेसी में हो रहा है, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वेलकम करेगी मेहमानों को, और ये दावत आम है। तो हमने कहा पूछें जो लीडरान लोग होते हैं उनकी क्या सोच है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथी चौधरी शौकत साहब, जो कि मशहूर बिजनेसमैन है डेनमार्क में, समाजी कारकुन भी हैं और सरपरस्ते आला भी जो हैं आफ लीग के यहाँ डेनमार्क में, और पुराने मुस्लिम लीग के हैं और 26-28 साल सदर भी रहे, तो हमने कहा ये बेहतर इस बारे में बात कर सकते हैं मार्क हक के मुतल्लिक। तो चौधरी साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को और मेरे सुनने वाले सामाइन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
1: चौधरी साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांधी, आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी तल्लक है और आपका समाजी कारकुन भी हैं आप और सरपरस्ते आला भी हैं आप जो है मुस्लिम लीग काफ के यहाँ डेनमार्क में, तो आप क्या मार्क हक के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
2: जी राज साहब, इंशाल्लाह जो है ना, हम ये जो है ना मार्क हक है जो आज दिन जो पाकिस्तान के किस्से में आया, पाकिस्तान की फौज ने एक ऐसा कारनामा अरसे दराज के बाद जो है ना अदा जो है ना मार्क हक जिसका नाम है वो किया और जो पूरे पाकिस्तान का सर जो है बुलंद कर दिया, अवाम का भी, फौज का भी, जितने भी सारे हम जो है ना पाकिस्तानी हैं, इनके लिए एक बड़े एजाज का दिन है। आज हमें खुशी मनानी चाहिए और इंशाल्लाह हम जो है ना डेनमार्क में एक रैली की शक्ल में पाकिस्तान एम्बेसी में जाएंगे और ये दिन मना के, क्योंकि हम ये दिन जो है ना कभी भी भूलेंगे नहीं जिंदगी में इंशाल्लाह, क्योंकि जो हमारी फौज ने किरदार अदा किया, हमारी क्यादत ने जो है ना जो ना कारनामा अदा किया, ये सभी के नाम जाता है ये जो है ना। और दूसरा ये हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम इस दिन को कामयाब करें और खुशी मनाएं इस तरीके से कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी एक कौम है और पाकिस्तानी जो है ना एक दूसरे को पाकिस्तानी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनकी कामयाबी के लिए हर वक्त दुआगो होते हैं, दुआएं मांगते हैं। हमारी माएं बहनें घर बैठे पाकिस्तान की फौज के लिए दुआगो हैं और दुआएं मांगती हैं कि जो हमारे बच्चे, हमारे भाई जो महाज पे खड़े होके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हमेशा से कुर्बानी देते रहे हैं, और लेकिन अब तो ये जो है ना, अब जो निकल गया ये पाकिस्तान वाला लफ्ज, अब तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आदत करेगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है ना अपनी जो है ना अपने मुल्क की जो हफाजत की जो है ना जिम्मेदारी देने को तैयार है। काफी लोग, काफी मुल्क जो है ना एग्रीमेंट भी कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है, हमारी फौज के लिए एजाज की बात है कि जो लोग हम पे इतमाद कर रहे हैं कि जो अगर कोई ताफत दे सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है हमें और पाकिस्तानी फौज दे सकती है। तो हम इंशाल्लाह आज रैली की शक्ल में ब्यासा स्वाई पे गौन फैसल है फेम वाई उधर से कारों में ये इंशाल्लाह जोश जज्बे से हम आएंगे
1: रैली में, आए क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वेलकम करें एम्बेसी में।
2: जी बिल्कुल, और एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, उन्होंने भी लोगों को दावत आम दी है और पाकिस्तानी लोगों को, बाकी लोगों को भी बुलाया है कि आप आए एम्बेसी में, आके हमारे साथ ये दिन मनाएं। तो इंशाल्लाह राजा साहब हम बिल्कुल भरपूर तरीके से ये दिन को मनाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारी बहनें भी, हम सब भाई भी मिल के पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और इंशाल्लाह हमेशा दुआ करते रहेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। हम पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, हम यही एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद,
1: पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चलो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत साहब जो कि यहाँ डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन है और सरपरस्ते आला भी है, उनकी बात आपने सुनी, उन्होंने पाक फौज के हवाले से, मार्क हक के हवाले से अपना मैसेज जो है वो दिया, लाइव मैसेज दिया। तो कोई भी मैसेज देना चाहे तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। समझ चौके आज स्पेशल प्रोग्राम है तो हर आदमी को अपनी हक है, लेकिन हमारा किसी के साथ मुतफिक होना जरूरी नहीं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूँ तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनज़र रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह इंट्रो में ऐलान किया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कारवाने फिक्र के जो है वो बानी है और उसके बाद बहुत सारी चीजों पर ये काम करते हैं, चेयरमैन भी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के, जो अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, और भी बहुत सारे ये एक्टिव रोल अदा करते हैं। पार्टी में इनका बड़ा मुकाम है, थिंक टैंक है, और ये जब बात करते हैं तो फिर किसी पार्टी की नहीं बात करते, फिर ये इंफॉर्मेशन की बात होती है, किसी की जात की बात नहीं होती, और ना ये कहते हैं, और ये खुलकर कहते हैं, छुपा कर भी नहीं कहते, तो कट्स की बात करते हैं तो ये बात उनकी बड़ी लोग पसंद करते हैं। तो शाकर साहब, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: याउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी अली मोहतरम राजा गफूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से आप सब के, आप सब रेडियो आपकी आवाज के सुनने वाले

बिल्कुल ये यकीन रखना चाहिए कि दिन ब दिन माजी से बेहतर मजदूरों के हालात हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होने वाला बाकी है। हमारा तल्लक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो खास तौर पे मजदूर तबका जो है, वो तबका के जो कि परेशान हाल रहता है, जो परेशानियों में गिरफ्तार रहता है, जिसको अक्सर इकोनॉमिस्ट जो हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन कंसिडर करते हैं, उनके लिए पिछले चंद सालों से बेहतरीन काम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जिंदगी में आसूदगी लाने के लिए, तालीम और तरबियत के लिए और सेहत के लिए। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी बहुत सारा काम इन मजदूर बहनों भाइयों के लिए होना बाकी है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हुआ करते थे, शेख मुमताज, वफात पा गए। हमारा उनके साथ बड़ा दिली लगाव था, बड़े ही प्यारे इंसान, बड़े ही अदबी शख्सियत थे, इंतहाई खूबसूरत शायर थे, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के चीफ मैनेजर थे। उस इंडस्ट्री के तीन डिफरेंट यूनिट थे और तीनों डिफरेंट यूनिट्स के अंदर हजारों की तादाद में ये मजदूर काम किया करते थे। तो वो अपनी शायरी में एक दफा उन्होंने एक इसी मौके पे 1 मई के मौके पे एक शेर उन्होंने सुनाया, तो उन वो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं हर साल उनका ये जो शेर है जरूर मैं अपने दोस्तों की नजर करता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ कि इतने बड़े एक फैक्ट्री के चीफ मैनेजर, जिनके जेरे साया हजारों की तादाद में मजदूर काम किया करते थे, उनका ये शेर था, जज्बात का इजहार था कि किस्साए हालते मजदूर बयां कौन करे, किस्साए हालते मजदूर बयां कौन करे, इतना काफी है कि हर मिल से धुआं उठता है। तो ये उस प्यारे शख्स का ये जो एक तजियाती एक शेर था, और मैं उनके मुंह से ये अल्फाज सुन के, ये शेर सुन के मेरे दिल पे इसका बड़ा असर हुआ, और गहरी तहरीर की शक्ल में मेरे जहन के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर ये कुनिंद हो गया है कि उस हजारों की तादाद में मजदूरों की हालत इजार को देखने वाले शख्स ने, जो कि खुद चीफ मैनेजर थे उस इंडस्ट्री के, और सबसे ज्यादा हैवीली पेड थे, सबसे ज्यादा सैलरी उठाया करते थे उस फैक्ट्री से, तो उनका भी यह मानना था कि ये हमारी फैक्ट्रियों से जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, ये असल में इन मजदूरों की हालत इजार बयान करता है। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, फजल करे, दुनिया में जहां जहां भी मजदूर तबका है, पिसा हुआ तबका है, अल्लाह ताला उनके घरेलू हालात बेहतर फरमाए, उनके औलादों के अंदर तालीम और तरबियत का एहसास अता फरमाए, उनकी जो दरगुन हालत है वो बेहतर हो जाए। उस सिलसिले में हुकूमतों को बेहतरीन किरदार अदा करना चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात की कि अर्ज़ वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस सिलसिले में बहुत काम किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आपने सहाफियों के लिए बात की, तो सहाफियों क्या मैं इंतहाई इंतहाई क्रिटिक हूँ, मैं मुझे आप सहाफी कह देते हैं, हालांकि मैं हरगे सहाफी नहीं हूँ, दोस्त अहबाब मुझे सहाफी बना देते हैं, कॉलम लिखा करता था वो भी बंद कर दिया, किसी अखबार में एडिटर बना दिया गया, किसी में डिप्टी एडिटर बना दिया गया, दोस्त अहबाब की मोहब्बत की वजह से, लेकिन मैं हरगिज खुद को सहाफी नहीं मानता हूँ। सहाफत के लिए बहुत पैरामीटर जो है वो हासिल करने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं जाके इंसान सहाफी बनता है, और इस सहाफत को तो पैगम्बराना एक कहा गया है कि ये एक रिजस है, पैगम्बराना ये एक अमल है, एक ये रोजगार है, लेकिन मैं इस सहाफत का आजकल की दुनिया में मैं इंतहाई जहरीला किस्म का मैं क्रिटिक हूँ। मुझे सहाफत की दुनिया में फैला हुआ जो अजाब है, जो गलाजत है दुनिया भर में, मुझे उससे शदीद नफरत है, इसलिए मैं आप भी काबिल एहतराम है, लेकिन मैं हरगिज सवाए उन चंद 5 से 10% जो सहाफी अच्छा करदार अदा कर रहे हैं, उनके अलावा मुझे सहाफत से बहुत गिला है। अलबत्ता इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो सहाफी करदार अदा करते हुए जानों के नजराने पेश कर देते हैं, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है, खास तौर पे जंग जंग के हालात में। मैं अर्ज करता चलूं कि मैं इस अपने एक जहरीले क्रिटिकपन का जो है ये मैं खसलत अपनी छोड़ूंगा नहीं, उस वक्त तक जबकि पाकिस्तान के अंदर, हमारे अर्ज वतन के अंदर, जैसे अदलिया के अंदर गंद मचा हुआ था, गलाजत भरी हुई थी,
और दुनिया में बेशुमार

0: गहराई के अंदर, खड्डे के अंदर हम गिरे हुए थे। अगर शुमार किया जाए तो लिस्ट के अंदर हमारा बहुत गहरा कहीं जाके नीचे के नंबरों में जाके हमारा नाम था। तो इसी तरीके से हमारी सहाफत का अगर एक पैमाना बनाया जाए, लिस्ट बनाई जाए, तो दुनिया में इंतहाई गहरे खड्डे में गिरे हुए हम लोग हैं। सहाफियों से बड़ी बड़े अदब के साथ, माजरत के साथ सहाफियों को बहुत बेहतरीन किरदार अदा करना है, अपनी खसलत से बाहर निकल के अर्ज वतन के लिए, दीन इस्लाम के लिए किरदार अदा करना है। जी बहुत शुक्रिया
1: शागर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा मदलल जवाब दिया, अच्छा क्रिटिक किया। तो शाकर साहब, पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें तो आपने इशारतन तो आपने बता दी। सहाफ़ियों का काम तो बड़ा होता है, बड़ा करना पड़ता है, पैकेज जो होते हैं वो सारे वो चलाने पड़ते हैं। आपको पता है कि जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं वो बिके हुए प्रोग्राम होते हैं, तो फिर उसी तरह चलते हैं। तो इसीलिए फिर सहाफ़त को जो है वो लफाफा कहा जाता है, और लफाफा भी हमेशा वो सफ़ेद लफाफा होता है, बड़ा उसका एहतराम किया जाता है। और उस लफाफे के अंदर काजा रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो नोट भी हम आपको नज़र आते हैं, आपने भी देखे होंगे लोगों को देते, जो लोग देते हैं। तो शाकर साहब, आप कल्ट्स की बात करते हैं, तो इसके आपको जवाब, आपके जवाब को मैं उधर ला रहा हूँ, तो कल्ट्स की एक दफ़ा जो है सहाफ़त में भी कल्ट्स हैं।
0: बेशक सहाफत के अंदर, सियासत के अंदर, और मेरी मुझे, मैं मदद खा हूँ ये अल्फाज बोलने से पहले भी, कि यहाँ तक कि हमारी हमारे मजहब के अंदर, मजहब के अंदर जो है ना वो भी कल्ट्स पैदा कर दी गई हैं, और ये बहुत ही खतरनाक हैं। और क्योंकि जिक्र इस वक्त आप सहाफत का कर रहे हैं, तो सहाफत तो कल्ट्स का मारा हो चुका है, कल्ट्स का पाखंड हो चुका है। कल्ट का जो है एक एक वो क्या कहते हैं, हजूम हो चुका है, एक झुंड हो चुका है, कि ये झुंड की शक्ल में जहां जो इंटरनेशनल बैन अल-कौमी कौमी और सतह के ऊपर भी जो कल्ट पैदा करने के लिए जो फंड जनरेट किए जाते हैं, ये उस फंड को खाने के लिए, उस फंड का अपना हिस्सा लेने के लिए, नोचने के लिए, या मुल्क के खजाने को नोचने के लिए, और उस मुल्क के खजाने को नोचने के बाद आम जनता को नोचने के लिए, ये सफेद लिफाफे के अंदर जो चंद पैसे हैं, चंद नोट हैं, वो तो दूर की बात, ये तो खाना, एक वक्त का खाना खिला दें, एक वक्त की शराब पिला दें, एक गिलास से दो गिलास शराब पी के ऐसे मदहोश हो जाते हैं। ये कल्ट्स की जो ज्यादातर, ये सिर्फ सहाफत के अंदर जो ज्यादातर तादाद है, ये तो स्टोरी से तब्दील कर देते हैं, ये तो मुल्कों कौम की बेहतरी के लिए होने वाले काम को उल्टा करके पेश कर देते हैं। ये तो किसी किसी की तरफ से सिर्फ इनको पिक एंड ड्रॉप दे दी जाए कि मैं आपको पिक एंड ड्रॉप कर दूंगा, और फलां प्रोग्राम की आपने कवरेज करनी है, लेकिन कवरेज उसकी नेगेटिव करनी है, तो सिर्फ पिक एंड ड्रॉप पे, एक गाड़ी ने आपको उठाया, उस उठा के आपको चंद किलोमीटर के फासले पे जाके ड्रॉप कर दिया। ये उस क्या कहते हैं सहूलत का भी हासिल करके, सहूलत को हासिल करके तबाह बर्बादी पेश कर देते हैं। ये इंतहाई घटिया किस्म की खसलत है, और ये इंतहाई घटिया किस्म की गलीज जो हरकत है, ये हम खुद ही जो सहाफी हैं, हमारे काबिले सद एहतराम हैं अपनी अपनी जगह पे जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस घटिया खसलत से निकलना सिर्फ और सिर्फ तब भी मुमकिन है जब ये खुद इस चीज का एहसास करें कि हम ये घटियापन कर रहे हैं, हम इस पैगंबरी पेशे के साथ जुल्म कर रहे हैं, हम अपने मुल्क और कौम के साथ और अपने मजहब के साथ जुल्म कर रहे हैं, हम उन लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं जो दीन के, कुरान के खिलाफ जो जो फंड जनरेट करके तकसीम करते हैं, हम उन लोगों के साथ मिलके जाके बैठ जाते हैं उनसे अपना हिस्सा निचोड़ने के लिए, अपना हिस्सा बटोरने के लिए, अपना हिस्सा नोचने के लिए, हम अपने मुल्क की तबाही बर्बादी में हिस्सादार बन जाते हैं, और ये हमारी आंखों के सामने हमारे सीने के ऊपर मूंग तलते हैं। ये लोग अनफॉर्चुनेटली कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अभी चंद दिन पहले कुछ सहाफियों का एक कट था किस जगह के ऊपर, डिबेट हो रही थी ऑनलाइन, वहां बहुत सारे सहाफी बैठे थे, मैंने वहां भी अर्ज किया, वहां पाकिस्तान के मायानाज सहाफी जो सदर बने हुए हैं, मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, वो कानून दिया के बैठे हुए थे, मैंने उनके सामने भी अर्ज किया कि बंदा खुदा आपके जुम्मे ये काम दे दिया गया है, आपकी कलम से निकली हुई तहरीर को, आपके टीवी पे नशर किए गए किसी प्रोग्राम को या वीला को देख के हमारा हमारा जो मंशूर तय हो जाता है, हमारा जहन जो है वो नशनुमा पा जाता है, हमारा बयानिया जो है वो डेवलप हो जाता है, खुदा का वास्ता है अपने अपने हालातों वाकयात को ठीक करो। ये झूठ का मकारी का जो जो आप सौदा करते हो, जो प्रचार करते हो, उसको बंद करो। ये पैमरा ने जो कवानीन बनाए हैं उनका साथ दो, ये झूठ के पलंदे फैलाने वाले मुल्क से बाहर और मुल्क के बाहर जो बैठे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करो। तो क्या आप यकीन करेंगे राजा साहब, आपको और आपके सुनने वाले, जो सबसे बड़ा वहां हमारा सहाफी एक दोस्त बैठा हुआ था, मैं उसको दोस्त ही कहता हूँ, वो बर्मला कहता है, शाकिर साहब आपकी बात तो ठीक है लेकिन हम नहीं पाबंदी लगा सकते, ये जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है, दीन के खिलाफ अगर कोई झूठ बात कर रहा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कह सकते हैं आप उसको, वो अर्ज़-ए-वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, ख्वाजे पाकिस्तान के लिए, हमारे शहीदों के खिलाफ कोई बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो हुकूमतें हैं, हेड ऑफ स्टेट्स जो है दूसरे मुल्कों के, यूरोपियन यूनियन के, बरतानिया के, सऊदी अरेबिया के, यूएई के, कतर के, तुर्किया के लोग आपको आपकी हुकूमतों को बयान करते हैं, आपको इतला करते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ हरदासराई हो रही है, फलां फलां प्लेटफॉर्म से हो रही है, ये दुश्मन लोग हैं, खुदा के बंदे आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे कह सकते हैं, नहीं सर शाकर हम आपकी बात समझते हैं लेकिन हम कैसे इस चीज को रोक सकते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमाए इन लोगों को जो पैगंबरी शोभा का कलमदान लेके फिर रहे हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी इसके अंदर रोटी लगी हुई है जिसको आप लिफाफा कह रहे हैं, मैं लख दी लनत भेजता हूँ उस रिजक के ऊपर, मैं लख दी लनत भेजता हूँ उस लिफाफे के ऊपर जिसके अंदर कुछ रुपए डाल के, और मैं लख दी लनत भेजता हूँ लोगों के ऊपर भी जो लिफाफा उठा के उसको देते हैं और गलत काम करवाने के लिए देते हैं, मैं लख दी लनत भेजता हूँ जो शराब के दो पैग इनको पिलाते हैं और गलत काम इनसे करवाते हैं, मैं लख दी लनत भेजता हूँ उनको जो पिक एंड ड्रॉप इनको करवाते हैं और उनसे झूठ और सच बुलवाते हैं।
1: जी साहब, हम उस मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ये यूरोप है, एक ही तरह के तकरीबन कानून है, और आपने अपनी तंजीम बनाई, उसके बानी भी हैं, फिर तहरीके इस्तेकामे पाकिस्तान के चेयरमैन भी आप बरतानिया में, तो शाकर साहब ये जो सेठों का मीडिया होता है, ये बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, ये आप अगर देखें, अगर शुरू शुरू में देखें तो सहाफी बेचारा मजलूम होता था, गरीब होता था, वकील कमज़ोर होता था, मजलूम होता था, इतनी सी इनकम नहीं होती थी, चंद लोग होते थे, इसी तरह क्लर्क बड़ा कमज़ोर होता था, मजलूम होता था। शाकर साहब आज कौन सा सहाफी काम करता है 35-40 मिनट के प्रोग्राम में कि 60-50 लाख तनख्वाह लेते हैं, सहूलियात लेते हैं, सेठों से तनख्वाह लेते हैं, तो सेठों को सेठ जो है पैकेज कहाँ से लाते हैं, ये कट सो नहीं है सारे?
0: सर जी बेशक सारे कल्ट हैं, लेकिन ये सारे जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया, ये जो सहाफत का, सियासत का जो बुनियादी असूल है उसके ऊपर ही कारबंद नहीं है। मोहतरम राजा साहब, आपने मुझे कई दफा कहा और अपना हम ऑफ द रिकॉर्ड जब टेलीफोन पे होते हैं कि शाकर साहब आप दोबारा लिखना शुरू करें, शाकर साहब आप दोबारा कॉलम क्यों नहीं लिखते, सोचना मना है कि नाम से कॉलम मैंने उस दिन लिखना बंद कर दिया जब मुझे हमारी पार्टी ने बरतानिया का मीडिया सेक्रेटरी बनाया, मैंने कॉलम लिखना बंद कर दिया कि असूल के खिलाफ है सहाफत के भी और सियासत के, कि या आप सहाफी बन के रहो या आप जो ना सियासत में अपना किरदार अदा करो। और जिस दिन मैंने ये ओहदा कबूल किया, जो कि मेरे पीछे अगले जो पार्टी के लोग थे पिछले कई सालों से मेरे पीछे लगे हुए थे कि पार्टी का ओहदा संभाले बरतानिया का, मैं नहीं मान रहा था, मैं कारवानी फिक्र चला रहा था, मैं अपना सोचना मना है कॉलम में अपने जज्बात का इजहार किया करता था, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर मैं लंबी लंबी तकरीरें किया करता था, दोस्तों को बुला के इसलाह की तरफ ले बुलाया करता था, पाकिस्तान के फायदे के लिए, दीन के फायदे के लिए बुलाया करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने मीडिया सेक्रेटरी एक अपनी सियासी जमात का मैंने बरतानिया का ओहदा कबूल किया, तो उसके बाद मैंने कॉलम लिखना बंद कर दिया, उस दिन से लेकर आज तक बंद कर दिया है मैंने। मैं तजियात कार के तौर पर मैं आ जाता हूँ, बात कर लेता हूँ मैं, लेकिन कॉलम लिखना मैंने बंद कर दिया। क्यों? जब मैं फिर कॉलम लिखूंगा मैं अपने मुखालफों के खिलाफ लिखूंगा, जब मैं सियासत के अंदर चला जाऊंगा कोई ओहदा ले लूंगा, जैसे मैं कॉलम नगार बनकर सियासत सहाफी बनकर बैठा हूंगा, वो दूसरी तरफ मैं सियासत कर रहा हूंगा, ये असूल के खिलाफ है। और असूल के खिलाफ काम हमेशा जो कल्ट के लोग हैं वही करते हैं, और कल्ट के लोग वो हैं जो अंधे हो जाते हैं जरा से फायदे के लिए, सरमाए के लिए, फंड के लिए, और फंड वो जो कि अल्लाह ताला माफ करे बाज का जुकात फंड से आया फंड होता है, वो उसको भी नोचने के लिए चले जाते हैं ये लोग। तो सर वो लोग अब कहाँ मर गए, वो लोग अब कहाँ रह गए जो इन असूलों के ऊपर काम किया करते थे। आज तो पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, हम दोनों पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कश्मीर में चले जाए, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में चले जाए, हमारे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चले जाए, जो सहाफी है, जिस सहाफी ने थोड़ा सा किरदार अदा किया, जो बड़ा थोड़ा सा हो गया, वो मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहता है, वो सेनेटर बनना चाहता है, जो जिसका मीडिया हाउस है वो या तो वो हुकूमतें गिराते रहते हैं या फिर हुकूमत का हिस्सा बन के आके बैठ जाते हैं, वजीर बन के बैठ जाते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं, सेनेटर बन के बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। सर ये कल्ट नहीं है तो और क्या है?
1: शाकर साहब ये मीडिया हाउस डेवलप कैसे होते हैं और इतने तगड़े हो जाते हैं और ये अरबपति लोग होते हैं ये?
0: राय साहब मैं देखें, मेरे लिए आप इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं तो आपको तो मैं कम अज कम सहाफी समझता हूँ, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, आप सहाफत का अलम जो है बुलंद करके अपना किरदार अदा करते हैं, सच का प्रचार करते हैं, हक सच की बात करते हैं। अपना कभी आपने नफा नहीं देखा है, बल्कि बाज़ मैंने देखा बाज़ आप अपना नुकसान भी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ रह गए बाकी? अब ये जो आपने सवाल किया है कि ये बन कैसे जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे समेत बाकी सब लोगों को शामिल कीजिए, आपके सुनने वाले जितने अपने गिरेबान में आंखें झुका के रखिए, अपने गिरेबान में चेक करें, हम लोग इनको बना देते हैं बहुत बड़े बड़े माफिया। हम अपनी जेबों को टटोले, हम अपने गिरेबान में देखें, हम अपने किरदार को देखें, हम अपने रवैयों को देखें, अपनी सोच को देखें, हम बना देते हैं इनको बहुत बड़े बड़े बड़े जो क्या कहते हैं ये अल्लाह ताला माफ फरमाए जो बदमाश। भाई जब हम इन लोगों को जानते हुए भी कि ये रस्सागीर लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं, इन्होंने इन्होंने फज और फ्रॉड से पैसा इकट्ठा किया है, आज ये मीडिया हाउस बना के बैठ गए हैं, तो क्यों हम उनका साथ देते हैं, क्यों हम उनको अप्रिशिएट करते हैं? भाई आपको कितनी दफा ये तजर्बा हो चुका कि ये जो बन जाते हैं मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, फिर ये अपनी महफिलों में अपनी चाय की प्याली पे बुला के हुकूमतें तब्दील करने का दावा करते हैं ये, और हम लोग हम में ये हमारा जो कॉमन पीपल जो है वो हम सबसे पहले, मैं सबसे पहले हूँ, फिर उसके बाद हमारी सियासी जमातें हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए इन लोगों से अपना एयर टाइम या अखबारों के अंदर अपना स्पेस हासिल करने के लिए इनको गवर्नमेंट के फंड से एक्ट चेकर से पैसा भी देते हैं, इनको बैकअप भी देते हैं, इनको इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जुल्म आपकी आंखों के सामने हो रहा है।
1: शाकर साहब आते हैं कि पाकिस्तान में आज बड़ा चर्चा, पहले ताहिर अशरी साहब की बात कर सकते हैं कि आपके शहर में जो गए बरतानिया में गए हुए थे तो उनके साथ किसी ने सवालात किए, फैमिली के साथ थे, तो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं?
0: मैं समझा नहीं, किसका जिक्र किया आपने?
1: ताहिर अशरी साहब जो है ना।
0: जी ताहिर अशरी साहब के बारे में आप, मैं जज्बात में इस वक्त पीक पॉइंट पे, मुझे काइंडली आप माफ कीजिए, मुझे उनके बारे में कुछ मत कहने दीजिए। मेरी मेरी मेरे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हमारी जितनी भी मजहबी इस्लामी जो तंजीमें हैं उनके उनके वो स्पोक्स पर्सन और बाद का गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन बन के बैठे होते हैं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए मैं कुछ ऐसी बात कर दूंगा तो असल बात यह है कि मैं अपने मुंह पे चपेड़े थपेड़े मार चपड़ मारूंगा, उसका जिक्र जाने दीजिए। कुछ
1: आगे बढ़ते हैं, अपना जिक्र करते हैं कि शाकर साहब ये देखें कि जब भी सियासी जमातों, बड़ी बड़ी सियासी जमातों की मैं बात करूंगा, उनके कायदीन जब बड़ी बड़ी सीटों पे चले जाते हैं, आपको नज़र आता है या दूसरों को नज़र आता है कि सारे वर्कर जो होते हैं को अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, कुर्सियां उठाते हैं, रखते हैं, एक माहौल बनाते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि वो लीडर अपने वर्कर को नहीं देता तो नवाजते वक्त किसी और को नवाज देते हैं, तो फिर दावा होता है जमहूरियत का। ये कैसी जमहूरियत है, कैसी लीडरशिप है?
0: ये बहुत जुल्म वाला सिलसिला है और बड़ा ही तकलीफ देह है। देखिए जो एक सियासत है ये बाकायदा तौर पे एक साइंस है पूरी, बाकायदा तौर पे आप तो लोगों ने इनको कारोबार और इंडस्ट्री कहना शुरू कर दिया है, लेकिन सियासत जो असल में देखा जाए तो वो मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए सियासत की जाती है। जो उसकी कोई भी आप शक्ल आप ले लीजिए, कोई भी उसकी फॉर्म आप ले लीजिए, डेमोक्रेसी है या कोई और तरीका है सियासत करने का, लेकिन सियासत को अगर देखा जाए तो मुल्क और कौम यानी अवाम, मुल्क को कौम की खिदमत करने को सियासत कहते हैं और ऐसा काम करने वाले को सियासतदान कहते हैं। सियासतदान का सबसे पहला जो एक मरबा होता है, जो सबसे पहला उसका जो टूल हथियार होता है वो ये है कि वो कैसे लोगों की हमदर्दी अपने लिए हासिल करता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसका जो मंशूर है, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसका उसके जो वादे वईद हैं, वो कैसे लोगों के अंदर हमदर्दी अपनी पैदा करता है, उसके मंशूर को देख के, उसकी तकरीर को सुन के, उसके वादों को सुन के कि आने वाले वक्त में मैं ये काम करूंगा, लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, लोग उसके सपोर्टर पहले बन जाते हैं, बाद में उसके कारकुन बन जाते हैं, बाद में उसके साथी बन जाते हैं, बाद में उनके कैबिनेट मेंबर बन जाते हैं या कबीना के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस सियासत के यहाँ तक तो जो काम है वो बेहतरीन है कि मुल्क कौम की आवाम की खिदमत करनी है और लोगों को अपने मंशूर की तरफ मुतवजा करना है अच्छी अच्छी बातें करके, यहाँ तक तो सब बात ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे जब हम लोग आम जो वोट देने वाले हैं, जो सबसे पहले उस सियासतदान के या सियासी जमात के बनते हैं खैरख्वाह, उसके प्रमोटर, उसके साथ तावन करने वाले, उसको वोट देने वाले की नियत कर लेते हैं इस दफा हम इसको वोट देंगे, उससे अगले स्टेप पे कुछ लोग उसके कारकुन बन जाते हैं, उसके जलसों में जाके कुर्सी ऐसी देखनी शुरू करते हैं, आवे आवे जावे जावे उसके पीछे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं। वो कारकुन जो है वो फिर सियासी रहनुमा बन जाते हैं, सियासी रहनुमा से उनको टिकट मिलती है, मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, कबीना कैसा बन जाते हैं। देखिए जो मेहनत करेगा मुल्को कौम के लिए उसको तो फायदा मिले तो बेहतरीन है, लेकिन हालातों वाक्य ये हो चुके हैं कि रस्सागीर जो है इसमें ज्यादा शामिल होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तादाद 20% और 80% की होती तो काबिल बर्दाश्त थी, 30% 70% की होती काबिल बर्दाश्त थी, अनफॉर्चुनेटली ये तो 50% से ज्यादा रस्सागीर हो चुके हैं। बाकी बेचारे थोड़े से लोग हैं जो मुल्को कौम की आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, जो अपने फवायद के लिए नहीं, अपने घर को कोठियों में और रेस्ट हाउसों में और बड़े बड़े फार्म हाउसों में कन्वर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए नहीं, वो सिर्फ लोगों की हमायत के लिए, लोगों के हालातों वाकई को दुरुस्त करने के लिए और मुल्क को कौम का परचम को सर बुलंद करने के लिए आते हैं। और ये रेशो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती जा रही है और वक्त वो उस वक्त से हमें डरना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, आपके सुनने वालों को उसके ऊपर गौर करना चाहिए जो वोट कास्ट करते हैं, कि वोट कास्ट करने से पहले वो किसी बाजार से कोई सब्जी लेने चले जाएं तो उसको उठा उठा के देखते हैं, बार बार चुनते हैं, कोई घर में पेट पालने के लिए लेके चले जाएं तो उस पेट के बारे में बड़ी तहकीक करते हैं, इसका खानदान क्या था, नस्ल क्या था, इसके दांत कैसे हैं, इसके फलां क्या है, ठीक है। लेकिन जब सियासत में आप आते हो, मेरे जैसे लोग भी अंधाधुंध जो तकलीद करते हैं, तो इस बारे में जब तक अवाम की सोच बेहतर नहीं होगी, जब तक अवाम ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तब तक ये हालातों वाकया ठीक नहीं होने। हाल बता जिस तरफ का इशारा आपने किया कि सियासतदान फिर जब गैर मुतल्लिका लोगों को जिन्होंने कभी कोई मेहनत भी नहीं की होती उन पैराशूटर को जब जब अपना मुकाम दे देते हैं तो वहां भी कल्ट्स काम आती हैं। अपना मेरे मोहतरम राजा साहब, वहां भी कल्ट्स, और कल्ट्स के पीछे से जो बैठे हुए जो बड़े बड़े जो कड़ियां लड़ियों को हलाने वाले, इनकी इनकी पीछे से इनको बना के शोभदाबाज जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। किसी का सिफारशी लेटर आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, किसी की अचानक सिफारिश आ जाती है, कोई कोई बहुत बड़ा बैंक उसकी सिफारिश कर देता है, कोई बहुत बड़ी तंजीम उसकी सिफारिश कर देती है, कोई इंटरनेशनल लेवल से कोई जो रिलेशनशिप है वो उसकी सिफारिश कर देती है, वो पैराशूट की तरफ नाजर हो जाते हैं। तो यहाँ भी आके अगेन वही बात राजा साहब जो मुझे और आपको तकलीफ देती है कि कल्ट फिर दोबारा कार फरमा होती है। यहाँ आके उस सियासी जमात के जो बड़े हैं, सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनको ख्याल करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो मुल्क और कौम के खैर ख्वाह हैं उनको छोड़ के इन दगड़ दगड़ के दलालों को क्यों वो मौका दे देते हैं, क्यों अपनी जगह अपने स्पेस बनाने का मौका दे देते हैं। और ये कल्ट जो है इन्हीं बहानों से, इन्हीं हीले बहानों से, इन्हीं पैराशूट के जरिए से आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर, आपकी अदलिया के अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, आपकी सियासत के अंदर, आपके अफवाज के अंदर, आपकी सहाफत के अंदर ये कल्ट के अपने एजेंट जो है वो इंडक्ट कर देते हैं। और एक दफा इंडक्ट होने के बाद क्योंकि मैनू माल दिखा तेरा मेरा मूड बने, पैसा जो है फिर पहियो लगते हैं नीचे, केस के ऊपर पहियो लगते हैं, ये कल्ट के कारिंदे पीछे अपना धंधा लेके आते हैं, पीछे अपना धन लेके आते हैं, पीछे ये फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं और एक वक्त आता है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये माफिया बन जाते हैं।
1: आपने बड़ा अच्छा इसका तजिया किया, बल्कि पोस्टमार्टम किया। शाकर साहब, ये पिछले जो चंद माह चल रहे हैं अपना अमेरिका और ईरान के तालुकात पर डेफिनेट आपकी गहरी नजर है, पाकिस्तान को मेजबानी का मौका मिला, इन्होंने जोड़ने की कोशिश की, सुलह कराने की पूरी पूरी कोशिश की और अभी तक कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया में बड़ा नाम है पाकिस्तान का, फौज का, आसिम मुनीर साहब का। यूरोप कभी इस तरह किसी की तारीफ नहीं करता, पहले कहते थे कि यूरोप जब किसी की तारीफ करे तो उस मुल्क का होता नहीं है, लेकिन अब जो हकीकत हमें सामने नजर आई है, जो कुछ हमें देखने को प्रैक्टिकली मिल रहा है, तो शाकर साहब इन चीजों को आप किस तरह देखते हैं?
0: राय साहब, बहुत ही शानदार एक वक्त गुजरा है और हमने यहाँ सोशल मीडिया की दुनिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान ओवरसीज फॉर्म और कारवाने फिक्र के प्लेटफॉर्म को लेके इसकी बुनियाद पे इसके जरिए तमाम आज भी अभी आपसे बातचीत करूंगा तो 4:30 बजे बरतानिया टाइम, 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्विटर के ऊपर फिर दोबारा हमारी स्पेस है, इन्हीं चीजों को लेकर हम डिस्कस करते रहते हैं। पिछले साल हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमारे उम्मत के इब्राहिम की तलाश जो है वो जो बहुत जरूरी हो चुकी है, खलीज का मुतहद हो जाना वो जो बहुत जरूरी हो चुका है, खलीज के दरमियान जो खलीज पैदा हो चुकी है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ये तमाम 57 इस्लाम ममालिक जो है इनका इकट्ठ हो जाना, मुतहद होना बहुत बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे मुस्लिम ममालिक जो है छोटे हैं, बड़े हैं, कमजोर हैं, ताकतवर हैं, ये आखिर इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? सब ने अपनी डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिद क्यों बना रखी है? हमने ये आवाज बुलंद की, पूरा पूरा महीना हमने उसके ऊपर स्पेसिस की, बहुत दूर तक हो गई, हजारों की तादाद में लोगों ने हमारी स्पेसिस को अटेंड किया, आज भी कर रहे हैं, कल भी की थी, कल बलोचिस्तान के हमारे आए हुए थे हमारे एक स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, आज भी इंशाल्लाह मेहमान तशरीफ लाएंगे। हमने ये आलम बुलंद करके रखा हुआ है कि जो कुछ इस वक्त मुस्लिम दुनिया में हो रहा है हमारे मुस्लिम ममालिक की अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हो रहा है, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है, अब हमें मजीद और कोई गलती नहीं करनी। और इसका नतीजा आज ये निकला है कि हमारे मुस्लिम ममालिक के दरमियान अब ये बात जोर पकड़ चुकी है कि एनफ इज एनफ, अब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, अब हमें अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए, अब हमें किसी को आप अपना लीडर मान के उसके पीछे लगना चाहिए। तो आज आपने जो ईरान और अमेरिका की जंग की बात की, हरगिज इसमें जो लोग ये समझते हैं कि अमेरिका इसमें कामयाब हुआ है, हरगिज कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका को बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, अमेरिका को हर दफा शिकस्त हुई है, इस दफा भी शिकस्त हुई है, और शिकस्त बड़ी बड़ी ही तकलीफ दे शिकस्त उसको हुई है। कहां वो मुल्क को मस्मार करने आया था, कहां वो इस पूरी सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद करने आया था। नो डाउट उसने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन सिर्फ इसलिए नुकसान पहुंचाया कि ईरान के हाथ और पांव बांध रखे हुए थे 50 सालों से। ईरान के हाथ और पांव बांधने के बावजूद उस बंधे हुए हाथों के साथ, उन बंधे हुए पैरों के साथ उसने आपको मुकाबला करके दिखाया, ना ही वो सिविलाइजेशन को तबाह कर सका, ना ही वो मुल्क को तबाह कर सका। 20 लाख ईरानियों ने अपने नाम जो पेश कर दिए हैं, रजिस्टर अपने आप को करा दिया है कि अमेरिका की जंग के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, हमें शहादत कबूल है, हम अपने मुल्क को जो है सरनगू नहीं होने देंगे। ईरान का हर शख्स जो है, जो जो जो इस वक्त ईरान को, ईरान की हिफाजत कर रहा है, उनकी आंखों के अंदर आप जोश देख लीजिए, उनके चेहरे के ऊपर आप एक जज्बा देख लीजिए, उनके बयानात के अंदर एक हौसला देख लीजिए। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वहां 35-40% जो कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, जो ईरान के अंदर इस्लाम नहीं चाहते हैं, जो ईरान के बजाय, जो ईरान की हुक्मरानों की बजाय अमेरिका नवाज है, जो जो इसराइल नवाज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं यहूदी नवाजों की या हिंदुत्व नवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो बाकी बचे हैं, उन्होंने ऐन उस वक्त जब उनके सरों के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, उन्होंने खुले मैदानों में खड़े होकर साबित कर दिया कि हमें किसी अपने मौत की कोई डरो खौफ नहीं है। आज वो इतनी बड़ी ताकत जो कि दुनिया भर को अपने दुनिया भर को ब्लैकमेल करती है, जंग के अंदर झोंक देती है, इजराइल और अमेरिका दोनों इस वक्त शिकस्त खोरदा है, दोनों के मुल्क के अंदर बहुत पहली दफा ऐसे हुआ है कि इसने हमला किया है, हमले का जवाब दिया है, उन मुल्कों के अंदर भी मिसमार किए गए हैं, इमारतों को औरों को बर्बाद किया गया है, उनके नेटवर्क को बर्बाद किया गया है, उनके अमेरिकन उनके फौजी सिस्टम को बर्बाद किया गया है, उनके आर एन डोम को बर्बाद किया गया है, उनके सेफ्टी को बर्बाद किया गया है, उनके बंकर को बर्बाद किया गया है, उनके बड़े बड़े जो नेतन्याहू जैसे बड़े बड़े जो उनके खानदान के ऊपर हमले किए गए हैं। आज अमेरिका पहुंचा है तो कहाँ पहुंचा है? बेशक पाकिस्तान की जो मीडिएशन की वजह से पहुंचा है कि आप नए हर्मज के ऊपर वो कहता है कब्जा मेरा होना चाहिए, मेरी मर्जी के बगैर वहां कोई जहाज ना आगे पीछे ना जाए। ये क्या जंग है, ये कहां से उसने चलाई और कहां पहुंची? और आज से चंद हफ्तों के बाद यहां से भी वो पीछे हटेगा, नो डाउट। इस वक्त एन एस जब मेरी और आपकी बात हो रही है, मेरे मुंह में खाक, खबर ये है, मालूम ये है, कड़ी से कड़ी के जोड़ू तो आइंदा चंद दिनों में फिर दोबारा बहुत बड़ा हमला, शदीद किस्म का हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। और उसके लिए इसराइल ने पिछले ये चंद दिनों में, जिन दिनों में ये बंद की गई, जंग बंद की, उसने अपने आप को फिर दोबारा उसने अपने आप को इकट्ठा किया है, उसने अपने वसाइल में, जंगी वसाइल में उसने इजाफा किया है। खबर ये थी कि उसने सारे इसराइल के अंदर उसने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसने असला इकट्ठा कर लिया है, मिसाइल इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन ईरान के सामने वो नहीं खड़े हो पाएंगे। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ईरान की मदद के लिए, अल्लाह की मदद के अलावा बेशुमार मुल्क उसकी मदद के लिए खड़े हो गए हैं। अमेरिका की मदद के लिए कोई नहीं आया, इसराइल की मदद के लिए सिवाय इंडिया के वो कोई नहीं आया, लेकिन इंडिया का मोदी भी सिर्फ मदद कर सका तो उसको जाके अपना बाप बना के इंडिया को उसने माँ बना दिया, मदर ऑफ बना दिया, उसको बाप, इसको मदर। और अल्लाह ताला माफ फरमाए, नफरत की हद तक उसके अपने लोगों ने इससे नफरत की है कि तुमने जाके इसराइल को मां, अब हमें इंडिया को मां क्यों बनाया, उसको बाप क्यों बनाया। तो ये नफरत का के इंतहा जो है अमेरिका के हिस्से में आई है, इंडिया के हिस्से में आई है, उसके इसराइल के हिस्से में आई है। और ये वक्त साबित करेगा कि आज जितना असला अगर अमेरिका ने दोबारा इकट्ठा कर लिया है, इसराइल ने अपना सारा इसराइल जो है अपना डिपो बना दिया, असले का डिपो बना दिया है। तो याद रखिए ईरान के पास वो सोफिस्टिकेटेड जो ड्रोन्स हैं उस असले के डिपो को जाके बड़ा आसानी उसको उसको तहस नहस कर देंगे। आने वाला वक्त इसको बताएगा, लेकिन आज तक इस वक्त तक जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ईरान जो है वो फातेह है। कैसे फातेह पाकिस्तान हुआ इंडिया के खिलाफ? आज ईरान ने साबित किया इतनी बहुत बड़ी माइट के खिलाफ खड़ा होके उसने शिकस्त नहीं होने दी अपने मुल्क की, अपने सिविलाइजेशन की, अपने लोगों की। अल्लाह ताला का ये फजल करम उन पर जारी सारी रहे। उम्मत मुसलमा के अंदर जो होने वाली गलतियां कुतियां हैं, अल्लाह ताला
1: इन शाकर साहब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है?
0: पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से ईरान के साथ खड़ा है, और एट द सेम टाइम ईरान की जंग के साथ साथ अफगानिस्तान की जंग इस वक्त भी लड़ा है। कल रात को भी वहां हमले हुए, परसों रात को भी हमले हुए, मुसलसल ईरान के ईरान पाकिस्तान को ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ जंग करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ उनके जो उनका जो सिंदूर था उस सिंदूर के हमले को तबाह बर्बाद करके आज हम 1 मई से लेकर 10 मई तक हम मुसलसल जश्न मना रहे हैं, जश्न बनियान और मसरूर मना रहे हैं। इस पर सारा पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे वजीर आजम और हमारे फील्ड मार्शल जो है पूरी कौम को लेके जश्न मना रहे हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। हमने यहाँ स्पेस की दुनिया में इंटरनेट की स्पेस दुनिया 1 मई से लेके मैंने अपने साथियों के साथ ऐलान कर रखा है कि हम जश्न बनियान और मसरूर मनाएंगे। और हमारा जो मार्का है जो है वो मुसलसल चल रहा है, कभी वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारा मार्का हक चल रहा है, कभी हम बलूचिस्तान में इंडिया के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, इधर से हम ईरान की मीडिएशन करके वहां भी हमारा पूरा पैरा है अल्लाह ताला के फजल करम से। पाकिस्तान में इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की पिछले साल मई में, आज एक पूरा साल गुजर गया है, आज हम सालगिरह मना रहे हैं, आज हम जश्न मना रहे हैं पूरा पाकिस्तान और आपके सुनने वाले जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है वो इस जश्न का हिस्सा बन जाए। और जो लोग किसी वजह से, किसी कल्ट की वजह से वो जो नहीं बनना चाहते, तो वो भी कोई बात नहीं, अपना करदार जारी रखे, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। कोई हिंदुत्व के साथ मिलके, मोदी के साथ मिलके, यहूदियों के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके कोई पाकिस्तान के खिलाफ अर्जासराई करना चाहता तो करता रहे, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। वो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं वो अल्फाज यहाँ आपके रेडियो पे नहीं बोल सकता हूँ, मेरे ट्विटर के मेरे अकाउंट पे जाकर देख लीजिए, मैं जो लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ सादा लफ्जों में, दगड़ दगड़ के दलालों का इंशाल्लाह मुकाबला हम कर लेंगे। जो दगड़ दगड़ में जाके रखने वाले लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर हैं, उनका इंशाल्लाह बहुत बुरा अंजाम होगा अल्लाह ताला के फजल करम। ये रहे साहब,
1: शाकर साहब, पाकिस्तान में बड़े काम हो रहे हैं जो हम देखते रहते हैं अखबारात में, मीडिया पे देखते हैं। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं, जो चीज़ें हम खुद जानते हैं, ज़ाती तौर पर जानते हैं, बड़े बड़े मनसूबे हैं, अरबों खरबों के मनसूबे हैं, और कोई इख्तलाफ नहीं हो रहा। शुरू में लोगों ने किया, मैं अगर पिंडी शहर की बात करूं, जो पुल बन रहे हैं, चीज़ें अंडर पासिस बन रहे हैं, सब जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चेक एंड बैलेंस क्या होगा? मनसूबे सारे अच्छे हैं, मुकम्मल भी टाइम से हो रहे हैं, वक्त से पहले मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो जिसे कहते हैं आप, वो क्या रगड़ दल्ले जिन्हें आप कहते हैं, कल्ट्स कहते हैं, फिर उस निज़ाम को, वो चीज़ों को तबाह करने के पीछे पड़ जाते हैं। इसको कौन रोकेगा? देखे ना, बरतानिया में सड़क बनती है तो उसका चेक एंड बैलेंस है, फिर बनेगी, फिर ठीक होगी, हर वक्त वो ठीक करते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन इसका जो है बैकअप क्या होगा?
0: हमारे पाकिस्तान के अंदर इन तमाम अच्छे काम जो हो रहे हैं मुसलसल हो रहे हैं, और अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपको बताऊं कि आज इस वक्त पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई पैक्ट करने के बाद हमारी पूरी ब्रिगेड जो है सऊदी अरेबिया के हरमैन शरमैन की हिफाजत के लिए पूरी अपनी ताकत, अपनी माइट के साथ, एयरफोर्स के साथ, तैयारों के साथ, टैंकों के साथ वहां पहुंच चुकी है। उसके बाद ये बिल्कुल हो चुका है, फैसला हो चुका है, इराक ने हमें दावत दी है, हम वहां भी सेम उस तरीके से दिफाई पैक्ट में जा रहे हैं। और उसमें उसके बाद इराक ने खुद पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान, इराक के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस बनाए पूरा, हमें हमसे उन्होंने जेएफ थंडर का फ्लीट मांगा हुआ है। राजा साहब, दुनिया के कौन से ममालिक हैं इस्लामी दुनिया के अलावा भी, चीन और चीन के अलावा दीगर जो दूसरे नॉन मुस्लिम ममालिक हैं, अलजायर ने, मराकश ने, सोमालिया ने, सूडान ने, बरतानिया ने, चाइना ने किया 4-5 दफा, बांग्लादेश ने, तुर्किया ने, जी ये ईरान ने किस किस मुल्क का, मैं आपको नाम लूं, जिन्होंने तराने बना के नशर कर दिए हैं, अमेरिका से इंग्लिश के अंदर तराने बन के पाकिस्तान के नशर हो रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए, जिनके खिलाफ इन दगड़ दगड़ के दलालों ने बेनतहा हर्जा चराई की, बेनतहा बेहरमती की। आज पाक अमेरिका का जो सुपर पावर अपने आप को समझता है, उसका जो सदर है वो बार बार पाकिस्तान की तारीफें करता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफें करता है, वही मुल्क जहां इन दगड़ दगड़ के दलालों ने फील्ड मार्शल आसम मनीर के खिलाफ वहां बेनतहा हर्जासराई की, बेनतहा दर्दनाक किस्म की, जो कि गजबनाक किस्म की, जिससे हमारी हमें बेचैनी बेशुमार होती थी, उनके हाथों के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर खून लगा के, वहां मोबाइल ट्रकों के ऊपर उनके वीडियो चलाए गए, बगैरती की इंतहा की गई, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान की हर्जासराई की गई, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले करवाए गए, पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उनको बंद कराने की कोशिश की गई। आज वही शहबाज शरीफ, आज वही फील्ड मार्शल आसम मनीर अफवाजे पाकिस्तान, हमारा एयर चीफ जो है, वो अल्लाह ताला के फजल करम से जहां दुनिया में जाते हैं, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो इराक है, चाहे वो लीबिया है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो बहरीन है, चाहे वो मस्कत है, चाहे वो यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, चाहे वो सूडान है, चाहे वो जहां जहां का भी आप नाम ले, मुझे बताएं कहां कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में हमारी हमारी बाबका तरीके से हमारी हमारा वेलकम नहीं हो रहा। आज से चंद महीने पहले, 2-2.5 साल पहले, ए दगड़ दगड़ के दलाल जो थे पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़ के आग लगा के फेंका करते थे और गालियां निकाला करते थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, अफगानों के साथ मिलके और हिंदुत्व के मोदियों के साथ मिलके, बगैरतों के साथ मिलके, आज उसी पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके जो गैर पाकिस्तानी है, जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे मुल्कों के लोग है, वो अपने पासपोर्ट के साथ जोड़ के पाकिस्तान, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। राजा साहब, इससे ज्यादा मैं आपको और क्या बताऊं कि इंडिया के अंदर, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उनके पार्लियामेंटेरियन जो मोदी के मुंह पे थप्पड़ मारे, बेशुमार थपेड़े उसको पड़ रहे हैं और उसको कहा कहा ये जा रहा है तुमने ये संदूर किया तो क्यों किया, वहां पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए लोग जो है, और उसका जो गोदी मीडिया है उसके अंदर जो आप बात देखिए क्या हो रही है, गोदी मीडिया के अंदर इतनी बड़ी करवट आई है कि मीडिया के अंदर लाइव टेलीकास्ट के अंदर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो दूसरे को रोक देता है, खबर दे बकवास बंद करो, झूठ मत बोलो। वहां के व्लॉगर जो है इंडिया के, वहां के अंदर के ये कह रहे हैं कि हमें आज तक ये गलत सबक पढ़ाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ बिला वजह हमें दुश्मनी करवाई गई, ये पाकिस्तान तो इंतहाई अच्छा मुल्क है, और हमने आज तक जितने पुलवामा से लेके, पहलगाम से लेके, हमने वो ताज होटल तक जितने भी सारे कराए, सारे के सारे उन्होंने खुद कहा, इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये सारे के सारे फॉल्स फ्लैग थे, उनकी फिल्में जो थी उनके गले का तोक बन गई, उनकी उरी फिल्म जो थी उनका गले का तोक बन गई, उनकी ये दुरिंदर फिल्म अभी थोड़े दिन पहले जो बनाई है उनके ऊपर उनको गालियां पड़ रही है, उनके बहुत बड़े बड़े सहाफी जो है वो बना रहे हैं। मैं थोड़े दिन पहले उनके लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था हमने बहुत गलती की और पाकिस्तान हमसे बहुत आगे जा चुका है। ये अल्फाज जो है पाकिस्तान के किसी शख्स के नहीं है, और मुझे अफसोस होता है राजा साहब, मेरे समेत, आप समेत, हम अपने पाकिस्तान की इस फतह को कोई सेलिब्रेट नहीं कर सके। हम वहां से वो गोबर आर्या जैसा एक शख्स जो था, वो बख्शी जैसा एक, वो बड़ी मूंछों वाला एक जनरल जो था, बैठ के वहां से बैठ के पाकिस्तान को गालियां निकाले करते थे, आज उनके चैनल के लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं कि तुम बदबख्त हो, तुम बेगैरत हो। अभी थोड़े दिन पहले एक खातून ने वहां बैठे लाइव शो में कहा कि इस गोबर आर्या को इंडिया के मिसाइल के साथ बांधो और इसको इसराइल की तरफ फेंक दो, ये जहां वहां जाके फटे जाके। ये इस कदर शदीद नफरत वहां इंडिया के अंदर से उठी है हमारे बनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद, उनके जो सुरेंद्र संदूर था उसकी नाकामी के बाद, और आज वो जख्मी सुवर की तरह वो करवटें बदलते हुए फिर दोबारा पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वीडियोस बना के कहते हैं ये हमारा संदूर खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान पे हमला दोबारा करेंगे, करो आज हमला। मेरी आज की स्पेस का टॉपिक ये ललकार है, हम तुम्हारा तहस तहस करके रख देंगे, हम सीसा पलाई दीवार है।
1: शाकर साहब अपने टाइम इजाजत नहीं दे रहा, हमारे पास 2 मिनट हैं, थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। शाकर साहब, जो हमारे साबका वजीर आजम ट्रंप से मिलकर आए थे तो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने दोबारा वर्ल्ड कप जीता है, उनका अब चूंकि वो जेल में इस वक्त, उनका मुस्तकबिल क्या है?
0: मैं लानत बेशुमार भेजता हूँ इसके ऊपर अपने अपनी जुबान खोलने की बजाय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आज इस वक्त चाइना की मदद से हम आप दोज हासिल कर चुके हैं, और अगली हमारे पाकिस्तान के अंदर वो बनाई जाएंगी। JF थंडर 17 के बाद हमें S-35 मिलने जा रहे हैं अमेरिका वहां तुर्किया से। कान का तैयारा जो है वो हमें मिलने जा रहा है, और कान के तैयारी की पूरी फैक्ट्री पाकिस्तान आ रही है। आप दोनों की फैक्ट्री पाकिस्तान लगने के लिए शुरू होने जा रही है। तुर्किया ने हमें 2 बहरी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट बना के दिए, तीसरा बहरी जहाज पाकिस्तान के अंदर बनने जा रहा है। चाइना ने हमें अभी थोड़े दिन पहले नेवी को हमारा बहुत बड़ा एक बहरी जहाज बना के दिया, दूसरा भी बना के देंगे, लेकिन दूसरा बहरी जहाज जो बनेगा पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री उसकी लगेगी। पाकिस्तान ने, ईरान ने और तुर्किया के साथ मिलकर आप हमारे ड्रोन्स का बनाने की एक नई फैक्ट्री यहाँ लगाने का प्रोग्राम बनाया है। पाकिस्तान इस वक्त सैटेलाइट के जरिए से स्पेस में जा चुका है, 3 हमारे सैटेलाइट वहां का इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे 2 जो एस्ट्रोनॉट हैं वो चाइना की मदद से खला में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हमारे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि हम अनकरीब अगले 5-7 सालों में चांद का मिशन भी हम अनाउंस करने वाले हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के लिए शानदार किस्म के जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ रेगिस्तान को वहां कन्वर्ट कर दिया गया है ज़राअत के अंदर, वहां टनल के जो जो हार्वेस्टिंग हो रही है वहां वो कामयाब हो चुकी है। चाइना ने हर एकड़ जमीन SIFC के जरिए से लेके वहां प्रोडक्शन शुरू कर दी है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान, चाइना और कोरिया के साथ हमारा जॉइंट वेंचर जो बना है वो आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरीन ज़राई टूल जो है वो दोबारा पाकिस्तान की काश्तकारी में लेके आ रहे हैं, छोटे टूल्स और साथ हमारे रोबोटिक जो ऑपरेशन होने शुरू होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने बीज अपनी खादें बनाना शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई है, सेमी कंडक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने अपने नाम के साथ, मेड इन पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के अंदर अपने टीवी, अपने फ्रीजर अपने एयर कंडीशन बनने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर 40 जगहों के ऊपर तुर्किया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, कोई 40 जगहों पे ऊपर उनके बहरी जहाज आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, समुद्र के अंदर और जमीन के अंदर वो गैस और तेल जो निकालने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हजारों नहीं लाखों की तादाद में जो क्वांटिटी है वो गैस की और पेट्रोल की जो कुएं वहां जो नए खुद रहे हैं। गूगल पे सर्च करना शुरू कीजिए पाकिस्तान के अंदर किस कदर शानदार काम किए जा रहे हैं। राजा साहब, चंद महीने पहले, 2 साल पहले आपके स्पेसिस के अंदर यहाँ कहा जाता था कि पाकिस्तान टुकड़े होने जा रहा है, कहा जाता था पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होगा, नहीं हो चुका है, कहा जा रहा था पाकिस्तान का हाल जो है श्रीलंका से बुरा होगा। आज ये सारे के सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से आपके अजली दुश्मन, दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन वहां का इंडिया है, वो सर झुका के पड़े पड़े बैठा हुआ है, इसराइल आपसे खौफजदा है। हमने अल्लाह ताला के फलो क्रम से सूडान को भी F-17 दे दिए, हमने अजरबैजान को भी दे दिए, हमने सोमालिया को भी दे दिए, हमने तुर्किया को भी दे दिए, हमने इंडोनेशिया को भी दे दिए। हम इस वक्त कतर के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे पीछे इस वक्त इराक आया हुआ है, हमारे पीछे इस वक्त अपना बांग्लादेश आया हुआ है।
1: शाकिर साहब, आप टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक जो होता है ना वो ईमानदारी की फैक्ट्री कब लगेगी?
0: ईमानदारी की फैक्ट्री हम अगले प्रोग्राम फिर लगा देंगे, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा।
1: बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जज़ाकअल्लाह खैर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद
1: जिंदाबाद। सामान्य नाज़रीन, ये थे शाकिर कुरैशी साहब जो के फ़ज़ाओं में हमारे पास साथ बात कर रहे थे, बड़ा खुल कर तजिया करते हैं, बोर्ड बोलते हैं और अपनी राय रखते हैं, और अपनी राय को जो है वो कहने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। सब नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई जवाब देना चाहे, बात करना चाहे, तो उसके लिए दारा आपकी आवाज़ का टाइम जो है वो हाजिर है, वो आ सकता है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज
1: औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान सामान नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामान, जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था कि हम लोकल बात करेंगे, क्योंकि हम लोकल प्रोग्राम्स करते हैं, इंटरनेशनल बात भी करते हैं, चूँकि उसमें हमारे मुल्क के मफादात होते हैं, चलना पड़ता है, लेना पड़ता है, इन चीज़ों को भी साथ साथ लेना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्हें आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ उस्ताद हैं, वो वाकई उस्ताद हैं, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं और घर में पता चलता रहता है कि बच्चे क्या करते हैं। ज़ाहिर है टीचरों की बातें तो चलती रहती हैं। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको और सब सुनने वालों को भी। उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज चलें, धूप इतनी नहीं निकली,
1: आज धूप इतनी ज्यादा नहीं है, बस धूप ठंडी है। टेम्परेचर तो ठीक है लेकिन धूप नहीं है, मौसम ठीक है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी का दिन भी है। लेकिन आप लोग काफी मसरूफ रहे, बच्चों के इम्तहान, ज़ाहिर है उस्तादों को, टीचरों को तैयारी करानी पड़ती है। तो ये आपका महीना कैसे गुजरा?
2: ये महीना जी, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला महीना बिल्कुल पॉलिटिक्स, अप्रैल का महीना, मतलब मार्च का महीना जितना पॉलिटिक्स के साथ गुजरा है, अप्रैल का उतना ही उसके बगैर गुजरा क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल माहौल भी जरा ठंडा ठंडा चल रहा है जैसा कि आपको पता है। मगर मेरा जो, जिस तरह आपने बताया, ये वाला महीना बिल्कुल एग्जाम्स की तैयारी कराने में बच्चों को लगा हुआ था। कल से माशाल्लाह नौवीं क्लास, जितने नौवीं क्लास है सबके, नौवीं दसवीं क्लास वाले, उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो, और मुल्क भर में होंगे तो मेरी भी दो क्लासेस हैं, उनको भी हैं, बाकी भी मैं साथ बच्चे पढ़ा रहा होता हूँ साथ साथ। ट्यूशन का थोड़ा सिस्टम आपको पता है, साथ चलता है। तो मैं तो बस पूरा अप्रैल का महीना पढ़ाने में मसरूफ रहा हूँ, तैयारी कराने में मसरूफ रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे पता है कि नौवीं क्लास के एग्जाम्स मतलब मेरे लिए तो बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा होता है, मतलब पूरी स्कूलिंग सिस्टम में या आठवीं नौवीं क्लासों में, जहाँ हमारे बच्चे इधर एग्जाम्स देते हैं। मतलब यहाँ से उनके एग्जाम्स का मैं कहता हूँ एक सफर शुरू होता है, कि ये उनके पहले पहले एग्जाम्स होते हैं और उसके बाद फिर आगे एग्जाम्स चलते ही जाते हैं जब तक वो कोई एजुकेशन खत्म ना कर लें। तो बहुत बड़ा, बहुत शानदार पीरियड होता है ये, बड़ी तैयारी कराई जाती है बच्चों को। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह सब बच्चे अच्छा करेंगे, आगे भी कामयाब करे अल्लाह सबको।
1: चलें, ये तो लगा रहता है चूंकि आप खुद हैं, आपको पढ़ाने का शौक भी है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक सियासतदान भी हैं और आपकी हुकूमत भी बनने जा रही है। आपकी पार्टी इन दिनों में या इस पूरे दो डेढ़ दो महीने में जब से इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत अभी बनी नहीं, लेकिन आपकी जो लीडर हैं वो बिल्कुल खबरों की वो सुर्खियों में रहे, कभी वो गुम भी हो जाते हैं, जिस तरह गैर हाजिर भी रहे, पता चलता था किसी ने उनको अगवा कर लिया, सियासी अगवा कर लिया। जरा कहानी तो सुनाए हमारे सामने नाज़रीन को।
2: हाँ जी, कहानी यही है, हमारी भी मीटिंग हुई थी, मतलब मेन बोर्ड की भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते होनी थी एक, वो फिर इस पिछले एक हफ्ता डिले हो गई, क्योंकि वो ये कि प्रोसेस जो मेरे फर्स्ट और मुर्गार ने, सुशील मुखार ने, मुर्गार ने का जो उनसे चाह रहा है, वो मतलब मेरे ख्याल से हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरह हम सारे बात करते हैं ना कि मेड़े और लोके के बगैर कोई गवर्नमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही, तो इन दोनों को पता है कि बनानी इन्हों नहीं है, अब जोड़ना कैसे है ये लगा हुआ काम करना ना। तो जिसका जोर सा ये थोड़ा सा मुर्गार ने, थोड़ा ठंडे थे उस वक्त, ये भी नहीं था ठंडे नहीं थे, पीछे कोशिश कर रहे थे बेंस्टॉकन सेवाचियों को करने की कि मान जाएं, आ जाएं फाइनलिंग स्पोर में, और जिस तरह वो मेरे फॉलिक्स ने, वो देख रही है कि इससे फारिक है, मतलब वो कहां तक मतलब एग्री करते हैं ना जाने के लिए। तो ये लगा रहा है इनका आपस में। तो ये पिछले हफ्ते जो आप बोल सकते हैं कि अब फाइनलिंग सही, सुशैल मुखद मुर्गार ने या मेरे फॉरेक्स ने और लास्ट लोकन ने पिछले एक दो हफ्ते से सही फाइनलिंग करना शुरू किया आपस में भी, क्योंकि अब उन्हें थोड़ा बहुत पता चल गया है कि वेंस्टा कंसर्वेटिव, कंजर्वेटिव ने अभी भी उस तरह बयान नहीं दिया, मगर वेंस्टा वाले वैसे बिल्कुल ही जिस तरह नहीं कहते, नहीं मान रहे, तो थोड़ा सा ये पता चल गया है कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो इधर से भी आप देख रहे हैं कि वो रेड पार्टी जोनसियां थोड़ी थोड़ी करके सारी थोड़ा सा सॉफ्टन अप कर रही हैं, कौन कौन से वो अपने इश्यूज थे पहले वाले जो थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो ये है कि अब फाइनलिंग शुरू हो सकती है। जो सबसे मुश्किल लग रहा है वो इकोनॉमिक पॉलिसी का ज्यादा, मतलब आप बाकी सब चीजें छोड़ दें, जो इकोनॉमिक की पॉलिटिक्स है ना उसमें जरा एग्री करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, वो चल रहा है अभी इस वक्त।
1: तो अखराजात कम करें, बचत करें, बाकी सहूलियात दें। तो दूसरा, जो 5-7 घंटे मीटिंग की है वो जो है मेहते ने और लास ने, तो सब मीटिंग में अकेले क्या करते रहे हैं?
2: अकेले बस ये वो ही बता रहे थे कि इकोनॉमी का जोन सा है ना, उस पार्ट पे जरा असल में ना एग्री नहीं हो पा रहे अभी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं तो जो थोड़ी सी ब्लू पार्टीज होती हैं उन्होंने अवेयर्स लेवल को जो मतलब बिजनेसेस होते हैं उनका भी सोचना होता है, उनको थोड़ी छूट देनी होती है, और वो ऐसे फाइनेंस लिस्ट जैसी पार्टीज उनको तो मतलब ना बिजनेसेस को छूट देना क्या तो सोच भी नहीं सकते उनका तो दिल करता ना कि हर चीज बस बढ़ाते जाए और हर चीज में पैसे डालते जाए, मगर आने कहां से ये नहीं सोचना ना किसी ने।
1: लेकिन देखा जाए तो निशान देखा जाए तो यहाँ सारे काम जो लगे आते हैं सरमायादारों वाले ही हैं। आप देख लें कि शहर में हर चीज गाड़ियों को देख लें, दूसरी चीजों को देख लें, तो ये तो लगता है कि सारा निजाम ही सरमायादाराना है।
2: सरमाया गाना जरा राजा साहब समझाए जरा मतलब इकोनॉमी स्टैक फॉल्क।
1: आप देखें ना, एक तो उम्र काम करने वालों की उम्र की याद की तरफ भी जो आप बातें निकली शुरू हुई हैं कि काम करते हैं पेंशन वालों की उम्र को कम किए या पहले बढ़ाते रहे हैं, इसी तरह गाड़ियों की अगर बात करते हैं तो ये गाड़ी आम आदमी तो नहीं खरीदते, ये तो किसी के पास पैसे होते हैं तो खरीदते हैं। गाड़ी की स्पीड है 300 किलोमीटर फी तक जा सकता है, मीटर उनका 200 तक जा सकता है, तो आपकी शहर की स्पीड है 20-25 स्पीड है टोटल मैक्सिमम।
2: मजदूरों का निजाम आप बिल्कुल सही समझे, आजकल वैसे दो मजदूरों वाली पार्टियां भी देख लेना।
1: मैंने इसलिए कहा ना कि मेहते तो मजदूरों को जो है ना, ये लोगों मजदूरों का ख्याल है, ये हमारी हमदर्द है।
2: हाँ जी बिल्कुल, और मतलब है और वो भी अब खत्म होता जा रहा है। आप देखेंगे फर्स्ट में ये भी होके गया, आरएनएस इंटरनेशनल खामते होके गया, वही बात कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो छिल स्लूटनिंग है ये भी कम होती जा रही है फर्स्ट मई को भी। आप आयरनेस खामते
1: हैं लेकिन बड़े लोग थे इस दफा, काफी अरसे के बाद इतने लोग देखे हैं।
2: हाँ जी वो तो असल मौसम अच्छा हो तो निकल आते हैं, मगर ये कि इनको सुनने के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि इनको पता चल गया कि जितने टॉप पे बैठे हुए हैं आजकल इनमें से कोई खुद वर्कर तो कभी रहा नहीं जो आजकल बैठे हैं। एसएफ में भी देख लें आप या सोशल डेमोक्रेसी में भी देख लेना, ये सारे बस पॉलिटिक्स पढ़ के आगे पॉलिटिशियन बन गए हैं। तो अब वो जो वर्कर वर्कर बंदा है वो इनके साथ मतलब रिलेट भी नहीं कर पाता जब ये बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो यही तो वोटर्स को यही हो गया कि अब आप आड़ा उस तरह ये आप आड़ा फचिया रही नहीं। तो
1: देखे ना, अगर हमने जब लोगों से पूछा आगे पीछे बात की तो दो ही नाम आ रहे थे, मेहते और लास लुके जो है ना, और तीसरा बंदा ही पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ,
2: नहीं इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। असल में वही बड़े बात पिछले दिन मुझे कोई कह रहा था कि मेहते नहीं दोबारा बनना, मैंने कहा असल में आप 10-20 साल पीछे जाएं देखें कितने कितने बड़ी बड़ी प्रोफाइल होती थी मतलब पॉलिटिशियंस की, मतलब इतना इतना एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता था, अब असल में आते हैं और काम कोई किया नहीं होता और बस एक्सपीरियंस काफी लोगों का अब जो बैठे हुए हैं है नहीं बाहर सही दुनिया का। पहले ऐसे में सही दुनिया से लोग आए होते थे, पता भी चलता था कि जब बोलता है कोई पॉलिटिशियन तो अच्छा बोलता है। तो अभी भी पार्टी लीडर भी आप देख ले कोई किसी में उस तरह दम ही नहीं है, और जब मुंह खोलना है गलत बात करने के लिए मुंह खोलना है तब भी मीडिया ने भी सुनना है। अब मैं उसकी देख रहा था, अब आप वैसे ही फर्ज कर लेना, ये फनीले वैमन जब अपनी नेपाल की फॉर्मेन थी हमारे मतलब गैर मुल्क के खिलाफ कितना बुरा बुरा बोलती रही है, अब मीडिया में रही है, अब लिपाल अलियांग से में गई है, इसका इसको लर्निंग ऑफ बनाया, अब ये भी जाया कहती है नहीं उस वक्त मैं जो कहती थी काफी चीजें थी गलत हैं, इसने वो एक दफा फैग का वर्ड यूज किया था तब बड़ा कहती थी जी मेरा जी राइट है मैं कर सकती हूँ, कहती नहीं अब मैं सुनती हूँ तो मैंने गलत किया है ये वो। तो मीडिया में रहने के लिए इनको बस यही एक चीज मिली हुई है कि उर्लिनिंग के खिलाफ बोलते हैं तो इन्हें मीडिया टाइम भी मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, उसके अलावा इनको बात कोई करने ही नहीं आती और इनको भी पता है कि गलत ही बात करनी है और हमें मीडिया टाइम चाहिए, बट सही पॉलिटिक्स की बात करता ही कोई नहीं आजकल सारे जो बैठे हुए हैं।
1: तो क्या जीशान कोई इमिग्रेशन की बातें कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज बना रहे हैं इमिग्रेशन की?
2: इमिग्रेशन तो जी वो तो मेरे ख्याल से कोई भी उस तरह से कहते हैं ना फाइलिंग्स पॉप है, जो ये पार्टियां बड़ी बोलने वाली थी ये भी इमिग्रेशन तक तो पहुंचे ही नहीं क्योंकि इकोनॉमी क्लीम है इन लोगों का एका नहीं होता सही तरह। इमिग्रेशन पे इतना है कि उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जरा हल्का करें, ये जो स्टेट्स पॉस्केप के लिहाज से स्पेशली रेड पार्टीज ये बोल रही थी हम भी बोल रहे हैं اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے, مطلب اس کے تو ہم کریں گے ادھر سے, میری باقی جو
1: لیکن امیگریشن پالیسی پہ جہاں جہاں سختی ہیں تو ساری جماعتیں جو ہیں متفق ہیں اندر سے,
2: بالکل اندر سے متفق ہیں, اس لیے جا کے اب تھوڑا سا یہ بنتا ہے نا تو ہمیں پیچھے سے اب دھکا مارنا پڑے گا کہ کیونکہ سب نے یہ تھوڑی تھوڑی باتیں کی ہیں کہ ایز کرنا چاہتے ہیں, باتوں کا پھر باتیں کی ہیں پھر پوری بھی تو ہونی چاہیے.
1: اب دیکھیں ریڈیکل بھی کافی ووٹس لے کر گئے ہیں ان کے کینڈیڈیٹ سے, کیا وہ اپنے لیڈران کو پش کرتے ہیں؟ آپ تو چلیں ایک اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں,
2: وہ بھی پش کرتے ہوں گے, بالکل پش کرتے ہوں گے, مطلب میری بھی بات ہوتی ہے, ابھی ہمارے جتنے ریڈیکل میں بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھی ہوئی ہیں, مطلب پش تو سارے کرتے ہیں. یہ ہے کہ فہلنگ, میرے خیال سے فہلنگ تک ابھی نہیں پہنچیں گی, مگر آگے جا کے ان شاء اللہ امید ہے کہ ان چیزوں کو ہم اٹھائیں گے. اگر تو یہ ریڈ اور

0: तो उधर बहुत ज्यादा लगाया यूक्रेन में, इसमें कोई शक नहीं है। फिर वो वाली बातें भी निकली कि उधर जो पैसे भेजे हैं उधर भी करप्शन थोड़ी नहीं है उस मुल्क में, मतलब वो भी ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठना शुरू हो गए थे एक टाइम पे। तो बड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए कि चलें मदद करनी चाहिए जहां मदद करनी है, मगर पहले अपनी मदद आप तो करें ना सही। इधर हमारे जो उनसे सिस्टम वगैरह मुश्किल होता जा रहा है। आप यानी मैं स्कूलों को नहीं कहता, स्कूल तो फिर भी बेहतर है, मतलब फिडकोआ का इस वक्त या सोसो का अमोद हो गया, सुप्लाइज का अमोद हो गया, मतलब बहुत इस वक्त जरूरत है इन चीजों में इन्वेस्ट करने की हमें आने वाले वक्त के लिए। वो जो इनको नजर नहीं आ रहा, कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, मगर उन ये वेलफेयर सूत्र कभी कुछ सही तरह कर नहीं रहे, जिसमें मैं बोलूंगा कि हम टीचर्स तो माशाल्लाह फिर भी काफी अच्छे हैं, मगर फिड़क वो कम से कम होते जा रहे हैं हमारे इधर सोसाइटी में जो है, और उसका बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को। तो वो भी उम्मीद है कि उधर भी अब
1: तो
0: थोड़ा
1: एसएफ
0: सा
1: जो शोर
0: बैलेंस।
1: डालती है, एसएफ भी शोर डालती है ना, मतलब कि नीचे जो आपने एक उनके भी सारे के तबका है जो वोट उनको देता है अक्सरियत में देता है, इसी तरह सरमायेदारों को देता है, इसी तरह दूसरे लोगों को देता है, तो ये वोट देने वाले भी तंग पड़ रहे हैं। एज ए उस्ताद आप क्या कहेंगे कि किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि बच्चे नीचे से जाएं पढ़े लिखे, जाहिर यहाँ तालीम तो पक्की है, आपने 8-9 क्लासें कर 10वीं तक पढ़ना है या किसी उम्र की हद तक आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये
0: जी जी
1: बच्चों को इस तरफ गाइड दें। आप लोग कहते हैं नहीं यार ये कानून ज़्यादा आसान है, ये तो थोड़ा सा पढ़ के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी सी कोशिश करके वोट लेकर आप जा सकते हैं, तो हमारे बच्चों को करना क्या चाहिए? हमारा मुस्तकबिल तो ये है।
0: जी। और उनको असल में जी जो सबसे बड़ा मसला हो गया ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और हम कहते तो हैं स्कूलों में आता है जी एनसी मॉपनिंग कंपेनियां चलेंगे जी, कि मॉपनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अच्छे से बोलना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, मगर मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वही बच्चे हैं जब इनके हाथ में मोबाइल आता है, ये हमारे पॉलिटिशियन कैसे बात कर रहे होते हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं। अभी मैंने आपको फनेल वैम उनकी एग्जाम्पल दी है कि उसने जब वो निपोल की फॉर्म में थी, उसने ऐसी ऐसी बातें की जो अब खुद वही कहती है यार मैंने गलत किया है, मगर बस फेम लेने के लिए ऐसी बातें कर देती हैं, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं मीडिया टाइम पाने के लिए। बच्चे बैठ के देख रहे हैं और बच्चे अफेक्ट होते हैं इन चीजों से, और ये मैंने पहले भी आपके भी प्रोग्राम बोला, सबको मैं यही बोलता हूँ कि हमारे बच्चे बैठ के ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्योंकि अब ये सारी पॉलिटिक्स टिकटॉक पे भी आ गई है। हमारे लोगों को भी चाहिए, हमारी तंजीमों को भी चाहिए कि हम लोग भी किसी तरह अपने मैसेजेस अपने बच्चों तक पहुंचाएं कि फाइनेंस साइन नहीं जिस तरह कहते हैं बहुत जरूरी होता जा रहा है, वरना तो बच्चे आप देखें आजकल पॉलिटिक्स वो टीवी ऑन करेंगे बोलेंगे यार ये देखो बड़े कैसे करते हैं, और आप लोग हमें कहते हो कि हम लोग ऐसे ना करें। ठीक है ना जी, तो जिम्मेदारी बड़ों पे बहुत ज्यादा है, वो जिस तरह मतलब वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग ही होता है, वो देख देख के आपको सीखते हैं, आपके बताने से आप जो बताएंगे वो नहीं सीखेंगे, आप जो करेंगे वो सीखेंगे।
1: ईशान, प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखें कानून जहाँ बनते हैं जहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, कम्यून्स हैं और पार्लीमेंट है, तो हमारे लोग जो हैं वो कितने लोग जा रहे हैं कम्यून्स की तरफ जा रहे हैं पार्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं? शोर पड़ता है, इलेक्शन नज़दीक आते हैं 2-3 महीने जब रहते हैं इलेक्शन होने में शोर पड़ना शुरू हो जाता है। ये मेरी याद
0: जी
1: में
0: जी
1: पहली दफ़ा हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ने अभी से कहना शुरू कर दिया, जिसमें आप भी उसमें शामिल हैं, कि हम इन अगला इलेक्शन जो है इंशाल्लाह लड़ेंगे। अब लोगों के
0: जी
1: पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो आपको 4 साल वाच करते रहे, इलेक्शन तो कल परसों महीने 2 बाद भी हो सकते हैं, 2 साल बाद भी हो सकते हैं, ये तो फिक्स
0: जी
1: कम्यून
0: बिल्कुल
1: के तो फिक्स होते हैं। तो अब बाकी जो
0: जी
1: पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डेंटिस्ट बनना चाहता है, वो कहता है पैसे कहाँ पड़े हुए हैं।
0: हाँ जी, वो तो फिर ऐसे ही है, वो तो हमें भी याद है, मुझे अपना भी याद है, वो तो बच्चे जब हमें भी हम जब बजाते स्कूल किताब आती थी बैठे नहीं अपली, वो अभी भी होता है, और अभी भी मैं बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि जैसे आपको बताया मैं स्कूल वाला भी हूँ, तो वो सबसे पहले यही सर्च करते हैं बमाद छेना। कुछ भी कहते हैं बमाद छेना, तो वो एक बड़ी नेचुरल सी चीज है, ये चीज तो आगे बढ़ते बढ़ते आती है। मैंने भी अपनी जिंदगी ऐसे की थी, मैंने भी पहले यही सोचा था जी के मतलब मास्टर्स करेंगे बिजनेस लैंग्वेज कल्चर में, बाहर के मुल्क निकल जाएंगे, तो फिर जब देखा जी कि दुनिया बाहर कैसी है और इधर भी मतलब अच्छा सुकून है, तो बैंक में भी 1 साल काम करने के बाद मुझे भी तब पता चला ना कि नहीं यार काम कुछ और करना चाहिए। तो ये सीख आते आते आती है, बस ये मैं बच्चों को भी कहता हूँ, शौक है अगर कोई तो शौक को अपने कोशिश करो काम बना लो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। मगर जाहिर है कुछ लोगों का शौक ही है पैसे कमाना, तो इसी जरिए भी वो बन जाते हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से बराह-ए-रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, ताज़ा तरीन न्यूज देते हैं, जहाँ से न्यूज मिलती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा वादा था जो हमारे पास होगा अपने सामने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। गपशप की शक्ल में हमारा ये प्रोग्राम होता है, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, लोकल हमारा प्रोग्राम है। तो इस वक्त हमारे सिटी काउंसिलर साहब का पार्लियामेंट के मेंबर और तजिया नगार, ये भी जो है एनालिस्ट हैं, ये भी करते हैं, तजिया करते रहते हैं, अखबारात में अपने आर्टिकल भी लिखते रहते हैं। तो मेरी मुराद है मलिक सिकंदर सदीक, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी थैंक यू राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, हम आपको आवाज करते रहते हैं, सोशल मीडिया को भी आप इस्तेमाल करते हैं और अपना टाउन हॉल में आपकी स्पीचेस भी हमें नज़र आती हैं, तजावीज़ भी हमें जो है सुनने को मिलती हैं, अखबारात में आर्टिकल भी आप बाकायदगी से लिखते रहते हैं। लेकिन

0: लेकिन आपके चाहने वाले भी बहुत ज्यादा हैं जो आपके खिलाफ बोलते भी रहते हैं।
1: देखें, हजरत अली का कौल है कि जिनके मुखालफीन ना हो तो समझे वो मुनाफिक है। तो ये है कि जब आप कोई राय पेश करते हैं या आप एक एक अपना एक स्टांस लेते हैं, अपने आप किसी मौकफ पे खड़े होते हैं, तो फिर यकीनन आपके खिलाफ भी लोग काम करते हैं। तो इसलिए सियासत में तो ये एक नेचुरल चीज है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपके मुखालफीन जो हैं वो आपके बारे में बातें ना करें तो फिर सियासत में आपको जिंदा कौन रखे।
0: ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन अभी जो कुछ कोपेनहेगन कम्यून में हो रहा है और आपने भी अपना जो डिबेट में हिस्सा लिया और आप भी बोलते रहते हैं, तो किस पास बात पर आपकी बात हो रही थी?
1: देखें, बात ये है कि मैं बिलीव करता हूँ काम करने में, और मैं बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे आपका देखें जो वोटर्स होते हैं वो आपको वोट देते हैं, आगे हुकूमतें बनती हैं, इस तरह कम्यून लेवल पे भी हुकूमतें बनती हैं, उसमें तो ये है कि ये जरूरी नहीं अगर हुकूमत में हो, लेकिन आपके पास सीट तो होती है, सीट होती है, आपके पास आवाज भी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, असेंबली की जो हमारी मीटिंग थी, उस पर अगर आप, मैं बल्कि आपको ये कहूँगा कि आप देखें कि हमने फई कौन ने और मैंने जाती तौर पर ये आपसे वादा किया था कि मैं कम्यून में आपकी आवाज बनूंगा। तो अब आप वो मीटिंग्स उठा लें, अभी इसमें ये जो मीटिंग थी अभी 30 अप्रैल को जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको आप उठा के देख लें कि उस पे 55 मेंबर्स हैं, उसमें मैं कितना बोल रहा हूँ और कोई कितना बोल रहा है। मेरी तो यही कोशिश है कि हर मौके पे हर जगह जो है आपकी नुमाइंदगी की जाए। उस पे डिफरेंट इश्यूज थे, देखें सबसे पहला जो मैं कोपेनहेगन कम्यून के हवाले से जो मैं इश्यूज देख रहा हूँ हमारे लोगों के और जो कोपेनहेगन में जो लोग बसते हैं उनके, वो ये है कि इस वक्त कोपेनहेगन कम्यून ने एक स्थारकी बनाई है, कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कोपेनहेगन आए। और अगर आप ये देखें इस वक्त के 2025 में 34% ज्यादा होटल ओवरनाइटिंग थी अगर आप उसको 2019 से कंपेयर करें, इसका मतलब ये है कि टूरिज्म हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो Airbnb जो लोग, मतलब जो एक सिलसिला है कि लोग अपने घरों को होटल के सूरत में रेंट पे देते हैं, ये Airbnb जो होता है या Airbnb जो होती है, ये सिलसिला आपको ऊपर है कि मैं देखते हैं बढ़ता जा रहा है। इससे होता क्या है कि इससे पहले ही यहाँ की जो किराए हैं, जो हाउसिंग्स हैं, वो बड़ी महंगी हैं, मिलती नहीं है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है लोकल लोगों के लिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जो रेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ मैं और भी बहुत सारी बातें, मैं एक सरसरी सा जल्दी सा बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें कि अब छिवली है, छिवली मेन शहर के अंदर है, उसमें आप जरा अपने दो बच्चों को लेके जाएं, आपको 1500 से कम का वो टूर नहीं पड़ेगा, इतनी महंगाई हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि अब छिवली जब टूरिस्ट आ रहा है तो फिर छिवली ने जो है वो अपनी एफ्टर स्पेशल के तहत अपनी प्राइस रखेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो ग्लोबल मार्केट के साथ ये अपनी वो क्या कहते हैं खंगवांग से काटी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से, टूरिज्म की वजह से हमारी यहाँ पे महंगाई, क्लाइमेट का भी अब हजार पहलू हैं इसमें। तो बेसिकली बात ये हो रही थी कि वहां पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कह रहे थे, ये बिल था कि जो इंफ्राक्रिमिनाउन है यानी कि जो अंदरून कोपेनहेगन है उसमें जनाब भाई अब होटल जो है उनको बनाने की, यानी कि होटल जो होते हैं जिसमें टूरिस्ट आके रहते हैं उनको बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे हमारी बहस छिड़ गई। मैंने उनसे कहा कि देखें ये आप सिर्फ उन अमीर लोगों को, बेसिकली जो है मेरी जाती राय है कि ये अमीर लोग जो है इंफ्राक्रिमिनाउन में रहते हैं, 10-12 मिलियन के मकानों में रहते हैं, उनकी वो उनको तकलीफ होती है ज्यादा टूरिस्ट से, तो उधर आप जो है इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे अब मजीद होटल ना बने। लेकिन पोख अच्छे है जो है, जिस तरह नॉरेब्रो हो गया, वेस्टब्रो हो गया, ये जो पोख अच्छे है, इसमें ये कानून क्यों नहीं लागू हो? बकाया कि कोपेनहेगन में ये कानून क्यों नहीं लागू हो? तो इसमें मैंने वहां पे यही बात कही कि देखें जिस तरह एम्स्टरडेम और बार्सिलोना में अब वहाँ स्पेसिफिकली इस बात पे बात की जाती है कि टूरिज्म को खत्म किस तरह किया जाए, टूरिज्म को खत्म किस तरह किया जाए। तो हम कोपेनहेगन में यहाँ कह रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ाया किस तरह जाए, जबकि इसका नेगेटिव असरात पड़ते हैं हमारे यहाँ हाउसिंग पे, हमारे यहाँ खर्चों पे, चीजों पे। तो इस पे बकायदा बहस हुई और हमने जो एक स्टैंड लिया, ये जो सारी बातें चल रही थी वहां, मैं समझता हूँ वो एक जो आप कह लें कि एक जो सरमायादार हैं उनके हवाले से उनका एंगल पेश किया जा रहा था। मैंने जो अवाम है उनका एंगल पेश किया, मैंने कहा हम यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पे अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम किसी और की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। उसमें भी मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि अब हम इस साल में दोबारा से इस कौन लेख ने इस इशू को उठाए और इस पे बात करें कि क्या हमें टूरिज्म चाहिए भी सही कि नहीं। फिर मैंने इसके और डिफरेंट रीजंस दी, मैंने कहा दूसरी बात ये है कि अफ्रीका से और दुनिया के मुल्कों से, अब पाकिस्तान को आप देख लें कैटेगरी 5 में डाला हुआ है, हमें तो आने नहीं देते, हमारे जो फैमिलीज हैं उनको तो आने नहीं देते। तो ये आप समझते कि इलीट है वेस्ट में जो सफर करती है, एंजॉय करती है, जबकि अक्सरियत दुनिया की उन मस्कीनों को, बेचारों को कोई आने ही नहीं देता, शेंगन में वीजा नहीं लगने देते। तो इसमें मैंने लंबी चौड़ी वहां बात की, आपको पता है ये लोग इस तरह शायद आदि नहीं होंगे। मैं क्योंकि पार्लियामेंट में भी मेरा ये एंगल होता था कि आवाम की नुमाइंदगी करनी, तो यहाँ पे मैंने उसको एक और एंगल दिया, एक और लेवल शायद दिया, आप ये कह सकते हैं कि मैंने कहा ये आप सिर्फ कोपेनहेगन की इसको हद तक सतह तक ना देखें, इस पे बहुत सारा हमारे लोगों में इशू पड़ता है। तो इसमें बकायदा मैंने एक जिसे कहते हैं फुरखाल पे मैकने, वो मैंने बनाई। फुरखाल पे मैकने ये होती है कि अगर एक कानून पास हो रहा है, अगर एक डिबेट चल रही है, उस पे जो आप एज अ मेंबर उस पे आप एक नोट लिख सकते हैं जो कानून के साथ, जो उस मीटिंग के एजेंडे के साथ ताहयात रहेगी, चलेगी, उसमें मैंने ये प्रोटोकॉल पे मैकिंग जो है बकायदा लंबी चौड़ी एक लिखी। एक ये केस था, इस तरह और बहुत सारे थे। तो मेरी कोशिश ये थी कि सीट हमारी एक है, लेकिन किसी कोई भी अगर चाहे तो वो उस मीटिंग की एजेंडे को उठाए, वो khokho.dk पे टीवी देख सकते हैं, सारी डिबेट देख सकते हैं, उस पर आप जाए और उस पर आप देखें कि हम ने जो आपसे वादा किया था कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे, तो हमारी सीट एक है, लेकिन हम परसेंटेज निकालें तो हमारे जो वहां जितना हम बोलते हैं, जितनी नुमाइंदगी करते हैं, शायद ही और कोई करता होगा।
0: तो ये जो इनिस लिसन वाले और एसएफ वाले ये वोट्स लेकर आए, ये क्या करते हैं?
1: देखें मेरी सच्ची बात ये है कि लीने पाफो जो मेयर थी उससे भी मेरी यही एक इल्तिजा थी, मैंने उससे यही मेरा कहने का उसका मकसद ही ये था कि आप मेयर हैं जनाब इस महकमे की, तो आप तो कम अज कम जो है ये इस चीज को देखिए। क्या ये अजीब बात नहीं है राजा साहब कि कुछ मुल्कों को आपने कैटेगरी 5 में डाला हुआ है, उनको आप आने ही नहीं देते, और कुछ मुल्कों के लिए, कुछ दुनिया के लिए, जो वेस्ट के लिए, जो आपके जो गोरे हैं उनके लिए आपने ये एक अहलन वसहलन वाला वो तरीका अपनाया हुआ कि आप लोग आओ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ कौन लेखने एक ग्लोबल जस्टिस को देखा जाए तो उसमें बड़ा इशू है। तो बहर हमारा ये काम है नुमाइंदगी करना, और अभी नया नया ये अभी शुरू हुआ है, आप दुआ करें कि मैं ये केस अपना जीतूं ताकि मैं मजीद आपकी इसी तरह नुमाइंदगी कर सकूं। तो इसलिए ये है कि अब उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला शुरू किया, मैं अब वो क्लिप जो है जो डिबेट के होंगे वो मैं अब फेसबुक पे लगाया करूंगा, और जाहिर बात है आप भी बड़ी एक गहरी निगाह रखते हैं, तो आपके पास नजर से भी गुजरती हैं चीजें, तो यकीनन आप भी अपने फेसबुक वगैरह पे, जो मुझे उम्मीद है कि आप भी अब लगाएंगे जिस तरह के पहले कभी एक सिलसिला होता था। तो ये अब मैं चाहता ये हूँ कि जो बेसिकली जो कम्यून लेवल, जो काउंसिल लेवल के जो काम है ना, उनमें भी हमारी सुनवाई हो, नुमाइंदगी हो, और उस टाउन हॉल को खोला जाए लोगों के लिए, इन डिबेट्स को खोला जाए लोगों के लिए, तो आप लोग देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या हम काम कर रहे भी हैं कि नहीं, ताकि जब फिर इलेक्शन हो तो हम आप वाजिया आपके सामने हो कि कौन आपके लिए बोलता है, कौन आपके लिए फाइट करता है, कौन आपके लिए नुमाइंदगी आपकी नुमाइंदगी कर रहा है।
0: अपना सिकंदर, आपने टूरिस्ट की बात की, तो सारी टूरिस्ट बसें शहर में खड़ी होती हैं या के ये डिलीवरी करने वाले जो ट्रक होते हैं ये खड़े होते हैं, ट्रैफिक हर वक्त रुकी होती है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है टैक्सियां बड़ी बड़ी लेने की इजाज़त है और उसके अलावा स्पीड जो है वो कम रखने की जो कानून है तो गाड़ियाँ बड़ी लेने की इजाज़त है, तो बाकी फिर सिस्टम तो इस तरह तो नहीं चलते। अगर आपने बिजनेस ही करना है, सरमादारा निज़ाम ही चलाना है तो फिर तो ये चीज़ें ठीक हैं, बिजनेसमैन तो कौन से रहते हैं शहर के अंदर।
1: सर जी यही बात हम ये भी एक एजेंडे पे, ये एक तो वो था, इसके हवाले से और भी था, आपने देखा है कि यहाँ पे साइकिल जो है ठीक, अच्छी बात है आप साइकिल चलाते हैं, अच्छी बात है साइकिल चलानी चाहिए, अब इतना सारा टूरिस्ट आ रहा है उसको आप साइकिलों पे बिठा देते हैं, उनको यहाँ की कानून का पता नहीं है, फिर आप देखते हैं कि इसी तरह को एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, आप देखते हैं कि सड़कों पे वो टूरिस्ट जो है फोटो पे फुटपाथ पे लेके साइकिलें चला रहे हैं। तो हमने वहां ये भी कहा कि खुदा का वास्ता है कि अगर आप लोगों ने इनको टूरिस्ट बुलाना है और इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये मजीद साइकिल वगैरह चलाए तो फिर उनको कोई ट्रेनिंग भी दें आप। देखे ना, अब आप उनको ट्रेनिंग भी दें, साइकिल आप पकड़ा लेते कहते हैं जाओ जो मर्जी करना करो, ये तो
0: ऐसे आने चाहिए अकाउंट में, कार्ड लग जाता है।
1: तो इसलिए ये भी हमारी पे कहता, मैंने इस पे एक इंट्रेंस फोर्स ले दिया जिससे मैं इनस लिस्ट ने, वी हैव टू बी फेयर, इनस लिस्ट ने उसमें साथ दिया, इनस लिस्ट ने उसमें साथ दिया। तो लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं और कम्यून लेवल पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसी तरह मैंने एक कंजर्वेटिव पार्टी का साथ दिया एक और इशू पे, वो ये है कि इन्होंने कोपेनहेगन कम्यून ने ये मतलब जंग डिक्लेयर की हुई है गाड़ियों के खिलाफ, वो कहती है कि जो गाड़ियां हैं पार्किंग हवाले से लोगों का जीना हराम कर दो। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि आप लोग तो है कि वो जिहाद कर रहे हैं गाड़ियों के खिलाफ कि भाई गाड़ियों पर इतना खराब कर दो कि लोग पागल हो जाएं। उसमें भी कहते हैं आपने देखा होगा कुछ जगहों पे ये पार्किंग हटा रहे हैं और बीच में ये बेंच रख देते हैं और वो जो बेंच है उनमें वो बेंच ना उनमें कोई बैठता है ना कोई, लेकिन ये कि ताकि कोई गाड़ी ना पार करे। तो बहुत सारे भी इश्यूज हैं, उनको हम अभी उठाएंगे, मजीद जो है इस पे हम काम करेंगे। तो बहरहाल
0: लेकिन सिकंदर चलते चलते ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं इनके नीचे बाकायदा पार्किंग बनती है, लेकिन वो पार्किंग बाद में प्राइवेट हो जाते हैं, जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं ये उनकी सहूलत के लिए होते हैं, उसको फ्री होना चाहिए जो लोग वहाँ रहते हैं बिल्डिंग में, जो किराया जो देते हैं उनके फ्लैट खरीदे होते हैं ये उनका निज़ाम होना चाहिए, लेकिन ये भी प्राइवेट फर्म को दे देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी तरह मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें चेंज लाना चाहिए। राजू साहब मैं है अभी आप,
0: मुझे पता है आप जा रहे हैं, इंशाल्लाह बात करेंगे आप, इंशाल्लाह लंबी बात हो जाएगी, फिर बहुत सारे आगे हम निकल जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे।
1: जी जी, और मैं चाहता था कि मैंने जिस कॉलम की अभी आप बात कर रहे थे वो कॉलम जो है कौमी अखबार में अभी लगा है और वो मैं उस पर तबसरा करना चाह रहा था।
0: जी जरूर, थोड़ा सा टाइम है तो कर लें तबसरा उस पे।
1: आप मौका दें कि इस पे नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे क्योंकि उस पे लंबी चौड़ी बात हमें करनी की जरूरत है मैं समझता हूँ।
0: तो चलें, लार्स ल्यूके और मेते राजी हो गए आपस में, 7 घंटे अकेले मीटिंग की है बस, उन्होंने कुछ किया भी है या नहीं?
1: अभी वो सिलसिला जो है वो अभी चलेगा, लेकिन ये है कि इनकी हुकूमत ये अपनी बनाएंगे, उसमें मेरा जो एक तजी है वो ये है कि उसमें सोशल डेमोक्रेट मॉडरेट्स ऐसे खेल वेंस्ता ये हुकूमत बनाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी अल्टरनेटिव और इनस्लेशन को रखेंगे। तो बहर इंशाल्लाह इन आने वाले दिनों पे भी अगर आप मौका देंगे तो उस पर मैं तफसीलन बात करूंगा। तो बहर बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच,
0: शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह हाफिज। अल्लाह
0: सामाइन और नाजरीन, ये थे फ्री ग्रोनेक पार्टी के फोरमैन मलिक सिकंदर सिद्दीक, जिनकी आप बात सुन रहे थे। सामाइन नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहें तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।